mulțumită, drumada la șomilii. Suna sinii, sumătura mașinii,

हम बोल रहे हैं रेडियो गोल्डन सिटी से एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की चतुर्थी तिथि, तदनुसार 25 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार दिन के 11:58 हुए हैं। अब हमारी आज की ये प्रथम प्रसारण सभा आरंभ होती है।

श्रोताओं जरा करीब आकर अपने रेडियो सेट की बढ़ाई आवाज, लेकिन ध्यान रहे हो न किसी को एतराज, हम दे रहे हैं जानकारी हमारी सभा के कार्यक्रमों की। अब से थोड़ी देर बाद दोपहर ठीक 12 बजे सुनेगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 12:30 का समय रहेगा एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का। दोपहर 1 बजे होंगे हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 1:05 का समय रहेगा हमारे ग्रामीण परिवारों के पणिहारी कार्यक्रम का। आज की पणिहारी में आप सुनेंगे आज की बात, जल बचाएं कल बचाएं। साथ ही होगी चर्चा, सूरत नहीं सीरत का है महत्व इस विषय पर, और पीएम विश्वकर्मा योजना की जानकारी दी जाएगी, बुजुर्गों को करें हर आयोजन में शामिल, और फिल्म संगीत होगा। सुनिएगा जरूर आज दोपहर 1:05 पर पणिहारी कार्यक्रम। और दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई की कार्यक्रम। तो श्रोताओं, अब से लेकर शाम 5 बजे तक आपको रहना है हमारे साथ और सुननी है रेडियो गोल्डन सिटी के कार्यक्रम, आपकी अपनी पसंदीदा कार्यक्रम।

सोच रहा हूँ, अभी आपने शैलेंद्र सिंह और हेमलता की आवाज़ में ये गीत सुना, इसे हमने आपके लिए चुना था फिल्म अखियों के झरोखों से, फिल्म से। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। श्रोताओं, ये गीत हमने आपके लिए चुना है महबूब की मेहंदी फिल्म से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और साथी।

0: श्रोताओं, फिल्म संगीत के बाकी की तरह नहीं, एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: अंतराल के बाद एक बार फिर हाजिर हैं हम फिल्म संगीत लेकर। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इसे हमने आपके लिए चुना है फिल्म गजनी से।

दिल है कि मानता नहीं। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने आपके लिए इसी फिल्म से चुना है। आवाजें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही अब आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम रेडियो गोल्डन सिटी से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं आपका मित्र अजीत, नमस्कार। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंह रौल, नारायणी सिंह रौल, नोमेश सिंह रौल, नेहा और वान्या सिंह रौल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है, दूसरों को सम्मान देने वाला व्यक्ति स्वयं सम्मान का अधिकारी बन जाता है। इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है सरगुजा मैनपाट से, रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा। जेल रोड कानपुर से रोशन आसमा, सरफुद्दीन, फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम थापा। स्वार रोड मुरसेना से गुलफशा इदरीसी, जीना तमान इदरीसी, नाजिया, शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू, नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी। कृष्णा पार्क दिल्ली से असलम आसमा कुरैशी और अकरम आसमा कुरैशी। आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और आइए चलते हैं एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनूठी गुफाओं के बारे में। जैसा कि हमने बताया था कि अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में तो सभी जानते हैं, वहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन भारत में कई ऐसी गुफाएं हैं जिनका नाम लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन वे पुरातत्व और मानव विज्ञान के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे बोर्रा की गुफाओं पर। आपको शायद ये नाम अनजाना लग रहा होगा, तो आपको बता दें स्थानीय भाषा में इन गुफाओं को बोर्रा गुहलू कहा जाता है। बेशक ये बहुत जाना माना नाम तो नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी और गहरी गुफाओं में से एक है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। ये गुफाएं आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध बंदरगाह विशाखापत्तनम से लगभग 90 किलोमीटर दूर अनंतगिरी की पहाड़ियों में स्थित हैं। इनकी गहराई 260 मीटर से भी अधिक है। श्रोताओं, माना जाता है कि ये गुफाएं लगभग 10 लाख वर्ष पुरानी हैं। लेकिन ये जानना भी बहुत रोचक होगा कि इन गुफाओं का निर्माण आखिर कैसे हुआ। श्रोताओं, यहाँ एक नदी है जिसका नाम गोस्थानी है। गोस्थानी नदी की छोटी छोटी जलधाराएं यहाँ की चूना पत्थर से बनी पहाड़ियों पर लाखों वर्षों से बहती रही हैं। इस नदी की धार में एक खास प्रकार का अम्ल या एसिड है जिसे ह्यूमिक एसिड कहते हैं। इसने चट्टानों को खरादना शुरू किया और लाखों वर्षों में एक विशाल गुफा बना दी। सच में प्रकृति का करिश्मा आश्चर्यजनक है। श्रोताओं, इन गुफाओं की सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ के खरादे हुए पत्थर छत से लटकते हुए और फर्श से ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं। नदी के लगातार टपकते पानी ने यहाँ के पत्थरों को अद्भुत आकार प्रदान किया है। श्रोताओं, सुखद आश्चर्य होता है कि नदी के पानी द्वारा खरादे गए पत्थरों की प्राकृतिक आकृतियां इतनी अनोखी और वास्तविक हैं कि लोगों ने इनके नाम रख दिए हैं, जैसे शिव पार्वती, माँ बच्चा, ऋषि की दाढ़ी, मगरमच्छ, गाय इत्यादि। है ना बड़ी अद्भुत बात। सच में श्रोताओं, प्रकृति बड़ी अद्भुत शिल्पकार है। और तो और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि गुफा के बीचों बीच एक ऐसा पत्थर है जो बिल्कुल शिवलिंग की तरह दिखाई पड़ता है, जिस पर पानी टपकता रहता है। स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं। तो श्रोताओं, ये तो बात हुई गोर्रा गुफाओं की। आइए अब बात करते हैं आखिर इसकी खोज कैसे हुई, ये जानना भी बहुत जरूरी है। सन 1807 की बात है। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज ने इसकी खोज तब की जब वे चट्टानों पर नदी के प्रभाव का अध्ययन करने इस क्षेत्र में आए। जब उन्होंने इन गुफाओं में प्रकृति द्वारा लाखों वर्षों में निर्मित इन अद्भुत आकृतियों को देखा, तो प्रकृति के इस करिश्मे को देखकर वे भी चकित रह गए। फिर उन्होंने विधिवत इन गुफाओं का दस्तावेजीकरण किया और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इन दिनों ये गुफाएं लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। इन गुफाओं को देखने बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक और भूगर्भ शास्त्री आते हैं। श्रोताओं, जब हम प्रकृति के करिश्मे को देखते हैं तो हमें ये मान लेना चाहिए कि आकर्षण सिर्फ चकाचौंध और दिखावे में ही नहीं होता। सच्चा आकर्षण तो वहाँ है जहाँ हम अवलोकन करके ये समझ लेते हैं कि प्रकृति कितनी अनोखी और विस्मयकारी है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अद्भुत विस्मयकारी आंध्र प्रदेश की बोर्रा गुफाओं की। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIETNCERT को फॉलो कर सकते हैं। अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गिजू भाई बधे का। यह कार्यक्रम भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद गिजू भाई बधेका के शैक्षिक चिंतन और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अनुप्रयोगों की जानकारी देता है। गिजू भाई बधेका जी ने मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को भारतीय परिप्रेक्ष्य में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उनकी बहुचर्चित पुस्तक दीवा स्वप्न के बारे में भी इस कार्यक्रम में जानकारी दी गई है।
3: गुरु भूमि यानी गुरुओं और शिक्षकों की भूमि, भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था ने असंख्य विद्वानों को जन्म दिया। शल्य चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत और चिकित्सा विज्ञान में महर्षि चरक और बाल रोग विशेषज्ञ जीवक के बारे में भला कौन नहीं जानता।
4: खगोल विज्ञान और गणित में आर्यभट्ट, वराह मिहिर और भास्कराचार्य का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। और भी बहुत से विद्वान हुए जिन्होंने विद्या के हर क्षेत्र में शिक्षा दी और ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया।
3: यदि हम आधुनिक भारत की बात करें तो इसमें कई विलक्षण विभूतियां हुई जिनका शैक्षिक चिंतन और दर्शन सदा स्मरण रखा जाएगा।
4: उन विलक्षण आधुनिक विभूतियों में मुख्य रूप से हैं श्री अरविंद, भगिनी निवेदिता, रविंद्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और गिजू भाई बधेका।
3: साथियों, आज हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध दार्शनिक एवं शैक्षिक चिंतक गिजू भाई बधेका जी के, जो एक गुजराती लेखक और महान शिक्षा शास्त्री थे।
4: गिजू भाई बधेका का जन्म 15 नवंबर 1885 को गुजरात राज्य के सौराष्ट्र के चित्तल नामक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम गिरिजा शंकर बधेका था, लेकिन वो गिजू भाई के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। उनके मन में बच्चों के प्रति अविरल स्नेह और गहरी संवेदना थी।
3: कहते हैं कि उनकी बचपन की शिक्षा बहुत पीड़ादायक थी। उन दिनों रटंत पद्धति का ही बोलबाला था। शिक्षा का अर्थ अक्सर पिटाई और बेत खाना हुआ करता था। अपने बचपन की यातनापूर्ण शिक्षा का उनके बाल मन पर भारी प्रभाव पड़ा। बचपन की शिक्षा की इस पीड़ा को वो कभी भूल नहीं पाए।

0: प्रणाम मास्टर जी।
1: प्रणाम। हाँ तो बच्चों, कल मैंने तुम लोगों को डेढ़ का पहाड़ा सिखाया था और कहा था कि सबको याद करके आना है। याद किया है ना सबने? तो इसका मतलब हुआ किसी ने ठीक से याद नहीं किया है। गिजू, तुम सुनाओ।
2: जी मास्टर जी, मैंने कोशिश
1: कोशिश वोशिश मैं नहीं जानता, खड़े होकर सुनाओ।
2: जी जी, डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूना तीन।
1: अरे जल्दी जल्दी बोल, मेरी बेत भूल गया क्या?
2: जी जी जी, सुनाता हूँ। डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूना।
1: तुम सबके लिए मेरी बेत ही ठीक है। इधर इधर आओ सामने।
2: जी।
1: कान खोल कर सुन लो तुम सब, यदि कल ठीक से याद नहीं करके आए तो सबका इससे भी बुरा हाल करूंगा, समझे?
3: गिजू भाई ने अपनी औपचारिक शिक्षा समाप्त की और उच्चतर अध्ययन के लिए बंबई चले गए, जो आज मुंबई कहलाता है।
4: साथियों, उनके जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जिसने उनका जीवन बदल दिया। गिजू भाई 1913 में पिता बने। बेटे के जन्म के तुरंत बाद जब इस युवा पिता ने अपने नवजात बेटे को गोद में उठाया, तब उनकी आंखों के सामने उनका अपना दारुण बचपन घूम गया। वो गहरी सोच में डूब गए और सोचने लगे।
5: एक प्रतिष्ठित परिवार के हर बच्चे की तरह मेरे बेटे को भी एक दिन स्कूल जाना होगा, और स्कूल जाने का मतलब है छोटी छोटी गलतियों के लिए रोजाना बेत की मार खाना। तो क्या ये भी उसी प्रकार मार खाएगा जैसी मार हमने खाई थी? मैं जानता हूं कि ये स्कूल जाएगा, लेकिन क्या मार खाने के लिए, अपमानित होने के लिए? नहीं, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे बच्चे सीखें लेकिन बिना तनाव के, भय मुक्त होकर? इस पर जरूर कुछ सोचना पड़ेगा, समाज को इस दिशा में कुछ करना ही होगा।
3: गिजू भाई ने 1920 में एक बाल मंदिर यानी विद्यालय की स्थापना की और वकालत छोड़कर पूरी तरह बाल शिक्षा को समर्पित हो गए। यहीं से शुरू हुए बाल शिक्षा पर उनके अनेकानेक शैक्षणिक अभिनव प्रयोग। वो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को सरल, सुगम और सरस बनाने पर बहुत जोर देते थे।
4: उन्होंने बच्चों के इंद्रिय विकास, शैक्षिक भ्रमण, प्रकृति का अवलोकन, कथा वाचन और खेल आधारित शिक्षा जैसी गतिविधियों पर बल दिया। इस पद्धति से बच्चे हंसते खेलते आनंददायी गतिविधियों में भाग लेते हुए खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करते थे।
3: इस बाल

0: बाल मंदिर कहा।
1: सन 1922 में भावनगर के तख्तेश्वर मंदिर के पास उन्होंने एक और बाल मंदिर खोला, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी के कर कमलों से हुआ।
0: इसी भावनगर में उन्होंने देश के शिक्षकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय मॉन्टेसरी सम्मेलन का आयोजन किया और शिक्षकों के लिए अध्यापन मंदिर या शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति को पूर्णतया आत्मसात करने के बाद उन्होंने उसके सिद्धांतों को भारतीय संदर्भ में पूरी तरह अपनाने का प्रयास किया।
1: एक बार किसी पत्रकार ने गांधी जी से गिजू भाई के बारे में कुछ लिखने को कहा, तब गांधी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा था,
2: गिजू भाई जैसे महान व्यक्ति के लिए कुछ लिखने वाला मैं कौन होता हूँ? शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों ने मुझे हमेशा मुक्त किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि उनका ये महान कार्य आगे बढ़ चलेगा।
1: गांधी जी राष्ट्रपिता कहे जाते थे, तो गिजू भाई को बाल शिक्षा के क्षेत्र में उनकी माता तुल्य करुणा और योगदान के कारण लोग उन्हें मोछाई माँ अर्थात मूछों वाली माँ भी कहते थे।
0: बच्चों को शिक्षा देने के बारे में गिजू भाई अक्सर कहा करते थे,
3: शिक्षक बंधु कहानी बच्चों को रटाना नहीं, खूब रस ले लेकर अभिनय करके उन्हें कहानी समझाओ, उनसे प्रेम से बात करो, उन्हें हंसाओ, वो सिर्फ सूचनाओं से अबोध हैं, अज्ञानी नहीं है। यदि बच्चा सप्ताह में 5 दिन शिक्षक के साथ 5 या 6 घंटे बिताता है तो क्या उसे सच्चा प्यार और सम्मान नहीं मिलना चाहिए?
1: अपनी साहित्य कृतियों में उन्होंने भाषा, लिखावट, भूगोल, इतिहास और अन्य सभी विषयों के शिक्षण के लिए अनेक रोचक और सृजनात्मक विधियों को सविस्तार समझाया है। साथियों, आज हमारे बीच एक शिक्षक मौजूद हैं, श्री जीतेश कुमार जी, जिन्होंने गिजू भाई की शिक्षण पद्धतियों को अपनी कक्षाओं में अपनाया है, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। जीतेश जी नमस्कार।
4: नमस्कार।
1: तो जीतेश जी, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में शिक्षण के लिए गिजू भाई द्वारा बताई गई पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है
4: जी,
1: तो हमें और हमारे श्रोताओं को बताइए कि वो कौन कौन सी पद्धतियां हैं।
4: देखिए, वैसे उनकी तो बहुत सारी पद्धतियां हैं
1: जी,
4: लेकिन कुछ खास हैं जिन पे मैंने काम किया है और मैं काम कर रहा हूँ। उनमें एक है नाट्य प्रधान पद्धति। हम सभी जानते हैं कि बच्चे भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले और नकल करना बहुत पसंद करते हैं
1: जी,
4: तो नाटक और कहानी के द्वारा किसी भी कठिन संकल्पना या घटनाओं के क्रम को बड़ी ही आसानी से समझाया जा सकता है
1: जी। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके अलावा कोई और पद्धति है
4: जी? और है, एक है युगल और सहभागिता पद्धति।
1: युगल और सहभागिता पद्धति
4: जी, इस पद्धति के बारे में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है
1: जी,
4: वो ये है कि इसमें बच्चे समूह शिक्षण की अपेक्षा कम समय में सीखते हैं।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है
4: जी। इसके अलावा एक पद्धति और है।
1: हाँ हाँ, बताइए।
4: प्रश्नोत्तरी पद्धति।
1: प्रश्नोत्तरी पद्धति
4: जी, इसमें बच्चों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है कि वो प्रश्न पूछें।
1: अच्छा।
4: और वो पूरे आत्मविश्वास से बेझिझक कक्षा में प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करते हैं। जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि इन सारी पद्धतियों को मिला करके जो सीखने का प्रतिफल है
1: जी,
4: वो बहुत ही शानदार है।
1: अच्छा
4: जी।
1: तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ जीतेश कुमार जी।

0: तो जितेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारी के लिए।
1: साथियों, अभी आपने गिजू भाई द्वारा बताई गई कुछ शैक्षणिक पद्धतियों के बारे में जाना। बाद में धीरे धीरे गिजू भाई के उसी शैक्षिक चिंतन पर आधारित विद्यालय गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के अनेक राज्यों में फैल गए और हजारों बच्चों को उनकी नूतन शिक्षण विधियों से दीक्षित किया जा सका।
0: गिजू भाई ने 100 से भी अधिक बालोपयोगी पुस्तकें लिखी। उन्होंने शिक्षकों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं। उनकी एक बहुचर्चित पुस्तक है दिवा स्वप्न। बाल शिक्षा के जगत में गिजू भाई की ये एक अनुपम कृति है। गुजराती भाषा में पुस्तक का पहला प्रकाशन सन 1931 में हुआ।
1: इस पुस्तक में गिजू भाई ने अपने शैक्षणिक प्रयोगों के बारे में बताया है, प्राथमिक शिक्षा की रूढ़िवादी प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है, बालकों में बढ़ रही शिक्षा के प्रति निरस्ता के कारणों की विस्तार से चर्चा की है। दरअसल वो रटंत शिक्षण पद्धति के विरुद्ध थे।
0: गिजू भाई के अनुसार,
2: शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। विद्यालयों को बाल विकास की एक प्रयोगशाला होना चाहिए, जिसमें बालकों के विकास के अनुरूप संपूर्ण साधन और सामग्री हो, ताकि बालक स्वयं प्रयोग कर सके और अनुभव प्राप्त कर सके।
0: आदर्श शिक्षक होने के साथ साथ वो एक महान शिक्षाविद, चिंतक, विचारक और लेखक भी थे। चौवन वर्ष की आयु में 23 जून 1939 को शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित इस कर्मठ और विलक्षण कार्यकर्ता का निधन हो गया।
1: उनके नाम पर कई शिक्षक सम्मान स्थापित किए गए हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले शिक्षकों को दिए जाते हैं। उन्हें शिक्षा समुदाय और हम सबका कृतज्ञतापूर्ण नमन।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गिजू भाई बधे का एक विलक्षण शिक्षा शास्त्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार और विकास सांगवान, कलाकार शिमाइदा परवेज, प्रवीण शर्मा, असर नवाज उस्मानी, सुनील लोहिया और परवेज गौहर, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना।
4: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम गिजू भाई बधे का।

आइए अब सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत, जिसके द्वारा आप जान पाएंगे कि एक बच्चे के मन की भावनाएं क्या क्या हैं और वो अपने अभिभावकों और शिक्षकों से क्या अपेक्षा रखता है।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। प्रसारण हो रहा था रेडियो गोल्डन सिटी से। हमारे प्रसारण FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर उपलब्ध हैं। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम होगा बस थोड़ी ही देर में।

इस समय अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है रेडियो गोल्डन सिटी। हमारे प्रसारण एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर उपलब्ध हैं। श्रोताओं, दोपहर का एक बजा चाहता है, कुछ ही पलों में सुनिएगा हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज प्रधानमंत्री ने देश के लोकतंत्र और संविधान के आदर्शों को कायम रखने वाले नागरिकों के असाधारण साहस की सराहना की। वहीं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि आपातकाल एक कठिन दौर था जब देश के संवैधानिक मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। उन्होंने देश की न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूत करने का आह्वान किया। आपातकाल की बरसी पर आज जयपुर के दुर्गापुरा स्थित कृषि प्रबंधन संस्थान में लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। आयोजन में आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाले लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया जा रहा है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की 10वीं और 12वीं कक्षाओं का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज जयपुर के शिक्षा संकुल में ये परिणाम जारी किया। परीक्षा के नतीजे विद्यार्थी विभाग की वेबसाइट और अन्य निर्धारित माध्यमों से ऑनलाइन देख सकेंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित कर रहा है। कार्यशाला का उद्देश्य ग्रामीण भारत की विकास आवश्यकताओं के लिए AI आधारित समाधानों पर चर्चा करना है। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग ले रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार कार्यशाला से प्राप्त सुझाव ग्रामीण विकास में AI के सुरक्षित और प्रभावी उपयोग के लिए नीतिगत रूपरेखा तैयार करने में सहायक होंगे। राज्य पुलिस ने सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मोटर यान अधिनियम के उल्लंघन के खिलाफ प्रदेश व्यापी विशेष अभियान चलाया है। महानिदेशक

0: राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर 4 से 23 जून तक चले इस अभियान में रिकॉर्ड 1,58,000 से अधिक वाहनों पर कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर B.L. मीणा ने बताया कि इस दौरान नियमों के विरुद्ध ब्लैक फिल्म, अवैध हुटर, अनधिकृत लाल नीली बत्ती, प्रेशर हॉर्न और गलत नंबर प्लेट लगाने वाले वाहनों के चालान काटे गए। जिलावार कार्रवाई में जालौर जिला पूरे प्रदेश में पहले और अजमेर दूसरे स्थान पर रहा, जबकि जयपुर कमिश्नरेट में 807 कार्रवाई की गई। पुलिस ने आमजन से सुरक्षित यातायात व्यवस्था के लिए नियमों का पालन करने की अपील की है। राज्य पुलिस ने साइबर ठगों के नए तरीके को लेकर एडवाइजरी जारी की है। साइबर अपराधी अब फर्जी बॉस या RBI जैसी नियामक संस्था बनकर कर्मचारियों, विशेषकर वित्त विभाग के लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम V.K. सिंह ने बताया कि साइबर ठग ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए संदेश भेजकर तत्काल भुगतान का दबाव बनाते हैं। वे कोई लिंक या जिप फाइल भेजकर सिस्टम हैक कर लेते हैं। पुलिस ने सलाह दी है कि बिना पुष्टि किए कोई वित्तीय लेनदेन ना करें और अनजान लिंक या फाइल बिल्कुल ना खोलें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की शिकायत तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या साइबर क्राइम पोर्टल पर दर्ज कराएं। अजमेर के ब्यावर में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स की ओर से नशा मुक्ति के लिए ऑपरेशन लक्ष्मण रेखा शुरू किया गया है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश M.N. और महानिरीक्षक विकास कुमार के निर्देशन में शुरू हुए इस अभियान का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों के आसपास नो ड्रग्स जोन बनाना है। इसके तहत सभी शिक्षण संस्थाओं के 500 मीटर के दायरे को पूरी तरह नशा मुक्त क्षेत्र बनाने के प्रयास किए जाएंगे। ब्यावर के केंद्रीय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों और शिक्षकों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए स्कूलों में शिकायत पेटी भी स्थापित की गई है। प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियों में और तेजी आई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी भाग में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई। सबसे अधिक 90 मिलीमीटर बरसात 12 जिले के 18 में रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: इस समय अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है रेडियो गोल्डन सिटी। दोपहर के 1:05 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं ग्रामीण परिवारों का कार्यक्रम पणिहारी।

0: पण यार कार्यक्रम करून आली संग में उन्होंने सुबह बैन था घना घना राम राम नी तो बैन घना सारा राम राम आपने भी घना घना राम राम सुबह बैन राम राम सा राम राम आज तो नीतू बहन मार तो मूड तड़ो खराब हो तो पूछो मत
1: क्या किए हो यो?
0: अरे रस्ते में आते कदे कदे कोई अड़ी घटना बीत जावे ना तो पूछे किए हूँ तो आप पे लारी पी जावा और पे न तो आप की कह सको ना हमें वक्त अड़ो है
1: जी
0: आप पूरी बहनों भी तो देखती हो सके समय अड़ो आयो कि आप गलत चीज आंखे से देखो भी तो भी बताए कौन सको कि तू गलत है।
1: गलत जी
0: हालांकि ये है गलत चीज बताना चाहिए आज के युग में जो आप देखो ना कि हमें भाई टाबर मनी कोनी टाबर बात में सुने कोनी ओ कोई पाड़े पड़ोसी में कोई गलत हुए तो अगे तो पाड़ो पड़ोसी भी धमकी दे के बता देता कि ना है तू गलत करे
1: जी
0: और हमें वो गलती कोई बतावे कोनी गलती नहीं बतावे तो चीज दिन ब दिन बढ़ती जावे और उन रोकने वालों भी केवी नहीं कि चाहिए क्योंकि था कयो नहीं आना जो कि
1: हाँ
0: पहले जमाने में ना पाड़ो जो होता नहीं उम्र भी डर रहे
1: डर
0: तो
1: रहे तो
0: हो मैं थोड़ा नहीं है बताऊं कि मनो याद है कि घर में ना नहीं है अगर मान लो थोड़े बहुत भी अगर कोई खिटपिट करने वालों हो तो नहीं तो
1: हाँ
0: डर रहे हो तो कि पाछड़ यानी पड़ोसी सुन
1: सुन
0: लेते
1: लेते
0: और
1: तो
0: हणा आए नपन
1: कैसे।
0: डांट
1: सही
0: देते
1: बात
0: तो
1: सही बात
0: ऐ चीज है जो हमें लगभग खत्म हो रही है हमें पाड़ो पड़ोसी तो कोई डर भी है ही गोनी
1: वो ही सुनाई तो बहन आपने खुद कर रहे हो
0: जी
1: और खुद कौन पुरुष वर्ग ना महिला वर्ग क्योंकि घर रो जो को ढांचो है घर रो जो को अपरा सारा तौर तरीका है बच्चों ने जो को बात सिखावनी है वो सब एक माँ मथे निर्भर
0: जी
1: है माँ के पासे चला बे टाबर के पासे बैसे पर मैं तो आज जो को देखी हूँ तो घर तो निकली अपर बनिया रही तो बातों करने वास्ते रस्ते में देखो तो बे जगह दो तीन गाड़े उभे थे और एक आदमी है जो को पानी रो पाइप लियो रो प्रेशर सुबह गाड़ी में आप धो लियो तो
0: धोए
1: नी मनो तो थे 10-20 बाल्टियां हुए
0: खराब कर दिए पानी
1: पानी
0: वेस्ट
1: ढो
0: कर
1: लियो
0: दिए
1: वो कीचड़ कर दियो रस्ते में हमें वो बात समझ में को नहीं आओ कि 20 बाल्टी अगर कोई मवेशी पीवत कोई गाय पीवत कोई बकरी पीवत कोई भी ढोर ढगो पीवत या कोई रे भी कौम आवत तो देखो आज रे ये युग में पानी की कितनी कीमत है ये बात अपन समझाने की जरूरत कौन
0: जरूरत
1: है तो
0: कौन
1: हर आम आदमी ना एक चीज था होनी चाहिए कि आज रे ये समय में पानी कितनी कीमती है।
0: जी मैं थोड़ी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि देखो नहीं अना अपर एक जैसलमेर की बात करूँ
1: हाँ
0: बहुत सा एरा मतलब जगह है जित पानी री जो सप्लाई है वो 10-10 15-15 दिनों
1: आवे
0: में
1: कौन
0: आवे कोनी और पछे वो ना टैंकर नवाना पड़े लेकिन फिर भी मैं देखी हूँ कि भले टैंकर नवाना पड़े लेकिन वो पानी रो जो दुरुपयोग यानी
1: वो
0: वो
1: तो करते ही
0: बराबर करे क्योंकि घर धोनो और जो था कहो गए आपरे गाड़ियों ना धोनो
1: हाँ
0: और गाड़ी धोन में नहीं है चला पानी तो वे चोरी वगैरह में ना जिकर कोई आप बात ही को नहीं कर सको और भी जो है कि जो था कहो कि गृहिणी है जो आपरे टाबरों ना आप सांचे में न कोकर ढाले एक उर कने हुनर हुए
1: हुनर हुई
0: हमें देखो अगर गृहिणी खुद बच्चों न केवे के पर देखो पानी ना व्यर्थ मत
1: कम पानी
0: गवो
1: आवे
0: हाँ
1: इसको अपना पानी जो तो उपयोग करने वो तो
0: वे
1: करना ही
0: तो
1: है।
0: करो मैं देखियो वॉश बेसिन में न पानी तो चालू है नल
1: हाँ
0: चालू है
1: हाँ
0: और बच्चा ब्रश कर रहा है बच्चा की बूढ़ा की
1: सब
0: सब सब वे पानी तो दुरुपयोग कर रहा है पानी अनियंत्रित रूप से जब बह रहे हो
1: बेवेज है
0: ठीक है नहीं तो यहाँ करो ना जितनी तक ये ब्रश करो या थोड़ा कोई भी पानी रो काम है थोड़ी देर नल बंद कर लो और पछे करता जाओ
1: अच्छा वो मैं लगनो कहीं कोने
0: हाँ की करना है खड़ा हो थे करने बंद ही तो करना है लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें हैं नहीं ये बच्चों ने अगर आप छोटे समय से मतलब आप बताए दो घर में ना टाबरों ना और बीजो की है आप माथे भी लो नहीं कि आप घर की साफ सफाई कर रही हो देखो एक बाल्टी पानी तो जो काम हुए भी हुए आप 10 बाल्टी
1: कुएं में
0: पानी
1: बैठ क्यों
0: क्यों
1: ढोलना
0: ढोलना ढोलना ए छोटी छोटी बात है अपन खुद ना ध्यान रखना पड़ते और बच्चों ना और बुढ़ो ना समझाना
1: वही देखो
0: पड़ते
1: नीतू बहन ये है कि अगर हमें कच्चा मकान तो लगभग खत्म
0: है
1: हो
0: ही
1: गया
0: कोनी
1: है ही कोनी सपना है जो को पक्का मकान है तो देखो पोचा लगाना ही पड़े पर बाल्टी में सीधो सू अगर साफ सुथरो पोचो थे लो
0: जी
1: कोनी के पोचा हमें आज पोचो कर नुवे ना यहाँ बोर कर रख दियो काले अपने
0: धोए
1: मिश्री
0: हाँ
1: लगाओ
0: हाँ
1: तो देखो सफाई को नहीं आ
0: जी जी
1: पोचे ना साफ सुथरो धोए के थे जिते दिन पोचा हमें आज लग गया तो वो लास्ट में उन्हें धोए के सुखो दो और बीजे दिन वैसे पोचो लगाओ बाल्टी में तो घर चमके कांच चमके जो और ये जगह जब से 2-3 बाल्टी ढोड़ो पछे वो मतलब बीजा आवे जो पग पग करता जावे पछे वो पानी से खोचो और पछे पोचो लगाओ तो उतनी सफाई को नहीं आवे तो उ रब दे फायदा हो जावे एक तो सबसे पहलो और बड़ो फायदो तो पानी की बचत हो जाए।
0: जी
1: जो फायदो है कि कभी भी आप पानी धोयो माथे अचानक सु कोई आ गयो तो जा भैंस पानी में
0: फिसल गई,
1: चाहे टाबर हो घर में, चाहे बड़ा हो चाहे बुजुर्ग हो। और जितने घर में बुजुर्ग है उन्होंने तो विशेष ध्यान रखना पड़े, क्योंकि देखो बुजुर्ग वाली भी तो एक ए बात है कि उम्र थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ी थोड़ी समय में दवाई लेनी है, पानी पीणो है, बाथरूम करने जाना, उन्होंने घड़ी घड़ी ऐसी चीजें होया करे। एक जवान आदमी तो 4 घंटा एक जगह बैठो रहे, पर जो बुजुर्ग इंसान भी उन्होंने घड़ी घड़ी बाथरूम करना उठना पड़े, घड़ी पानी पियो के घड़ी मतलब आई बात हो घड़ी घड़ी उठते हमें वो जगह से पानी ढोल दो और नहीं ध्यान रहे तो ए, आई करती। तो ये वास्ते सबसे तो पहली बात है कि दिमाग रे महीनों ये बात बैठा हुआ तो मोनो कम से कम पानी बिगाड़ना है, जितनी जरूरत है उतो तो देखो हमें आना गर्मी ना पड़ी थी नहीं तो बहन हमें जो साकर इंसान नहाई और संजर भी कई बार मन हुई कि ना नहा लो तो वो गलत को नहीं, क्योंकि जिसे में जी सोरो हो 2-4 लोटा पानी ढोल दो ना पाओ सूती कपड़ा पहन लो तो ये गर्मी से भी अपन राहत मिले और वो पानी अपन उगे ना पे वेस्ट कौन बना। पर ऐ जो मैं कौन आज मैं देखिएगा जो गाड़ियाँ धो रही है तो वो गाड़ी ने जो आप पोचा की बात करी नहीं ठीक उसी तरीके से बाल्टी में पानी लो कपड़ो लो और गाड़ी ने आप आलिशान धो, घर में आप बाइक है तो आप उगे ना भी धो। अच्छा पहले भी ए भी होते नहीं कि बहन के घर में मोटा मोटा बाड़ा होता, अपने ग्रामीण क्षेत्र में भी मोटा बाड़ा होता पानी जो ढुलतो नहीं तो लारे पौधा लगावड़ा होता के कोई चीज लगोड़ी होती तो उन्होंने या नाली से पानी से घणो निकल तो लारे गाय पी लेती या बकरी भी पी लेती, हमें वो चीज भी कोनी, हमें तो पानी सीधो नाली में नीचे पानी दिखाई को कितो पानी तो ढोल दी
0: बिल्कुल
1: पानी ये तरीके जावे कि ठाई कौन पड़ेगा अपन दिन भर में कितो पानी गिरा दिए। तो अपन तो हाथ जोड़ के बहनों से इस बात अपे कहते हो कि जितो ज्यादा हो सके पानी बचाओ, अगर आज पानी अपे ज्यादा ढोल रहे हो तो आने वाले समय में अपर टावर नो पानी मिलते कि नहीं मिलते उधर कोई खबर कौन है।
0: जी सुबह बहन ये बात तो थोड़ी बिल्कुल सही है कि अपन हणो तो ये पानी की बचत कर सी जब अपनी आने वाली पीढ़ियों ने पानी नसीब होते, क्योंकि हणा आप देखो ही नहीं कि बाहर विदेशों में ना जो पानी है पूरी बहुत ज्यादा कमी हो रही है धीरे धीरे
1: धीरे।
0: वो देखो ना अपर जो बोतल में पानी को करा पैक वो खरीद खरीद के पिए और अपन हणा
1: मिल
0: रहे तो आने वाली पीढ़ी ने ये पानी खरीद के नहीं पीणो पड़े वो ना जो हणा अपन सुलभ हो रही है पानी जो वो ना भी हुए तो ये वास्ते अपन हणो सुई पानी ना बचाने की कोशिश करनी चाहिए अपर प्रयास रहे से तो ही जे। अभी जो एक हूँ थोड़ा बात करना चाहूंगी कि देखो पानी कौकर आवे जे हरियाली दिखते हैं जे पेड़ पौधा दिखते हैं वो पानी आते तो जितो हो सके अगर आप पेड़ पौधा उगाता रहे हो तो अपने वास्ते भी बढ़िया है और आने वाली पीढ़ियों वास्ते भी बढ़िया।
1: देखो पेड़ पौधा तो हमें जो है बरसात आई नहीं और हमें तो बच्चों में भी अपर खुशी की बात है कि टाबरों में भी इच्छा हुई कि मैं पौधा लगाऊँ
0: जी
1: घर में भी हुई बगीचों भी लगा हुई वो भी बात सही है। कई चीजें अड़ी हुई जो ये आधुनिकता जो फैली है नी अपर गाँव तक भी गई है वो आधुनिकता और हमें जो आप सफर में गया मान लो तो सबसे पहले तो पानी तो सेंगे उससे पहले याद आ
0: जी
1: 20 रुपया भोंगिया पानी
0: पानी लेकर
1: तो उ में अगर एक गुटको तक भी हो सके तो अभी उन्हें संभाल रखा तो पैसा लागू है
0: जी
1: हमें थे बीजे पास आओ आज कोई बढ़िया आयोजन करे अच्छा
0: जी
1: आयोजन करे तो वो भी चाहे कि चलो सब चीज़ बढ़िया है तो आप पानी की बोतल बंद सब ना दो पानी गिलास भर के नहीं पिए कैंपरों से नहीं पिए हर बोतल जो छोटी छोटी बोतल आजकल आई है हमें मैंने ओखे देखी बात है नहीं तो बहन कि वो बोतल खोली एक गुटको पानी पियो और वो आधो लोटो अगर उनमें पानी हो बोतल नोक दी बीजी ढोड़ देना बड़े बीजी ले ली बड़े बोतल नोक दी बड़े बीजी ले ली अरे तो जब जो धनी पैसा खर्च कर रहे थोड़ा एकदम शुद्ध पानी पिला रहे हो पानी थोड़ा पी लिया हमें बचे तो बीजे घर थोड़ा करो वो ना मान लो 30 लाख रुपये वो पी ले नहीं तो कोई बात
0: आपने नहीं संभाल
1: ढकड़ो बंद कर हाथ में रखो बड़े लगे बड़े पी लो पर में पैसों को लागू है नी तो आदमी रुपये दिमाग देखो बीजोड़े फिक्र कौन करे कि भाई जिसको लाए हुए तो लगा है नहीं पर ऐ सोच जिसे तक आप नहीं बदलते ना जितने आप नकल भले कर लो बाहर ले सॉरी पर उगे बराबर आप कौन होता
0: जी
1: इस वास्ते आप मोजी तो मन से हूँ थोड़ा बहनों ने सब ना बात है कहनी चाहन कि सिर्फ एक बात सोचो कि कोई भी चीज अपन अगर मिल रही है तो उगे कहते ना कहे तो कहरा पैसा तो लगा ही
0: जी
1: अपर घूमे भले मत लगा हर जगह घर बार समाज तीरे सासरे मासी बुआ काकी कहरे भी जाओ आपरे घर जो तो समझो सबना फिर भी बिगाड़ो मत हो अपने ट्यूबवेल जगह में लगोड़ा टूटी पड़ा भोंग पानी आवे कौन बाठे टूटी फूले कौन भोंग दे मेरे ऑफियो देखी बात है चटाई में सरकार ही है। अरे सरकार अब सरकार करी सरकार अपो
0: और ये पैसो जावे जो सरकार के नहीं अपो रे तो जावे
1: जितनी तक सोच में बदलाव नहीं आसे नहीं तो कहन जते आपे भला यहां भाषण दो जो पानी बचाओ ना करो वो करो वो हर महिला री सोच में बदलाव आनो चाहिए। और सोच में जब बदलाव आसे जब ही ये सब चीजें बचत हो तो वैसे आना आपे आना पोथी ले बैठा तो घंटों पर गाना सुना सका के बचत कहे तो चीज भी हुई पर सबसे पहली बचत पानी रही है जो अपन करनी चाहिए। और उगे में आलस है कुत्ता ही तो एक मतलब
0: रत्ती
1: भरनी नहीं करनी चाहिए पानी बचाओ। और ये उनाड़े में खिड़की हुए नहीं यहाँ पे बैठा हूँ पटियाल में खिड़की भीगी हुए हम पहले जमाने की बात कर रही हूँ उठो कपड़ो गीलो करो वो पानी जस्ट खो गए और खिड़की रे आडो कपड़ो लगाओ ठंडी ठंडी हवा आवे आलिस लाइट बचत भी हो जाए लाइट भी और हवा भी दूसरी ठंडी आवे और हवा ठंडी आवे जहाँ कुछ संगीत सुनो हमें तो याद पहुँच रहे गीत सुनाओ
0: ना ना आना सुनाओ हम बढ़िया देवे लोग गीत।

0: सावधान,
1: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
4: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
5: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
3: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
4: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: वाह सावा ने तो बहने तो था संदेश भी सुना दिया बड़ा बेर और पनिया भी सुना दी खुशी है। अगे अभी है तो अगे आड़ंग आतो ने जना चार सहेलियां मिलकर बैठ के पनियारी गाँव के भाई पनियारी गाँव तो बरसात आवे तो आज तो पनियारी सुनाई है। देखो आबो राजी हुए ना अपने बरसात आ जाए तो हमें तो बरसात रो मौसम जाए रही है पर अपने वैसे थोड़ी मोड़ी बरसात मोड़ी जावे लारे बच्ची खुशी हुई जो अपने बाढ़ में जैसे मेरी जाने इलाके में आवे पर कोई बात नहीं। अमृत तो जो तो बर्फ है वो तो बढ़िया है
7: जी।
6: पर एक बात और भी है नीतू बहन के कोई भी जगह आप यहाँ गौर करो नहीं देखो नहीं तो घरों रे महीना जिको घर में बुजुर्ग हुए वो घरों रा कायदा कानून रहन सहन अजो तक बढ़िया है और जो आजाद हो जावे वो रखे देख लो
7: जी जी जी। थोड़ी बात तुम पूरी तरह से सहमत हो कि जिके घर में ना बड़ा बुजुर्ग लोग रह रहे नहीं
6: हाँ
7: तो वो परिवार हमेशा नियमों से चलिया
6: करे
7: हाँ चाहे वो छोटा टब्बर हुए तो की चाहे युवा हुए तो की चाहे कर रहा थोड़ा बड़ा हुए तो की क्योंकि उम्र में ना हमेशा एक थोड़ो भय बैठो रही कि अपन ये काम की टाइम में से करना है और की तरीके से बात करनी है की तरीके से अपन रहना है क्योंकि देखो नी अगर अपन स्वच्छंद हो जाऊं नी
6: हाँ
7: तो एक तरीके से होगा कि बच्चों अपर जो नियम कायदा हुए नहीं वो तो आपको एकदम परे हो जाए
6: हालांकि नियम कायदा तोड़ना कौन चाहे कोई भी भाई
7: हाँ हाँ
6: पर स्वतः ही कोई अड़ो कारण हो जाएगा मैं नहीं जाए कोई बुजुर्ग घर में तो देखो घर उधारा तो लाई जाए तो सौभाग्य से चाली हुई उम्र घरों में बुजुर्ग पर जो घर में बुजुर्ग बैठा भी तो उम्र घना सारा फायदा है क्योंकि इतने आओ जाओ निश्चिंत
7: निश्चिंत
6: दोनों घर की फिक्र बने और कोई घर में आ जावे मेहमान सेहमान या कोई घर आई आप रहे रिश्तेदार आवे तो थे काम करता रहो
7: ओ बुजुर्ग होना और कहने संभाल ले
6: संभाल ले आराम से वो ना आए ना आए के देनो के थोनो खाली पानी चाय बनाई दिला दे जाऊंगी मतलब वो काम बुजुर्ग आराम से। अच्छा उवे में और एक अच्छी बात ये भी है नीतू बहन के उनो बुजुर्गो नो इतना बढ़िया लगे कोई भी आवे करनो बैठे बात करे तो उमर समय तो बढ़िया निकले जे प्लस उनो मन सु बहुत अच्छो लगे यह बात थो गौर जो करी हुए कि हमें कई घर ऐड़ा भी है भाई देखो आज रो युग है अपे भी कौन के गाड़ी भी पहियों से चले आदमी काम करे लुगाया भी काम करना चाहिए कर भी रही है हमें बच्चा भी स्कूल जावे तो समय बहुत कम मिलेगा अपे अपने माए तो करना बैठो
7: जी
6: तो करना नहीं बैठो तो बात भी को नहीं ठीक है थोड़ा घना आया गया पर अगर अपने पूरे दिन महीनों घंटों पर घंटा समय निकाल के करना अगर बैठो उम्र बात सुनो तो अपारो हकीकत में उम्र प्रति समान है
7: जी।
6: हकीकत में आप उम्र भावनाओं समझो हकीकत में आप उम्र ध्यान रख रहे हैं और नई जना में ध्यान तो रखना देखो कौन है वो करना ही पड़ता है घर में मायत बैठा तो रोटी खवानी चाहिए चाय पावनी चाहिए उम्र ध्यान रखना चाहिए दवाई वो देनी चाहिए पर समय बहुत बड़ी चीज है।
7: देखो जहाँ कहो कि अगर आप बुजुर्गों समय देखो नहीं तो अपन कने बैठ के सीखना घो चीजा बैठा
6: हाँ
7: देखो अगर घर में ना बड़ा बुजुर्ग है नहीं तो उम्र करने आप ज्यादा अनुभव हुए उम्र अनुभव है जो आप साझा कर से तो अपन ना सीखन न मिले और आगे चल के अपने भावी जीवन में ना वो बड़ो कारगर सिद्ध हुए उपयोगी साबित होते हूँ ऐसा और जहाँ बड़ा बुजुर्ग है घर परिवार में ना तो वो बच्चों ने भी सिखा से और अगर उन्होंने बच्चों ने भी उम्र करने बैठा है वो बातों सुनवाओ नहीं अगले तो उए सु बच्चा तो जको के सके था ना कि जको ज्ञान है नी वो मेनो बढ़ोतरी
6: बढ़ोतरी बहुत ज्यादा और अच्छी बढ़ोतरी हो जावे क्योंकि कच्ची कली हुई नी जब कच्ची उम्र हुई नी उ टाइम जको अपने टावर और दिमाग में बात बैठा हूं ने तो वो बात जल्दी पकड़े
7: जी पकड़े
6: और वो दिमाग कभी कभी कई बार अपने खुद देखो ने अपन बचपन की बात आ गया और हणोरी जो घटना घटे थोड़ा दिन याद रहे पे भूल भूल जाए
7: जी
6: तो बचपन एक अड़ी चीज है जिसे में अगर आप बढ़िया बात सीखो या बढ़िया चीज सीखो या अपन जो आज राग आला पियाती सारी बतरी जी वो सब है तो वो सब चीजें है जो जब इस कहे टावरों ने तो जल्दी उसके सिखाओ अड़ी अड़ी चीजें है जो सिखाओ आप परंपराओं सिखाओ आप रहन सहन का तरीका सिखाओ आप खान पान है वो खुआओ क्योंकि आप खुद छोड़ दियो गांठ बनावना छोड़ दी राब बनावनी छोड़ दी घर का साग बनावना छोड़ दिया तो हमें कहो कि टाबर खावे को अरे आपने खुद बनाए को तो खासे ये वास्ते सबसे पहले अपन खुद नहीं चाहिए और घर में अपन जो माए थे बुजुर्ग है तो उम्र भी कई बार आप देखो है कि हमें जो कोई काम में आप जा रहे हो तो आप तो रवाना हो गया कोई हमें थे की कर सो हाल हमेशा एक है बात रही है हमें उम्र इच्छा भी हुई हाल है फिर भी वो बोले को ना हो ठीक है मैं बैठा हूँ पर अपन चाहिए कि कदे कदे अपन उन्होंने भी बाहर ले जाना चाहिए
7: जी
6: भले वो सरलता से हल सके तो बढ़िया है कदे कदे यही देखे उम्र ज्यादा हो गई भाई बन सके घनी सारी समस्याओं भी हुई तो वो साधन हमें घना ही बाप रहा है व्हील चेयर में बैठा सको या आजकल जो बाइक निकले आए मुँह में बैठा के ले जाए सको जैसे अपने प्रोग्राम पर आयोजन हो रहे हो ले जाए के बैठा दो दो तीन घंटा हो आप सब तू मिले वो जितने ज्यादा लोगों से मिले जितनी ज्यादा बढ़िया बात करे तो बच्चा वो घर में खुश रहे नहीं तो देखो क्योंकि ये उम्र में शरीर भी चौंचा करे तो पता चिड़चिड़ापन भी आवे तो ईर वास्ते कदे कदे बाहर ले जाऊँ सू अपरे बुजुर्गों रो मन भी अच्छो रही उम्र मन भी लगोड़ो रही और चार मनुखों से मिले तो उन्होंने बहुत बढ़िया लगे
7: जी
6: और तो ए गुणी का हर वक्त बाहर निकल गया और उन्होंने घर में छोड़ दिया ऐडो नहीं करना चाहिए कभी कभी उन्होंने भी बाहर ले जाना चाहिए और सब तू तो पहली बात है कि आप रो समय जरूर निकाल के घर में बुजुर्गों समय रो अपे एम सोचो यही बैठा थी देर में फोटू खो गया वो समय थोड़ा बहुत आगे जाए तो फायदा देते और नहीं तो जानो टबर खुद भी ये होते ना ए तो मैं अगली थाना जो सुनी हुई बात के सासू जी का रोटला आगे तैयार है
7: जी
6: जरूर
7: ओड़े जागे अपन
6: जिसके मैं कल युग रहा बच्चा तो दिमागों में जो बिजली भरोड़ी पेड़ा तेज दिमाग रहा है जो फट बात में समझ जाए कि भाई मोरे को के व्यवहार चढ़ो तो आगे होगी सी बेपक चढ़ो करते ये वास्ते तो अगली आप रही सोच के भी अपन बढ़िया और सही तरीके से चलना चाहिए और घर रे महीना तो देखो एक अभी है खैर घर रे महीना सुख शांति है हंसी खुशी रो माहौल है और बढ़िया माहौल है तो उ घर में हर चीज लक्ष्मी कहो संपदा कहो सुख कहो शांति कहो मेहमान कहो हर चीज बढ़ोतरी हिसाब से आया करे और जिसकी जगह क्लेश हुए तो आप तो बताओ जल्द को जिसकी जगह क्लेश हो सी भी संभव कौन है की भी शांति कौन है कोई भी चीज अच्छी कौन है कोई उदाहरण भी कौन है वो घर वालों को उदाहरण दे दे उदाहरण भी कौन दे सके एक बात और भी है कि हमें जो आप खुद हो आप मत लो आप अभी जो ना कहना को ग्रस्त जीवन है ये कई सारा काम हुई कदे कदे कोई बात ऐडी हो जाए कि मन खराब हो जाए मन खराब हो जाओ ना हमें आप मन सु बुझोड़े मन सु काम कर रहे हो कोई सु बात कर रही है इच्छा को नहीं आ रहा तो अपोरे मायतो रे महीनो कंप्यूटर तो हमें बाप रे उमरे कुदरती कंप्यूटर लागू रहा
7: अच्छा
6: वो ना एक सेकंड रे महीनो पतो चल जा रही है आज ना दिक्रे मूड खराब है या आज जीणी तो सही को नहीं या शरीर में कुछ दुख पात है बोल कौन रही बताए कौन रही तो वो ना अपने आप पतो चल जा रही और वो अपने आप से शुरू भी हो जाए भाई आज की बात है आज या कोई आना रीसा बड़ोड़ मैंने कहते तो लूणी पकड़ो कहती हो तो भी उन्होंने पता पड़ जाए तो मतलब कहन रो है कि सूरत इंसान देख के वो मोहली भावना होने समझ जाए एक गुण और मैंने और भी तो वो गुण भी अपर बच्चा भी सीखे अपे भी सीखो और अपे ए बात बोल कौन सको तो अपर पकड़ भी ले तो पकड़न सु बात कर तो अपर मन भी हल्को हो जाए तो पचे आप खुल के बात कर सको ना आज ये बात थी आज यही हो और इस मनो ये तकलीफ हुई तो वे बात रो निवारण भी कई बार बुजुर्ग कर दे
7: कर दे
6: आप तो फिर मैंने अलू जोड़ा ही रहे पर घर में अगर बुजुर्ग हैं तो पहले जो छोटी छोटी बात हो नहीं वे निवारण एक मतलब मिनट और महीना करे
7: बिल्कुल
6: तो अपना चाहिए कि जिकोरे घर में मायत है बुजुर्ग है तो वो करना जरूर बैठे, वो समय रो सदुप।

0: उपयोग करे और उम्र समय जरूर ले रहे और चार बातों खुद भी सीखे और टाबरों ने भी सिखावे। इन दोनों आगे तो रामायण पढ़ो तो घनी है नीतू बहन पर घड़ी जो नंबर आया है ना ओ हमें कह रहा है कि थोड़ी पढ़िया रीत बखत है देखो
1: पूरा हो
0: रहे। देखो बातों करते करते समय कितो बेगो निकल जाए
1: जी।
0: समय एक ऐसी चीज है जो मेरा महीना जो पहिया लागो रहे वो निरंतर चलते रहे। ये एक और भी बात है कि आज रुको हमें वो आज करना चाहिए काल तक नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि समय बड़ो बलवान है और हमें समय कह रहे बहनों से सीख लें और कर लें
1: राम राम,
0: राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण परिवारों का कार्यक्रम पणिहारी। प्रसारण हो रहा था रेडियो गोल्डन सिटी से। हमारे प्रसारण FM बैंड 101.8 MHz पर उपलब्ध हैं। श्रोताओं, दोपहर के 2 बजे हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम। बने रहिएगा रेडियो गोल्डन सिटी के साथ।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार दो शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। और मैनचेस्टर में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मैच में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां पढ़ी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये कविता मात्र पंक्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर थोपे गए दर्द, घुटन और प्रतिबंधों की एक जीवंत और सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी की कालजयी पंक्तियां आज भी उस कालखंड के काले अध्यायों को आवाज देती हैं।
1: जब आपातकाल को 1 वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदास, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदास, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, 1 वर्ष बीत गया।
2: सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण बिहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, 1 वर्ष गया, 1 वर्ष।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र

0: सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका पर दबाव डाला गया, मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित हुई।
1: जुडिशरी के खिलाफ बेशर्मी, संपादक पत्रकारिता के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव, विपक्षियों को जेल में बंद करना और गलत तरीके से इमरजेंसी लगाना। मैं इमरजेंसी के अंडरग्राउंड में प्रधानमंत्री की भूमिका की तारीफ करूंगा। सरदार के रूप में जितना अंडरग्राउंड को उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर भारत को जो संगठित किया था वो कमाल था। और आज अपने ट्वीट में उन्होंने उस काले अध्याय को याद किया है कि देश की जनता ने कितनी हिम्मत दिखाई।
0: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ऊर्जा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। गुरुग्राम में आज ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लक्ष्यों और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा क्षेत्र के निर्माण के वास्ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्मार्ट दृढ़ ढांचे और ऊर्जा भंडारण प्रणाली का तेजी से विस्तार कर रहा है।
2: फ्यूचर एनर्जी सिस्टम्स मस्ट बैलेंस,
3: भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों में स्थिरता और विश्वसनीयता के बीच संतुलन होना चाहिए। भारत ऊर्जा क्षेत्र की पूरी श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अब तक 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह बदलाव और बड़े स्तर पर जारी रहेगा।
2: ट्रांसफॉर्मेशन विल कंटिन्यू एट स्केल।
0: ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की यह बैठक कल तक जारी रहेगी। इसमें ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अवसर दिए जाने चाहिए।
2: The global south should be enabled.
4: वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। इससे वैश्विक विकास के नए अवसर पैदा होंगे और साझा प्रयासों से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। हम केवल कुछ देशों पर नियमों और मानकों को बनाए रखने के लिए निर्भर नहीं रह सकते। दुनिया को अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण रखना होगा।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने अमरीका के वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के विदेश उपमंत्री जेकब एस हेलबर्ग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि बैठक में भरोसेमंद और विविध आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6वें चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। पंजाब पुलिस ने एक केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान में अमृतसर जिले में सीमा पार से संचालित अवैध हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में एक अफगान नागरिक और एक नाबालिग सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित अपमान की वीडियो को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई राजनीतिक दलों के नेता उनके इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC ने भी श्रीमान से पद छोड़ने को कहा है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा कल FIR दर्ज किए जाने के बाद मुख्यमंत्री के समर्थकों द्वारा बचाव में पेश की गई फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच शुरू हो गई है। मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप शामिल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटियाला में कहा कि एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और गुरुग्राम स्थित एक प्रयोगशाला द्वारा फोरेंसिक रिपोर्ट में कथित हेरफेर की विस्तृत जांच चल रही है। इस बीच श्री भगवंत मान ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और ये उन्हें बदनाम करने के अभियान का एक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच न्यायालय की निगरानी में कराने संबंधी जनहित याचिका पर आज तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। याचिका में अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे से संबंधित सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित करने की मांग की गई है। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने राज्य सरकार को इस मामले में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए एक हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी गठित की गई है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या 2 गुनी से अधिक हो गई है।
5: अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशन को मॉडल में ही कन्वर्ट करके बहुत सारे एयरपोर्ट को भी इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं। और यही विश्वास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की इस सेक्टर पे रखते हैं कि एक सिविल एविएशन सेक्टर में एक रिफॉर्म, एक कार्यक्रम अगर करते हैं तो इसका प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है।
0: यह सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के अंतर्गत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। एक रिपोर्ट।
6: राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है। शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत की खबर है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने भारत के लोगों की ओर से वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत अनुसूची H2 का दायरा व्यापक रूप से विस्तारित किया गया है ताकि नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इसमें QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस ढांचे के अंतर्गत दवाओं की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल की गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 575 अंक की उछाल से 77,566 पर, जबकि निफ्टी 173 अंक की वृद्धि के साथ 24,195 पर कारोबार कर रहे थे। और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया। इससे पहले मैक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर विश्व कप के ग्रुप चरण के अपने तीनों मैच में पहली बार जीत दर्ज की। मोरक्को ने हैती को

4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। बात मौसम की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में 30 जून तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। साथ ही कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप ने कई इमारतें ढही, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेग 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज। स्टूडियो की घड़ी में इस समय दोपहर के 2:30 और 19 सेकंड हो रहे हैं। समय है आपके मनपसंद कार्यक्रम एक ही कलाकार का।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत सभी सुनने वाले श्रोताओं का एक ही कलाकार कार्यक्रम के इस सफर में। आज हैं आप मेरे यानी मनीषा के साथ और आज होगा ये सफर तय मेरे साथ। तो सभी लिसनर्स को मेरा यानी मनीषा बोस का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, एक ही कलाकार में बात आज हिंदी फिल्म संगीत की उस सुनहरे दौर की होगी जहां संगीत और संगीत की धुन बनती नहीं बल्कि अनुभूतियों में जी जाती थी। आज का कार्यक्रम समर्पित है ऐसे ही संगीतकार को जिनकी धुनों में दर्द था, मोहब्बत थी, शायरी थी और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गहराई भी।

0: कर लो सलामी हसरत कबूल कर लो।
1: फिल्म बाबर का गीत था, आवाज सुधा मल्होत्रा की थी, गीत को साहिर लुधियानवी ने लिखा था और तर्ज बनाई थी रोशन ने।

ये स्वर है मुकेश और सुमन कल्याणपुर की फिल्म का नाम है मेरा घर मेरे बच्चे। रचनाकार हजरत जयपुरी, संगीतकार सरदार मलिक।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पर मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अब सुनिए प्रेम धवन का लिखा गीत, हंसराज बहल का संगीत, आवाज मुकेश की, और ये फिल्म है मुड़ मुड़ के नातिक।

तो नहीं हो, रुको रुको हवा तो नहीं हो, असीम हो खुदा तो नहीं हो, रुको रुको हवा तो नहीं हो।

चाल बेमिसाल है, अदा भी ये कमाल है, मगर सुना है आपने कमाल को सवाल है। चाल बेमिसाल है, अदा भी ये कमाल है, मगर सुना है आपने कमाल को सवाल है। इसीलिए तो कहता हूँ अकड़ के ना चलो, सीन हो खुदा तो नहीं हो, रुको रुको।

0: ना यूं गुमान कीजिए, ना इतना मान कीजिए, है हम भी साथ आपके, इधर भी ध्यान दीजिए। ना यूं गुमान कीजिए, ना इतना मान कीजिए, है हम भी साथ आपके, इधर भी ध्यान दीजिए। बहुत हसीन मिलेंगे हमको, नाज ना करो,
1: हसीन हो, हसीन हो, खुदा तो नहीं हो, रुको रुको हवा।

0: जी वास्ता है आपका, ये रास्ता है आपका, अगर मैं साथ हो लिया तो क्या गया जनाब का। जी वास्ता है आपका, ये रास्ता है आपका, अगर मैं साथ हो लिया तो क्या गया जनाब का। मैं आदमी हूँ राम का, जी साथ ले चलो, तीन हो खुदा तो नहीं हो, रुको रुको हवा तो नहीं हो, तीन हो खुदा तो नहीं हो, रुको रुको हवा तो नहीं हो, हसीन हो खुदा तो नहीं हो, रुको रुको हवा।
1: कार्यक्रम का अगला गीत कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में शमीम जयपुरी का लिखा हुआ, आवाज एक बार फिर मुकेश की, और ये फिल्म का नाम है दिल भी तेरा हम भी तेरे।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते वो हुक लाइन बनी ओढ़नी चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। वल्लाह क्या बात है। जी हाँ, यह है फिल्म का नाम जिसका दो गाना अब आप सुनेंगे, स्वर आशा भोसले और मोहम्मद रफी के। इस गीत को प्रेम धवन ने लिखा है और संगीत रोशन का है।
2: अरे समझो तो समझो यू समझो ये हमको करे इशारे, तेरा कंगना है, हर तेरा कंगना।

तू ही बता के देख के हमको नजर तेरी शर्माए क्यों, नजर तेरी शर्माए क्यों, सर के तो सर के क्यों सर के।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। रवि के संगीत निर्देशन में प्रेम धवन की रचना, स्वर हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की, फिल्म का नाम है अपना घर।
3: तो भीगी भीगी प्यारे हैं नजारे, आओ छेड़ दे तराने सजा प्यार की।
4: देखो काली काली ये घटाएं, चल जाए ना जी हमको पुकार के।
3: भीगी भीगी प्यारे हैं नजारे, आओ छेड़ दे तराने सजा प्यार की।
4: ओ देखो काली काली ये घटाएं, चल जाए ना जी हमको पुकार के। कैसे भीगे भीगे प्यारे।

0: धर के जहाँ दिल झूमे, हम गीत मिलन के गाए। सारे जग को छोड़ लिया तुझसे जोड़, जीवन ये मैंने अपना।
1: कैसे भीगे भीगे प्यारे हैं नजारे,
2: आओ छेद कर नजर प्यार की।
1: देखो काली काली ये घटाएं,
2: चल जाए ना कि हम तो पुकार के।
1: कैसे भीगे भीगे

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के कंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: daqui, da Reli.
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। चंचल जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी आपको और सभी सुनने वालों को। चंचल वर्मा का नमस्कार।
1: क्या हाल है?
2: हाल बहुत अच्छे हैं।
1: देखिए बारिश की बूंदें पड़ गई है मुंबई के सरजमी पर, और
2: मुंबई के अलावा और भी बहुत सारी जगह है जहाँ छुटपुट बारिश की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन बारिश के बाद जब फिर से धूप निकलती है ना तो बारिश का मजा किरकिरा कर देती है क्योंकि उमस बहुत ज्यादा हो जाती है।
1: बस जब बारिश होती है तो हमें इंतजार रहता है कि नदियां भर जाएं, तालाब झरने और कलकल बहने लगे, मतलब ये लगता है कि पानी पानी चारों तरफ दिखाई पड़े। और जब ज्यादा बरसात होती है तो हम परेशान भी होने लगते हैं, तो बस यही उम्मीद करते हैं कि इस बार संतुलित बारिश हो। और आज विशेष तौर पर हम अपने श्रोताओं को याद दिलाना चाह रहे हैं कि आज एक विशेष दिन है, नाविक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस।
2: जी,
1: तो ये वैसे हमें रोज इस बात का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन इस दिवस के बहाने हम लोगों को आगाह करते हैं कि जो हमारे मछुआरे हैं, नदियों में जाते हैं, समंदर में जाते हैं, मछलियां पकड़ने जाते हैं,
2: जी,
1: तो उनकी सुरक्षा कितनी जरूरी है, कितनी सबकी क्या जिम्मेदारी बनती है, घर परिवार वालों की, समाज की। और दूसरा कि जब आप इस नौका विहार के लिए जाएं और नाविक का काम, मतलब मछुआरों का काम करने जाते हैं, तो पहली शर्त यह है कि तैरना आना चाहिए, कि बिना तैरे नदी में छलांग न लगाए। कि
2: हम वैसे भी जब हम किसी पर्यटन स्थल पर जाते हैं जहां नदी, झील, झरने ऐसी चीजें होती हैं, और वहां पर जब हम नाव की सैर के लिए जाते हैं तो सुरक्षा के तौर पर हमें एक जैकेट दिया जाता है पहनने के लिए कि अगर कभी कुछ दुर्घटना हो तो वहां आप सुरक्षित रहें। लेकिन उसके अलावा एक नाविक इस तरह का मौजूद हमेशा रहता है कि अगर कोई दुर्घटना हो तो अधिकतम लोगों को वो बचा कर ला सके। और बहुत ही उनकी कठिन जिंदगी होती है, उनके बारे में लोगों को उनकी सुरक्षा के लिए जागरूकता हो, इसीलिए इस तरह के खास दिन जो है वो हम मनाते हैं।
1: और कई बार क्या होता है कि जब नौका विहार के लिए लोग निकलते हैं तो बहुत सारे जो नाविक होते हैं वो नाव पर जहां पर ये सुरक्षा जैकेट नहीं देते हैं, कम होते, दो चार होते हैं और 15-20 लोगों को बिठा देते हैं, तो ये बहुत खतरनाक होता है। जो लोग बैठते हैं कहीं पैसों की बचत के चलते, कहीं समय की बचत के चलते बैठ जाते हैं, उनको ख्याल रखना चाहिए कि आपकी जिंदगी ज्यादा कीमती है, न कि आपके धन की धन। तो ये ध्यान रखें, अक्सर किसी जगह पर जब जहां पर कई भीड़ भाड़ इकट्ठी होती तो अमूमन ये घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि फला जगह पर नौका डूब गई, तो ये ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि इस तरह की आपदाएं अब कम हो रही हैं क्योंकि सरकार की ओर से भी मुहिम चलाई जा रही है कि एक तो सुरक्षा जैकेट बहुत जरूरी कर दिया है और जगह जगह पर उनकी टीम काम करती है, नदियों में जाती रहती है कि कहीं ऐसी दुर्घटना हो तो उन्हें बचाया जा सके।
2: तो इससे जुड़े कोई अगर अनुभव है हमारे सुनने वालों के तो वो हमें लिखकर अवश्य भेजें। इसके अलावा आज जिन विषयों पर बातचीत हम करने वाले हैं, हम बता दें कि अगर आपने घर में कुछ पौधे लगाने के आप शौकीन हैं या आप कोई खेती भी करते हैं तो कीट जो लग जाते हैं, जो कुछ कीड़े हैं ना जो लग जाते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, आपके घरेलू पौधों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, तो आज तो हम सिर्फ घरेलू पौधों के बारे में बात करने वाले हैं। आपने घर में अपने गार्डन छोटा सा बगीचा बनाया, छत पर एक बगिया बनाई है, तो उनको बचाने के लिए क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में हमारे सुनने वाले जरूर हमसे साझा करें। और शादी ब्याह एक ऐसा बहाना होता है जब बहुत सारे सगे संबंधियों से मुलाकात हो जाती है हमारी, कई बार तो हमें शादी में जाते ही इसलिए है कि अरे वो मौसी आएंगी, वो मामा आएंगे, वो ताऊ आएंगे, या उनके बच्चों से मुलाकात नहीं हुई होती है तो उनसे मिलना जुलना भी हो जाता है
1: और बहुत सारे दोस्त मित्र मिलेंगे तो चलते हैं, और वो जो इकट्ठे टीम बना के दल बना के जाना वो एक अलग अनुभव होता है क्योंकि अमूमन अकेले अकेले ही जाना होता है, लेकिन शादी ब्याह में कई टीम बन जाती है। भाई दफ्तरों से भी जब लोग किसी की शादी में जाते हैं तो कहाँ मिले, फला जगह पे मिलते हैं और सब झुंड बना के जाते हैं, तो उसका एक अलग अनुभव होता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे श्रोताओं के इस मामले में क्या अनुभव है कि वो जब शादी ब्याह में जाते हैं तो उन्हें किस तरह की फीलिंग होती है, कौन सा एहसास होता है, उन एहसासात को यहाँ पर साझा करें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।
2: और आज होगी कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत जिनका परिचय हम करा रहे हैं ये हैं रमीला बेन राय सिंह भाई। तो बातें विस्तार से होंगी लेकिन ममता जी एक गीत पहले सुन लेते हैं।
1: सुनते हैं ये गाना।

0: ममता जी, आज हम जिनकी कहानी की बात कर रहे हैं पद्मश्री के अंतर्गत, ये हैं रमीला बेन रायसिंह भाई, जिनको साल 2022 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा जा चुका है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार बिना स्वार्थ के ये अपनी सेवाएं देती आ रही हैं।
1: और बता दें कि सामाजिक कार्यों में उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया और 1 जून 1969 को गुजरात में उनका जन्म हुआ था। उनकी शिक्षा 10वीं कक्षा के आगे तो नहीं हो पाई और उनका जहां जन्म हुआ था समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए तो लोग जाने जाते हैं वहां के, लेकिन संसाधनों तक उसकी पहुंच सीमित है, इसलिए उनकी औपचारिक शिक्षा जल्दी ही समाप्त हो गई। ऐसा समुदाय जहां लड़कियों के लिए शिक्षा अक्सर घरेलू जिम्मेदारियों और कृषि कार्यों के आगे उपेक्षित थी।
0: बिल्कुल, और रमीला बेन ज्ञान की प्यास उनमें थी और कुछ कर दिखाने का जुनून ये भी उनका कम नहीं हुआ। मतलब जिस जहां वो जन्मी पली बड़ी, माहौल चाहे जैसा भी था, लेकिन उनके जुनून को वो रोक नहीं पाया और इसी बात ने उनके जीवन को उद्देश्य दिया और दिशा भी दी। भले ही वो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाई थी, लेकिन उनके जीवन के जो अनुभव थे उन्होंने उन्हें एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक बनाया, एक दयालु और दृढ़ निश्चय और परिवर्तन लाने वाली महिला के रूप में उन्हें ढाल दिया। रमीला बेन के जीवन जो था वो बहुत सारी बाधाओं से भरा हुआ था। उनके गांव में उचित शौचालयों का अभाव था, खुले में शौच करने जाना दैनिक जीवन की एक वास्तविकता थी और खासतौर पर अगर महिलाओं की बात करें तो बच्चों के लिए भी बात करें, जो छोटी बच्चियां थी उनके लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो सकते थे। इस चीज से महिलाओं को शौच के लिए रात होने का इंतजार करना पड़ता था और इससे उनकी सुरक्षा और गरिमा ये भी खतरे में पड़ जाती थी।
1: और इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं थी ग्रामीणों को, जो सदियों पुरानी प्रथाओं को छोड़ने के लिए मनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो प्रथाओं में इतने जकड़े होते हैं कि उसे निकालना मुश्किल काम होता है। सबके विरोध का सामना करते हुए उन्हें एक एक परिवार का विश्वास भी जीतना था। उस पर उनकी आर्थिक तंगी ने उनकी चुनौतियों को और बढ़ा दिया, जिससे सामग्री जुटाना और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, जो कि वो कर रही थी।
0: और वो अपने इस काम के लिए सरकारी सहायता भी चाहती थी, लेकिन यहाँ भी बहुत सारी बाधाएं आ रही थी, क्योंकि कुछ लोग कई बार ऐसे होते हैं ना जो नहीं चाहते हैं कि ये महिला काम करे। और ये सारी जटिलताएं, इनसे निपटने के लिए बहुत सारा धैर्य और दृढ़ता की जरूरत उन्हें थी। कितनी भी उनकी यात्रा जो चल रही थी उसमें बाधाएं आती गई, लेकिन वो अडिग रही और अपने अटूट हौसले के साथ में आगे बढ़ती रही।
1: और रमीला बेन के गांव में परिवर्तन लाने के लक्ष्य की शुरुआत हो चुकी थी। अपने गांव के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए उन्होंने सबसे पहले स्वच्छता की समस्या को सुलझाने का प्रयास शुरू किया। अपनी कोशिशों से उन्होंने लोगों को एकजुट किया और 700 से ज्यादा स्वच्छता इकाइयां बनवाई, जिससे कुछ गांव खुले में शौच मुक्त हो गए।
0: लेकिन उन्हें बुनियादी ढांचा तैयार करने के साथ साथ लोगों में जागरूकता भी बढ़ानी हुई। जैसे आपने कहा ना कि भाई अपनी पुरानी जो प्रथाएं या रूढ़ियां हैं लोग उनको छोड़ने को तैयार नहीं होते, तो उन्हें खुले में शौच के संबंध में जो जोखिम होते हैं उन पर प्रकाश डालने के लिए बहुत सारे शैक्षिक अभियान उन्होंने चलाए, जिनमें बहुत सरल और प्रभावशाली संदेश होते थे जिनके जरिए वो ग्रामीणों को समझाती थी तो बात उनके समझ में भी आ जाती थी।
1: और यही नहीं, उन्होंने सामुदायिक बैठकें आयोजित की, स्थानीय नेताओं से संपर्क किया और घर घर जाकर लोगों से निजी तौर पर बातचीत की संदर्भ में। और उनका काम केवल स्वच्छता तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण में आर्थिक स्वतंत्रता की शक्ति को पहचानते हुए बहुत से स्वयं सहायता समूह स्थापित किए, जिनमें महिलाओं को एक साथ लाकर सामूहिक रूप से बचत करने और छोटे छोटे ऋण लेने और छोटे व्यवसाय शुरू करने में सहायता दी। और ये सहायता समूह ग्रामीण आबादी और सरकारी योजनाओं को सीधे पहुंचाने का माध्यम भी बने।
0: इन सहायता समूहों ने महिलाओं को सिलाई और हस्तशिल्प से लेकर लघु कृषि तक सूक्ष्म उद्योग चलाने के ज्ञान भी दिया। और रमीला बेन ने विधवा कल्याण के लिए भी बहुत सारा काम किया, जिससे महिलाओं को सहायता मिली और वित्तीय सहायता भी मिलती रही। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उन्होंने घरेलू आय में सुधार किया और महिलाओं में आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को भाव, जो ये भाव था उसको बढ़ावा दिया।
1: रमीला बेन के प्रयास से गांव में जो स्वच्छता की कमी थी स्वच्छता की ओर लोग जागरूक हुए, और जिससे स्वास्थ्य समस्याएं जो बहुत ज्यादा थी कम हुई और जो धन का अभाव था वो भी बढ़ा क्योंकि निजी रूप से उन्होंने आर्थिक संपन्नता की ओर उन्मुख किया लोगों को, ग्रामीण लोगों को, और उनके अथक प्रयास के से आसपास के गांव भी जैसे खुले शौच में जाने की जो प्रथा थी उससे मुक्त हुए, और जो बीमारियां थी निश्चित रूप से उससे कमतर हुई बीमारियां, और महिलाओं को सम्मान और निजता का अधिकार भी वापस मिला क्योंकि अब उन्हें अंधेरे में खेतों में जाने की जरूरत नहीं थी।
0: और पहले घरेलू भूमिकाओं तक सीमित रहने वाली जो महिलाएं थी अब वो खुद को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उद्यमी और वित्तीय निर्णय लेने वाली वो बन रही थी। सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ रही थी, परिवारों तक उनके लाभ भी पहुंचने लगे थे। ये वो लाभ थे जो पहले इनकी बारे में जानकारी भी नहीं थी उन लोगों को, और इन गांवों में नए सिरे से सम्मान और आशा की भावना जागृत हुई। इन गांवों के बच्चे, खासतौर पर लड़कियां, अब बिना डर के अपनी शिक्षा पर भी ध्यान केंद्रित कर पा रही थी।
1: बिल्कुल सही बात है। रमीलाबेन गुजरात में एक समाज सेविका के रूप में उभरी और उनका कहना था कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, और उनकी सेवा भाव और मेहनत को देखते हुए उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। 2002 में पद्मश्री के अलावा उन्हें स्वच्छ भारत अभियान में उत्कृष्ट योगदान के लिए,
0: ममता जी मैं यहाँ करेक्शन करना चाहूंगी, 2022 में उन्हें मिला।
1: 2022 बिल्कुल सही कहा आपने, और 2017 में भी उन्हें पुरस्कृत किया गया स्वच्छ शक्ति पुरस्कार से, और महिला सशक्तिकरण में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें नारी तू नारायणी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और उनका नाम दृढ़ता और बदलाव का पर्याय बन गया।
0: और उनकी ये जो कहानी थी, जो कार्य उन्होंने किए, वो बहुत सारी महिलाओं को के लिए आगे बढ़कर अपने जीवन की बागडोर संभालने के लिए प्रेरित करते थे। बहुत सारे गांवों को स्वच्छ और सशक्त बनाने के लिए जो उनका जुनून था, इसने उन्हें पहचान भी दिलाई और सम्मान भी दिलाया। और रमीलाबेन अब तक गुजरात के करीब करीब 700 से ज्यादा शौचालय वहां पर वो बनवा चुकी हैं या मदद की है उन्होंने, हम ऐसा कह सकते हैं। और उनकी कहानी अनगिनत लोगों को प्रेरित करती है और ये साबित करती है कि एक बदलाव का छोटा से छोटा कदम भी अगर है, अगर अटूट संकल्प है, तो वो उसी से शुरुआत उसकी होती है।
1: बिल्कुल। अब यहाँ पर एक गाना सुनवाते हैं सखियों और सखाओं को।

तड़पते गया है।

0: चंचल जी, देखिए शादी ब्याह केवल दो लोगों का मिलन नहीं होता बल्कि बिछड़े हुए रिश्तों और परिवारों को फिर से जोड़ने का सुंदर अवसर भी होता है। कहा जाता है कि समाज के दो परिवार का मिलन होता है। घर में जब शादी का माहौल होता है तो चारों तरफ रोशनी, संगीत और खुशियों की गूंज छाई रहती है। ऐसे में जब रिश्तेदारों का आगमन होता है, जब झुंड के झुंड रिश्तेदार आते हैं कि वो फलाने वाली बुआ आ रही है, फलानी चाची आ रही है, फलानी जगह
1: कोई मतवाला आया मेरे द्वारे ही होता है।
0: और ये भी कहा जाता है कि वो जैसे मड़वा वाली भाभी, पुरवा वाली भाभी और वो प्रतापगढ़ वाली, ऐसे ऐसे जगह जयपुर वाली, तो ये बड़ा
1: जयपुर वाली चाची, आगरा वाले ताऊ।
0: कई बार तो भाभी और चाची कर वो न कह के बल्कि सीधे सीधे वो जयपुर वाली आ रहे हैं, देखिए ना राजस्थान वाली आ रहे हैं, तो उससे भी क्लियर हो जाता है कि कौन आ रहे हैं। तो ये जो शादी ब्याह में जमावड़ा होता है इसी का आनंद अलग होता है।
1: और एक बात और ममता जी, आजकल सिर्फ शादी ब्याह ही रह गए हैं जहां हम अपने पुराने रिश्तेदारों से मिलते हैं। यूं ऑनलाइन बात करना, फोन पर बात करना, और एक जब इस तरह से हम मिलते हैं बहुत लंबे समय के बाद आमने सामने से एक दूसरे को देखते हैं, तब उस मुलाकात का मजा बहुत कहते हैं कि अलग होता है। और इसके अलावा पहले हम अपने बहुत दूर दूर के रिश्तेदारों को भी जाना करते थे, लेकिन आजकल ये चीजें बड़ी संकुचित होती जा रही हैं। हमारे बच्चे कई बार तो हमारी सगे बहनों को तो जानेंगे, लेकिन अगर मेरी चाचा की लड़की है या मेरे ताऊ जी के लड़के हैं तो वो उनको नहीं पहचानते, क्योंकि उनका मिलना जुलना ही बहुत सीमित हो गया है। जब कोई शादी भी हमें जाने की बात आती है तो हम भाई बच्चों की परीक्षाएं हैं, अभी उनके स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनका असाइनमेंट है, इनके चलते बच्चे जा ही नहीं पाते, या बच्चों का भी सोच जिस तरह से हो रही है वो एडजस्ट करना नहीं चाहते हैं। जिस तरह से बड़े लोग हर माहौल में एकजुट होकर रह जाते हैं, बच्चे इस बहाने से भी जाना थोड़ा सा,
0: उनको अपना कमरा चाहिए, उनको अपना बाथरूम चाहिए और उनको अपने खाने पीने की जो टाइमिंग्स है उसी टाइम पे नाश्ता चाहिए, वही दायरा उसी दायरे में सिमट कर रह गए। और बच्चे पूछते भी हैं कि कौन से वाले मामा, कौन सी वाली मामी, कौन सी वाली चाची, कौन सी वाली बुआ, तो उनको पता ही नहीं है कि फोन पर क्योंकि बात होती है मिलना जुलना हो ही नहीं पाता। तो शादी के बहाने बच्चों को भी ले जाना चाहिए शादी समारोह में। और पढ़ाई की जहां तक बात है कि पढ़ाई पे विघ्न आता तो किताब कॉपी लेकर जा सकते हैं।

0: हैं अगर दूसरे शहर में शादी,
1: अगर कोई बहुत जरूरी ही ऐसा है कि परीक्षाएं ही चल रही हैं जिन्हें आप बिल्कुल अनसुना अनदेखा नहीं कर सकते हैं, तब आप नहीं ले जा रहे हैं बच्चों को तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं है फिर भी अपनी सहूलियत या सुविधाओं के वजह से बच्चे मना कर रहे हैं, तो थोड़ा जिद करके बच्चों को जरूर लेकर जाना चाहिए, क्योंकि एक समय पर आकर बच्चे रिश्तेदारों को पहचानेंगे ही नहीं और वो रिश्ते कहीं आकर सिमट कर रह जाएंगे। उनके लिए रिश्ते का मतलब होगा सिर्फ उनके स्कूल कॉलेज के दोस्त या जहां उनके सहकर्मी हैं वो।
0: अच्छा, अब जरा ये देख लें कि हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं इस बारे में। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि शादी ब्याह त्योहार किसी पारिवारिक आयोजन के बहाने सगे संबंधियों से मुलाकात का अवसर मिलता है। ऐसी मुलाकातें रिश्तों में अपनापन और मधुरता बढ़ाती हैं। परिवार के लोग एक दूसरे का हालचाल जान पाते हैं, सुख दुख साझा करते हैं और पुराने दिनों की यादें ताजा करते हैं। आज की व्यस्त जीवन शैली में जब सभी अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं तब ऐसे अवसर रिश्तों को मजबूत बनाने का काम करते हैं। जब इकट्ठे होते हैं फोन पर वो चर्चा कैसे हो सकती है? हालांकि कई बार ये होता है कि एक साथ कन्वर्सेशन के लिए कई लोग फोन, मतलब कई फोन एक साथ मिला लिए जाते हैं और बात करते हैं, ग्रुप कॉल होता है, लेकिन उसमें वो आनंद नहीं आता जो आमने सामने बैठ के छेड़छाड़ करके एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं, धौल धप्पा करते हैं। उसमें जो आनंद आता है पुरानी बातें ताजा करते हैं कि फलानी भाभी ने एक बार ये कहा था, और फिर उस पे जो ठहाके लगते हैं जोरदार, और वो ठहाके कमरे में नहीं आंगन तक बरांडे तक गूंजते हैं।
1: बिल्कुल, उसकी बात छेड़छाड़ होती है और बहुत लंबे लंबे समय के बाद जब अब पुराने रिश्तेदारों से हमारी मुलाकात होती है और जब हम उनसे मिलते हैं ना, तो एक बात तो बड़ी कॉमन सी होती है जो हर कोई कहेगा, अरे तुम तो बड़े दिन बाद मिले हो, कितना छोटा सा देखा था तुमको,
0: बड़ा बड़े हो गए, बड़ा हो गया हमारा बेटा, बड़ी हो गई हमारी बिटिया, तो ये सब होता है। और समय का अंतराल कई बार कुछ चीजों को विस्मृत कर देता है जो जब आप मिलजुल के साथ वो बातें ताजा हो,
1: कई बार कुछ कटाक्ष भी होते हैं, अरे बड़ी दुबली हो गई हो, क्या ससुराल वाले खाने को नहीं देते, अगर थोड़ा वजन बढ़ गया कितना खाती हो भाई, ज्यादा खिलाते हैं ससुराल वाले, तो इस तरह के कटाक्ष,
0: ज्यादा अमीर हो गई हो, ये भी होता है। अब ज्यादा बातें ना हो जाए इसका ख्याल रखते हैं, एक गाना सुनवाते हैं।

0: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते वो हुक लाइन बनी ओढ़नी चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर यह कार्यक्रम सखी सहेली, और श्रोताओं की टिप्पणियां बहुत सारी आ रही हैं। क्या था विषय की शादी के बहाने सगे संबंधियों से मुलाकात, और चंचल जी भी ढूंढ रही हैं, लेकिन ये जो टिप्पणी आई है वो मैं श्रोताओं तक पहुंचा रही हूँ, जो हंसी मजाक वाली बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी कोने में चाचा पुरानी बातें सुना रहे होते हैं, कहीं मामा हंसी मजाक में सबको हंसा रहे होते हैं, तो कहीं बरसों बाद मिले भाई बहन बचपन की यादों में खो जाते हैं। ऐसे मौकों पर लगता है कि रिश्ते कभी पुराने नहीं होते, बस मुलाकात का इंतजार करते हैं, और फिर शादी बीत जाती है, लेकिन मन में एक मीठी सी तसल्ली रह जाती है कि इस उत्सव ने कुछ घंटों के लिए ही सही पूरे परिवार को फिर से एक साथ मुस्कुराने का अवसर दे दिया। और कई बार जो मन की गांठें हैं वो भी खुलती हैं, कि नाराजगी होती है कि फलानी बुआ नाराज है, वो फोन नहीं कर रही है, बात नहीं कर रही है, फलानी दीदी नाराज है कि वो फोन नहीं आएंगे शादी में, और आ जाती है जैसे तैसे, फिर रोना धोना मचता है, उसके बाद बिल्कुल माहौल हल्का।
4: अभी इसी बात पर देखिए अगला कमेंट है कि शादियों में मिलना जुलना भी होता है और कुछ पुराने गड़े मुर्दे भी खड़ा करते हैं, थोड़ी सी नोकझोंक भी होती है, उसके बाद मुंह फुलाना, बाद में मान मनोबल, और फिर सब एक ही जगह मिलकर बैठकर हंसी ठहाके लगाकर बड़ा एंजॉय करते हैं।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि पिछले महीने ही हमारे परिवार में विवाह था, हम सब ने तय कर लिया था कि सभी आएंगे, मई में शादी इसलिए रखी थी कि बच्चे भी

0: फ्री हो जाएंगे। सभी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए, बचपन की यादें ताजा हो गईं, संगीत में भी सब जमकर नाचे, बहुत मस्ती हुई। बच्चों को भी अपने चचेरे ममेरे भाई बहनों से मिलने और समझने का मौका मिला और बुजुर्ग तो भावुक ही हो गए सबसे मिलकर। कई रिश्तेदारों से तो बरसों बाद मिलना हुआ। सबसे ज्यादा आनंद तो इसमें लेडीज संगीत का जो होता है और रात को जो महलूल होता है, अगर बेटे की शादी है तो उसमें सबसे ज्यादा आनंद घर वालों को आता है, क्योंकि लेडीज संगीत में सारे मिलकर, कहने नाम तो लेडीज संगीत है लेकिन उसमें पुरुष भी शामिल होते हैं, जेंट्स भी, और खूब मस्ती करते हैं नाच गान के साथ।
1: लेकिन जब नहीं पहुंच पाते हैं उनका दुख बयान करते हुए हमारे एक संदेश में लिखा गया है कि सगे संबंधियों के बहाने हमने भतीजे का हाल सुना, बहुत बहाना क्या करें, बच्चों की परीक्षा है और श्रीमान जी की तबीयत खराब है, नौकरी से उन्हें छुट्टी नहीं मिलेगी, शादी के बहाने मिल तो लेते लेकिन जिन्होंने भी बहाने किए हैं वो सभी शादियां पधारे। पता नहीं क्या लिखना चाहती हैं, कुछ साफ साफ नहीं है।
0: इनका कहने का आशय ये है कि हम लोग बहाने करते हैं कि नौकरी से छुट्टी नहीं मिली,
1: हाँ।
0: बच्चों के इम्तिहान है, दरअसल उसके पीछे मंतव्य ये होता है कि कौन जाए इतना खर्च बर्च करने की, ठीक है उतने पैसों की बचत कर देंगे, लेकिन वो जो पैसे खर्च करके आप जो खुशी ले आते हैं उसकी कोई सानी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर बचत ना करें।
1: हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मैं बताना चाहूंगा कि अभी आपने कहा था ना पुरुष शामिल होते हैं, तो हमारे सखी सहेली कार्यक्रम में बहुत सारे पुरुष होता है शामिल होते हैं, तो ये बताना चाहते हैं कि आज शाम को ही रिश्तेदारी में अजमेर में एक शादी है, बड़े बुजुर्ग और छोटे रिश्तेदार सबसे मुलाकात होगी, जहां हम अपने बड़ों के साथ चरण स्पर्श करके आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत पुरानी बात है, मेरे घर में शादी चल रही थी, बारात आ गई थी और सभी नाश्ता पानी करके अपने अपनी जगह पर बैठे हुए थे। सर्दी के दिन थे इसलिए लोग घर के रूम में ही बैठे हुए थे। रिश्तेदारी में आई एक सदस्य बाहर से आए किसी मेहमान का मजाक उड़ा रही थी। वहां पर हम सभी बैठे हुए उनकी बात में हाँ मिलाते हुए हंस रहे थे और तब तक अचानक जनरेटर बंद होने से लाइट चली गई थी। 5 मिनट के अंदर ही लाइट तो आ गई और जब लाइट आई तो जिनका मजाक उड़ाया जा रहा था वो सामने एक चेयर पर बैठी थी। अब बोलने वाली का चेहरा देखने लायक था, किसी को कुछ बोलते नहीं बना। मैंने उसी समय से उनकी बात को संभाल लिया कि अपनी किसी सहेली के बारे में बोल रही हैं, पर वे मुस्कुरा कर रह गई और सभी शादी विवाह का विधि विधान देखने के बहाने धीरे धीरे वहां से खिसक गए। आज भी हम सब जुटते हैं तो उस समय की वो बात याद करके खूब हंसते हैं। वैसे वो दोनों रिश्तेदार थी और उन लोगों में आपस में बनती नहीं थी। और कई बार चंचल जी ये भी होता है कि खाने पीने के मामले में भी लोग नाराज हो जाते हैं,
1: हाँ।
0: कि हमें देखा वो फलानी को तो चाय हाथ में पकड़ा दी और हमें चाय पूछा तक नहीं, और हमें तो वो पता है कि हमें लड्डू पसंद है और लड्डू न दे के हमें तो गुलाब जामुन दे दिया। मतलब बिना बात के भी लोग शिकायत करते हैं।
1: किस तरह की शिकायतें भी होती हैं कि देखो उनकी शादी में गए थे, वहाँ कितना अच्छा इंतजाम था, हाथों में नाश्ता आता था, समय पर चाय पानी हो जाया करती थी, यहाँ तो 11 बज गए नाश्ते का ही इंतजाम नहीं। तो कई बार हम जिनके यहाँ जाते हैं उनकी समस्या भी समझ लेनी चाहिए कि हो सकता है हलवाई के आने में देर हुई हो या जो मैनेजमेंट देख रहे हैं वहां कुछ दिक्कत हुई हो। जिन्होंने आपको बुलाया है, जो आप आतिथ्य जो कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि आपके आतिथ्य में कोई कमी रहे, लेकिन थोड़ा समझकर हमें भी चलना
0: है। पर रिश्तेदार जो जाते हैं मुझे लगता है कि वो कहीं घर से जुड़े हुए हैं तो सीधे रसोई घर में जाके वो कमान संभाल सकते हैं, क्योंकि जो घर वाले लोग होते हैं उन पर भी बहुत बड़ा बोझ होता है, सबकी आवभगत करना और शादी की तैयारियां करना, शॉपिंग, कितना सारा तामझाम होता है और सारे रस्म और रिवाज का ख्याल रखना। तो जो रिश्तेदार जाते हैं उनको सिर्फ बैठ के आलोचना करने की बजाय शामिल हो जाना चाहिए कि लाओ हम एक जिम्मेदारी उठा लेते हैं, खाने पीने का नाश्ते का इंतजाम हम कर लेते हैं कि हम सबके हाथों में नाश्ता पहुंचाएंगे, तो कितना अच्छा लगता है।
1: और इसके बाद जब शादी ब्याह के बाद सारे मेहमान चले जाएंगे तो पूरा जो पसरा हुआ घर है या जितने भी चीजें फैली हुई हैं उनको समेटते समेटते भी उनको 1 हफ्ता 10 दिन लग जाता है। कई बार तो जो घर के लोग होते हैं उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है,
0: अमूमन ऐसा होता है।
1: चलिए फिलहाल हम एक आनंद की बात कर रहे हैं, शादी ब्याह के मजे की बात चल रही है, तो गाने सुन लें।
0: सुनते हैं।

0: भाई ममता जी, शादी ब्याह की बात चल रही थी और एक कमेंट में देखिए क्या लिखा गया है। सालों से दूर रहे कजिन्स, चाचा, ताऊ, मौसा, मौसी एक छत के नीचे आ जाते हैं, जिससे बहुत सारी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। ढोल, नगाड़े, संगीत, हंसी मजाक के बीच लोग अपनी रोजमर्रा की चिंताओं को बिल्कुल भूल जाते हैं। नई पीढ़ी का परिवार के सदस्यों से, यानी कि बच्चों और बहुओं के साथ पूरे कुनबे से मिलना हो जाता है, अपनी संस्कृति को समझने का मौका मिलता है। दुख में भले ही लोग दूरी बना लें, लेकिन शादी की खुशी हर किसी की कड़वाहट को भुलाकर गले मिलने का अवसर देती है।
1: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सारी बातें कॉमन है, कई श्रोताओं ने लिखी, तो वो एडिट करते हुए मैं आगे पढ़ रही हूँ। लिखा है कि इस शादी वाले घर में सभी व्यस्त होते हैं शादी, और उसी व्यस्तता में अपने चचेरे, ममेरे, फुफेरे, भाई, बहन, बुआ, चाचा, मामा का परिवार सभी से मिलना जुलना होता है और सबसे मजा आता है। संगत में पत्तल में बैठकर खाना खाना और एक दूसरे की खिंचाई करना, और रात में एक रूम में सभी मिलकर गीत गवाई, आधी रात तक गप्पे लड़ाना, फलाने की बेटी और फलाने की बहू और तुम्हारी वो सहेली और तुम्हारा वो दोस्त, आज इस विषय प्रसंग ने परिवार में हुई कितनी शादियों की यादें ताजा कर दी।
0: हमारे श्रोता लिखते हैं कि शादी ब्याह के रंग बिरंगे समारोह केवल उत्सव नहीं होते, बल्कि रिश्तों की डोर को मजबूत करने वाले ऐसे अवसर होते हैं जो हम शादी में जाते हैं इसलिए कि सारे रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाए। शादी एक ऐसा माहौल भी होता है जहां पर अपनापन दिखाई देता है। हंसी मजाक में साथ बैठकर भोजन करने का आनंद ही होता है। मेहंदी लगवाना, ढोलक की थापर, बन्ना बन्नी के संगीत की महफिल रिश्तों को मजबूत बना देती है। तो कई बार समारोह में नई पीढ़ी का परिचय भी अन्य सदस्यों से हो जाता है, जिससे पारिवारिक जुड़ाव

0: आज अगर सगे भाई बहन एक दूसरे को नहीं पहचान रहे, ये तो बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि अब तो मोबाइल का भी जमाना है। अगर आपको फुर्सत नहीं तो कम से कम वीडियो कॉल पर एक दूसरे को देख लें।
1: और कई बार ऐसा होता है कि जिन रिश्तेदारों को हमने बहुत सालों से नहीं देखा, या जो नई बहू आई है, नए जवाई घर में आए हैं, जिनसे हम नहीं मिले हैं, लेकिन ऑनलाइन हमने उनके चेहरे देखे हुए होते हैं, तो जब हम मिलते हैं सालों के बाद भी, तो कम से कम उन चेहरों को पहचान लेते हैं। एक अन्य संदेश में लिखा गया है, आज की भागदौड़ भरे जिंदगी में किसी के पास इतना समय ही नहीं है कि लोग अलग से समय निकालकर एक दूसरे से मिल सकें और उनका हालचाल बताएं या दूसरों की सुने। शादी एक ऐसा समारोह है जिसमें सब मिलकर एक दूसरे का हालचाल पूछ लेते हैं, अपनी व्यस्तता को भी बता देते हैं। शादी एक बहाना बन जाती है जो सालों से नहीं मिले होते हैं उनको मिला देती है।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि बिल्कुल अभी हमने जो बात कही थी कि किसी को चाय दे दीजिए, उसके जवाब में लिखा है, अभी भी ये टिप्पणी आई है 6 मिनट पहले, इन्होंने लिखा है कि आपने किसी एक को पहले चाय दे दी तो तुरंत दूसरे का मुंह फूल जाता था और उसका बहुत ज्यादा उसकी इज्जत हो रही तो मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, ये भी लोग कहते हैं। और बेटे की जब बारात चली जाती थी तो घर की औरतें रात जागरण करती हैं और मड़वे में हर तरह का स्वांग रच के डोमकच जलवा करती हैं, उसको बहुत जगहों पर महलूल भी कहते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि सही कहा, सब बहनों का मिलना, प्यारी सी मस्ती, थोड़ी सी लड़ाई, बताया नहीं तू ये पहनने वाली है, हमारे पास भी ऐसा ही था, हम भी पहन लेते, या फिर सबका एक कलर के कपड़े लेना और फिर किसी का कुछ घर में छूट जाना, सब कुछ बहुत मजेदार होता था। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे शहर जयपुर में तो सखी सहेली की मौसम की बात हुई, और एक श्रोता लिख रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने ये मुद्दा उठाया, आज मुझे तो झपकी सी आ गई थी लेकिन अचानक नींद खुली और ये बातें सुनी तो बहुत अच्छा लगा और बातें हम सुनने लगे। एक श्रोता ने लिखा है कि फरवरी में मेरी भतीजी की शादी थी, हम काका पापा के 8 भाई और 8 बहनों में बड़े भाई की लड़की की शादी थी, मतलब हमारी पीढ़ी की पहली शादी। कई साल बाद सब इकट्ठा हुए, बहुत मजे किए, डांस किया, बाद में फेसबुक इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर सब ने इतने फोटो वीडियो शेयर किए कि सब बोलने लगे आजकल तो आपका परिवार फेसबुक पर छाया हुआ है।
1: इसी तरह से आज ये विषय ऐसा है कि इसके कमेंट भी बहुत सारे छाए हुए हैं, हमने कोशिश की हम बहुत सारे संदेशों को शामिल कर सकें, लेकिन जिनके नहीं हो सके उनसे माफी मांगते हुए अब सुन लेते हैं ये गीत।

तेरे आंगन पति बधाई दूरी रहना चल पाए दूरी बंधी रहे ये प्यार की दूरी हम ना भुलाना हमें ना भुलाना हमें ना भुलाना।

0: ना भुलाना, मन भावन के हर जाए गोरी, घुंघट में करवाए गोरी, बंधी रहे ये प्यार की डोरी, हमें ना भुलाना,
1: बंधी रहे ये प्यार की डोरी, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना। और बहुत सारे रिश्तेदार भी ये बात कहते हैं जब शादी विवाह के रंग बिरंगे समारोह केवल उत्सव नहीं होते, कि हमारी एक सखी ने लिख भेजा है, बल्कि रिश्तों की डोर को मजबूत करने वाले ऐसे अवसर होते हैं जहां जाने पर सारे रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाती है। और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं, बहुत सारे श्रोताओं ने इस तरह की बातें लिखी हैं। और अब हम बात करते हैं कि अगर आपने घर में कुछ छोटी सी बगिया बनाई है और उस पौधों पर कीट लग जाते हैं तो उन्हें बचाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। इस पर हमारे श्रोता ने बड़े अच्छे उपाय बताए हैं कि बारिश के मौसम में ये होता ही है। इसके लिए कुछ उपाय इस तरह से हैं कि नीम के तेल की 3-4 बूंदें में 3-4 बूंदें शैम्पू की भी डाल लें और अब इसे पानी में घुल जाए इस तरह से इसका घोल बना लें और ये मिक्सर शाम के समय पूरे पौधों पर हर तरफ से स्प्रे कर दीजिए। खासतौर पर पत्तों के नीचे वाले हिस्से पर करना है क्योंकि कीट और अंडे वहीं पर ज्यादा पनपते हैं। और अगर नीम का तेल ना मिले तो हल्दी के पानी को भी मिलाकर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जली हुई लकड़ी की जो राख होती है उसे अगर पत्तों पर छिड़का जाए तो उससे भी कीड़े नहीं आते हैं। नीम के हरे पत्तों को चलाकर उसका धुआं करने से भी कीड़ों से बचाव हो जाता है। बाजार में या ऑनलाइन इस तरह की गम कीबोर्ड मिलते हैं, 2-4 वो किसी जगह पर टांग देने से कीड़े उस पर चिपक जाते हैं, लेकिन कई लोग कीट को मारना नहीं चाहते तो वो इस उपाय को ना करें।
2: और लहसुन अदरक और हरी मिर्च का घोल बना ले, मतलब लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च का घोल बनाकर उसे छानकर जैविक कीटनाशक छिड़काव कर सकते हैं। ये प्राकृतिक रूप से कीटों को दूर रखता है और पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। और समय पर पौधों की सिंचाई करें, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी न दें, उनमें संतुलित खाद का प्रयोग करें ताकि पौधे स्वस्थ रहें।
1: और अगर पौधे बहुत छोटे हैं तो उनके पीछे छुपे हुए जो कीड़े और अंडे होते हैं उनको हाथ से ही हटा देना चाहिए, ऐसा एक कमेंट में लिखा गया है। और भौतिक बाधा कीड़ों तक पहुंचने से रोकने के लिए महीन जाली का उपयोग किया जाता है। चिपचिपे जाल, पीले रंग के चिपचिपे
2: पीली स्टिकी ट्रैप लगाएं। हाँ। मेरे ख्याल से ये कहना चाहते हैं ताकि जैसे मक्खी है, मधुमक्खी है, तो जो उड़ने वाले कीट को आकर्षित करने के लिए किया जाता है ताकि वो पकड़ने में मदद मिले।
1: इसके अलावा पेस्टिसाइड का उपयोग भी कर सकते हैं या कीटनाशक जिसे हम कहते हैं। ये हमारे श्रोताओं ने हम तक सलाह पहुंचाई है। और हम अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस की अगर बात करें ममता जी, तो 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी और पहला अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून 2011 को मनाया गया था। दुनिया का लगभग 80-90% जो भी व्यापार होता है वो समुद्र के रास्ते से ही होता है। नाविक बहुत लंबे समय तक अपने परिवारों से दूर रहकर बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं और जो सप्लाई चेन है जिसे हम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला कहते हैं वो सुचारू रूप से चलती रहे, इसमें इन नाविकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और हमारे दैनिक जीवन में जितनी चीजें इस्तेमाल होती हैं, खास तौर पर जो भी वस्तुएं हैं, भोजन है, ईंधन है, वो सब हमें इन्हीं समुद्री रास्तों से नाविकों के द्वारा पहुंचाया जाता है।
2: बिल्कुल। और समुद्र में तेल की खोज की जाती है, वो उनमें भी इनकी अहम भूमिका होती है। और कई बार समुद्र में जब तूफान आता है, सीरफ जिसे कहते हैं, तो कई नाविक दूर दूर तक समुद्र के बीचों बीच चले जाते हैं तो उनकी जान को भी बहुत खतरा होता है। वो मुसीबत से लड़ते हुए कई बार घर वालों को पता नहीं चलता है, कोई नेटवर्क नहीं होता है, मोबाइल फोन वहां तक नहीं पहुंचता है, तो उस समय घर वालों की चिंता देखते ही बनती है। 3-3, 4-4 दिन कई बार महीनों तक वो तूफान में फंसे रहते हैं, लेकिन जब वो घर लौट आते हैं तो घर वालों की चिंता खत्म होती है।
1: बिल्कुल, इसीलिए उनके क्या अधिकार हैं, उनकी सुरक्षा किस तरह हो, उनका कल किस तरह से बेहतर किया जाए, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस तरह के जो भी खास दिन है वो आयोजित किए जाते हैं। और इस दिन का उद्देश्य भी यही है कि नाविकों के योगदान के लिए उन्हें समाज में सम्मान और आभार व्यक्त करने के लिए और उद्योग समुद्री उद्योग को बेहतर हो सके इसे बढ़ावा देने के लिए ये दिन हम मना रहे हैं।
2: और अब सुनते हैं प्रोग्राम का ये आखिरी गाना।

0: ये था आरजू फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज थी। और अब बिल्कुल वक्त नहीं कि हम कुछ बोलें बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और चंचल वर्मा का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम के प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेलो फरमाइश कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम जिसमें आप श्रोता कॉल के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं और अपने विचार रखते हैं। आज भी कुछ ऐसे ही विचार आप श्रोताओं के द्वारा विविध भारती को लेकर, विविध भारती के कार्यक्रमों को लेकर। तो सुनते हैं आज का हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: जी नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम है जी कल्लू मनियार, चूड़ी वाला।
0: कल्लू जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: रामपुर मनियारा और जी जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश।
0: अच्छी बात है, आपके बारे में बताइए, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया, शुक्र है मालिक का, आपकी दुआएं हैं। मेरा चूड़ी का काम है, मैं चूड़ी जो है साइकिल पर ले जाता हूँ।
0: अच्छा, साइकिल पर चूड़ियाँ लगा के आप बेचने जाते हैं?
1: जी हाँ, गाँव में जो रामपुर के चारों तरफ गाँव है ना, उनमें जाता हूँ।
0: तो कैसे बांधते हैं चूड़ियों को साइकिल पे? गिरने का डर नहीं रहता है? चूड़ियाँ टूट जाएंगी तो?
1: अरे बांध के ले जाता हूँ मैं चूड़ी को, बहुत अच्छी तरह से।
0: अच्छा, फिर घर घर फेरी लगाते हैं?
1: अभी फिर मैं गांव में जाता हूँ, फिर बच्चे खुद ही बता दें कल्लू साहू जी आ रहे हैं, चूड़ी पहन लो। अच्छा। घर वाले बुला ले रहे हैं फिर।
0: अरे वाह, यानी आप बहुत फेमस हैं कल्लू ताऊ जी के नाम से ना?
1: जी।
0: अच्छी बात है।
1: चूड़ी बेचता हूँ, कांच की।
0: कांच की चूड़ियाँ बेचते हैं। तो महिलाएं किस तरह की चूड़ियाँ ज्यादा पसंद करती, कौन सा रंग ज्यादा लेती हैं?
1: मैरून रंग ज्यादा पसंद करती हैं जी।
0: मैरून रंग पसंद करती हैं, चमकदार।
1: हाँ जी, मैरून रंग ज्यादा पसंद करती हैं, और रंग भी तो काफी है वैसे, बाकी ज्यादातर मैरून चलता है।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: और कांच की चूड़ी है, तुम मानते हैं इसको? कांच को
0: बिल्कुल, हमारे यहाँ सुहाग का प्रतीक मानते हैं चूड़ियों को, कांच की चूड़ियों को पहना जाता है।
1: जब मैं चूड़ी पहना देता हूँ तो नचकार की है, फिर चूड़ी फेंक कर नचकार की है मेरा औरतें, ये सुहाग की चीज है ना
0: जी। तो एक चूड़ी ज्यादा देते हैं आप?
1: हाँ बिल्कुल, दो देता हूँ जी मैं तो।
0: अच्छा, दो दे देते हैं आप?
1: दो दे देता हूँ, जोड़ा ही भगवान तुम्हारा बनाओ रखे, जोड़ा ही मैं दे रहा।
0: अरे वाह, चलिए कल्लू जी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बताइए अपनी पसंद का गाना।
1: फिल्म का नाम है जी आपकी परछाइयाँ, और आवाज है रफीकी, गाने के बोलेंगे है तमन्ना तेरे घर के सामने।
0: बहुत सुंदर, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।
2: यही है तमन्ना तेरे दर के सामने, मेरी जान जाए, मेरी जान।

मिला क्या है मुझको अभी तेरे दर से, जरा देख लूँ मैं ये रुख की बहारे, ये कद प्यारा प्यारा ये जुल्फों के साए।

जल्दी से आए आए, यही है तमन्ना तेरे दर के सामने, मेरी जान जाए मेरी जान जाए आए, यही है तमन्ना तेरे दर के सामने, मेरी जान जाए मेरी जान जाए।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी मैं जीतन यादव बड़ा गांव जिला गुना मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैम
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ, दुकान पे बैठा हूँ, आपके नंबर मिला रहा था।
0: अच्छा क्या दुकान है आपकी, किस तरह की?
1: किराने की दुकान है मैम।
0: अच्छा सभी सामान रखते हैं?
1: जी मैम।
0: तो सुबह खुल जाती होगी कितने बजे, 8 बजे या 10 बजे?
1: 7 बजे खुल जाती है, रात के 10 बजे तक चलती है।
0: तो लंच में घर जाते होंगे या खाना साथ लेके आते हैं?
1: नहीं मैम, मेरे दुकान घर पे ही है और घर पे ही बैठा रहता हूँ, घर पे ही रेडियो है, विविध भारती का साथ है।
0: अरे वाह, फिर तो आपके मजे ही की जब हुआ एक बार घर के अंदर चले गए, खाना वाना खाया, पानी वानी पी, चाय वाय पी और आ गए, है ना?
1: जी जी।
0: मतलब घर के अंदर ही है तो और भी आराम हो गया है, घर के अन्य लोग भी आकर दुकान को संभाल लेते होंगे।
1: जी जी, और अन्य लोग आते हैं और विविध भारती को सुनते हैं और खासकर एलो फरमाइश सुनते हैं तो बहुत आनंद आता है।
0: आपकी दुकान पे आके सुनते हैं श्रोता?
1: जी।
0: तो उन्हें बताइए कि मोबाइल पे न्यूज ऑन AIR ऐप जो है डाउनलोड कर लें और सुने।
1: जी मोबाइल पे सुनते हैं, पर ये दुकान पे ग्राहक आते हैं भी सुन के जाते हैं।
0: अच्छा लगता है हम लोगों को कि हमारे श्रोता इतनी शिद्दत के साथ हमें सुनते हैं। कैसा लगता है आप सबको हेलो फरमाइश कार्यक्रम?
1: अच्छा लगता है।
0: क्या अच्छा लगता है इसमें?
1: दूसरों को श्रोतन को मौका मिल जाता है बातचीत करने का और गाने अच्छे लगते हैं सुनने, बड़ी बात।
0: बिल्कुल सही कहा, बातचीत का मौका मिलता है और आपकी पसंद के गाने भी इसमें आते हैं, है ना? तो चलिए आज आपकी पसंद का गाना बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: आज मजदूर कलम का गीत सुनना चाहता हूँ, रिम जिम बरसता ये बाहर पानी अंदर ये आग लगी है, मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज में गीत है।
0: चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये झमाझम गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्कार मंदाकिनी जी।
0: नमस्कार। अरे आपको पता है मंदाकिनी है इधर?
1: जी मैम आपकी आवाज ही पहचान जाते हैं।
0: अरे तो हमारे कार्यक्रम बहुत शिद्दत से सुनते हैं, गहराई से सुनते हैं ना?
1: जी मैम।
0: नाम बताइए अपना।
1: जी मैम मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ, जिला महोबा उत्तर प्रदेश से।
0: कैसे हैं सुनील जी?
1: बहुत बढ़िया मैम।
0: अच्छा
1: आप कैसे हो?
0: मैं भी अच्छी हूँ। अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप सुनील जी?
1: जी मैम अभी तो हम भट्टों में काम करते थे राजस्थान में।
0: अच्छा राजस्थान में कहाँ?
1: जी भरतपुर में करते थे मैम।
0: और अब क्या कर रहे हैं इन दिनों?
1: अभी मैम छुट्टी हुई तो अभी घर आए, दो चार दिन हुए घर आए हुए अभी।
0: अच्छा तो भरतपुर में कैसा लगता है आपको, कैसा माहौल है वहाँ का?
1: जी मैम बढ़िया माहौल है, अच्छा लगता है वहाँ पे रहना, काफी साल हो गए हमें जाते जाते।
0: तो आपका परिवार कहाँ रहता है, महुआ में?
1: जी मैम।
0: तो आते जाते रहते होंगे ना, दिक्कत तो होती होगी अप डाउन करने से?
1: जी मैम दिक्कत तो होती है, अब ऐसा है कि 8 महीनों के लिए चले जाते हैं, तो 8 महीने वहाँ पे लगातार काम करना होता है भक्तों पे, तो 8 महीने अब फिर आपके प्रोग्राम तो हम 1 बजे रात से ही सुनना चालू कर देते थे।
0: अच्छा आपको टाइम मिल जाता था?
1: टाइम तो इतना रहता है कि हमको 1 बजे रात को उठना पड़ता था काम के लिए, तो आपका प्रोग्राम 1 बजे रात से ही चालू हो जाता फिर सुबह 11 बजे तक, फिर यहाँ पर 4 बजे से आपका प्रोग्राम चालू रहता था करीब 10 बजे तक रात को।
0: क्या बात है ना, प्यार है आपको विविध भारती से कि रात को 1 बजे से कार्यक्रम सुनना शुरू कर देते हैं।
1: जी मैम आपका ये सखी सहेली का टेलीकास्ट दोबारा होता है ना 3 बजे रात को?
0: हाँ बिल्कुल।
1: तो रात में सुनना बहुत अच्छा लगता है आपका सखी सहेली कार्यक्रम।
0: अच्छी बात है आप लोग कार्यक्रम सुनते हैं, लेकिन ये जो काम आप करते हैं भट्टों का, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है क्या?
1: जी मैम ये तो मुश्किल काम है, इसमें मेहनत बहुत है।
0: बहुत मेहनत है इसमें तो, और आपको बिल्कुल एक तरह से अपने आप को खपाए रखना पड़ता होगा।
1: जी मैम उसमें मेहनत काम ज्यादा पड़ता है,
0: और उसमें से भी आप समय निकाल कर विविध भारती सुनते हैं और खुश रहते हैं, बहुत अच्छी बात।
1: नहीं वो तो ऐसा है कि काम चलता रहता है, विविध भारती में चलता रहता है, उसके बगैर तो मन ही नहीं लगता हमारा, जो इस समय हुआ कि हम सीधा विविध भारती चालू कर देते हैं पहले।
0: अच्छी बात है,
1: सभी लोग सुनते हैं फिर हम तो, ऐसा है कि रात में बिजली रहती, काम बिजली में करना होता है रात को, तो एम्पलीफायर में लगा के रखते हैं, जब बिजली चली जाती है तो ब्लूटूथ स्पीकर में लगा के रखते हैं।
0: इतनी व्यवस्था कर रखी है आप लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। हमारे ऐसे जो दीवानगी वाले श्रोता हैं, दीवानगी की हद तक विविध भारती को प्रेम करते हैं, उनसे बात करके हमें अच्छा लगता है। बताइए सुनील जी आज कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: हेमंत जी का है, गाना है भीगा भीगा मौसम आया बरसे घटा घनघोर,
0: बहुत सुंदर। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हेलो फरमाइश।
0: हेलो
1: दीदी नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: मदाकिनी दीदी मैं बोल रहा हूँ राम बाबू मालवीय कोलार रोड भोपाल से।
0: स्वागत है आपका राम बाबू जी, कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ दीदी, आप सुनाओ आप कैसे हो और हमारे विविध भारती की संपूर्ण टीम कैसी क्या है?
0: सब अच्छे हैं, बताइए अपने बारे में। हाँ। राम बाबू जी
1: अपने ये ड्राई क्लीनिंग का काम है लॉन्ड्री का और वो काम वाम करते हैं और अपने परिवार के साथ में जो भी है जो दाल रोटी के लिए कमाते खाते हैं और बढ़िया आनंद मंगल से जितना परमात्मा ऊपर वाले देते हैं उसी में खुश रहते हैं और विविध भारती सुनते रहते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है और वैसे भी इंसान को संतुष्ट तो रहना ही होगा एक हद तक, है ना? अगर हमारी महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ जाएंगी कि हम असंतुष्ट रहेंगे तो फिर जिंदगी तो खराब ही होनी है, हमारा वर्तमान खराब ही होना है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: आज गाना सुनने चाहेंगे, फिल्म का नाम है पापा कहते हैं, उसमें गाना है इसकी आवाज में घर से निकलते ही कुछ दूर चलते
0: ही। बहुत सुंदर गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: वैसे दीदी आपके यहाँ के प्रोग्राम जो आपने नए शुरू किए वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमने चिट्ठियाँ भी भेजी है मन चाहेगी इसमें।
0: अच्छा चलिए सुने आपकी पसंद का गीत।
2: घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर।

सच कह रहा हूँ उसकी कसम है, मैं फिर भी खुश हूँ, बस एक गम है जिसे प्यार करता हूँ, मैं जिस पे मरता हूँ उसको नहीं है खबर।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन जनाब फरमा रहे हैं?
1: संदीप कुमार मक्कड़, पींगा वाला चौक, गोरैया, पंजाब डिस्ट्रिक्ट जलंधर से आपका निमेश होता।
0: जी स्वागत है आपका संदीप जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं, आपका साथ है तो अच्छा, ना हो तो
0: और भी अच्छा।
1: जी हाँ जी,
0: बताइए क्या करते हैं संदीप जी आप?
1: मेरा वैसे फोटो फ्रेम और लेमिनेशन का काम है, इसके अलावा मैं गाता भी हूँ और लिखता भी हूँ।
0: अरे क्या गाते हैं और क्या लिखते हैं बताइए।
1: मैंने अपना हिंदी सॉन्ग रिकॉर्ड करवाया है, मैं लिखता भी हूँ, हिंदी सॉन्ग लिखता हूँ और मैं सूफी सॉन्ग भी लिखता हूँ। गाने के कुछ बोल हैं वो सुनाना चाहूंगा।
0: गा के सुनाइए।
1: चलती ट्रेन में चलती चाय पीले पीले, तू मेरा हिंदू तो मुस्लिम भाई, पीले पीले आय की सुस्ती मड़े की सुस्ती, एक्ट प्याली पीले भाई पीले पीले, ओ सबे मुसाफिर दिल के अच्छे, सबे मुसाफिर दिल के अच्छे, कान कहाँ पर उतरेगा भाई पीले, ओ चाहे मेरी गरम मसाला, पिएगा कोई किस्मत वाला, गोरा हो या बिल्कुल काला, खुल जाएगा दिल का ताला, कहता रहेगा कहने वाला, चलता रहेगा चलने वाला, सुन दे भाई सुन दे लाला, आगे मेरे फौजी भाई, तेरे पे कुर्बान में भाई, तुम हो सबकी जान हो भाई, बैठो तुम भी चाय आई, बैठो तुम भी चाय आई। ये है मेरे गाने के
0: क्या बात है,
1: अंतरा सुनाया।
0: अच्छा जो लिखते हैं कैसी सूफियाना कविताएं लिखते हैं?
1: सूफियाना जैसे मैं सूफियाना भी सुनाना चाहूंगा। सब सियाने मिलते ने, सब सियाने मिलते ने, कमला कोई कोई, ओ बुलण वाले मिलते ने चुप कोई कोई, तांदा मेरा मन दा मेरा, तांदा मेरा मन दा मेरा, ते समझे कोई कोई, ओ सब सियाने मिलते ने कमला कोई कोई।
0: बहुत अच्छा लगा संदीप जी, अपने शौक को आगे बढ़ाइए, लिखते रहिए और इसी तरह गाते रहिए। अगली मुलाकात में फिर आपसे कोई नया गीत सुनेंगे, बताइए।
1: तो मेरी 30 तारीख को मैरिज एनिवर्सरी भी है, मेरी वाइफ ज्योति है उसके लिए डेडिकेशन है, उनको सुनाना चाहूंगा। फिल्म है बीवियों तो ऐसी, गाना है फूल गुलाब का, लाखों में हजारों में एक चेहरा जनाब।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं और सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: फूल गुलाब का लाखों में हजार।

में मेहंदी महकती है, गोरे गोरे हाथों में मेहंदी महकती है, फूल की कलाई में चूड़ी खनकती है, चूड़ी खनकती है, मौजे चनाब की मौजे चनाब की माथे पे चमकती है।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: परम मालवीय विदेश क्या है? नमस्कार।
0: नमस्कार, अपने नाम बताइए।
1: जी मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मध्य उत्तर प्रदेश से वार्तालाप कर रहा हूँ।
0: जी स्वागत है आपका, बहुत पहले आपसे बात हुई भी है।
1: जी जी बिल्कुल, आपने सही पहचाना, मैं आपका वही जाना पहचाना श्रोता हूँ।
0: अच्छा, आपका नाम है शारदा
1: जी,
0: तो आपका ये नाम किसने रखा?
1: मेरे पिताजी ने रखा है और मैं बसंत पंचमी के आसपास माँ शारदा की कृपा से प्राप्त हुआ था माता पिता को। तो मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा, न छल न कपट न प्रमाद हूँ, न छल न कपट न प्रमाद हूँ, मैहर की देवी माँ शारदा का प्रसाद हूँ।
0: बिल्कुल, वही हमने जानना चाहा कि ये जो नाम है महिलाओं का ज्यादा होता है शारदा, पुरुषों में बहुत कम ऐसे नाम सुनाई देते हैं, तो जानने की हमारी इच्छा हुई कि शारदा नाम क्यों रखा गया, कैसे रखा गया, तो आपने बता दिया है।
1: ये मेरे बहुत लंबे लंबे बाल भी हुआ करते थे लड़कियों जैसे, और मैं कॉलेज तक मैं यूं ही लंबे बाल रखा करता, बोला चिट्टागन था मेरा और भोला सा चेहरे मासूम था, तो बहुत से लड़के मुझे को लड़की समझते ही दोस्ती करते हैं कि ये लड़की जरूर होगी।
0: हाँ।
1: लड़के की भेंट रहती है।
0: वाह, बहुत अच्छा लगा। देखिए एक नाम के पीछे कितनी चीजें छुपी होती है ना, और अब कैसा लगता है आपको, अब लोग जानते हैं कि भाई ये तो शारदा प्रसाद जी हैं, शारदा कुमारी नहीं है।
1: सब लोग जानने लगे हैं शारदा प्रसाद प्रजापति हैं, और अब तो दाढ़ी मूछे सब हो गई हैं, तो लोग अब जानते हैं।
0: क्या करते हैं शारदा जी?
1: मैं घर पर रहता हूँ और बच्चों के साथ में आनंद पूर्वक आकाशवाणी और विविध भारती से जुड़ा रहता हूँ। रेडियो सुनना ही मेरा शौक है, दीवानगी है, जुनून है, और जब आकाशवाणी विविध भारती में हमारा फोन लगता है सुरीली हर दिल की धड़कन, तो बस हृदय पर खुल तो गदगद हो जाता है। इतनी खुशी इतनी प्रसन्नता होती है कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, बस ये तो महसूस करने वाली बातचीत होती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और हम भी महसूस करते हैं अपने श्रोताओं की दीवानगी को। बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है विरासत है, कुमार सानू और चित्रा जी ने गीत गाया है, जावेद साहब ने लिखा है और अनु मलिक का संगीत है। गीत बोल है, पायले चुनमुन चुनमुन झाझरे रुंझुन रुंझुन कितना मधुर है ये मिलन,
2: पायले चुनमुन चुनमुन झाझरे रुंझुन रुंझुन कितना मधुर है ये मिलन।

0: झांझरी कितना मधुर है ये मिलन।
1: चंचलन छोड़े बोले कंचन।

0: कितना मधुर है ये मिलन।
1: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
2: हाँ जी दीदी नमस्कार।
1: नमस्कार,
2: मंदाकिनी जी बोल रही है?
1: हाँ जी हाँ जी
2: जी जी, गजराज ज्योति बात कर रहा था, रेला राजगढ़ ब्यावरा मध्य प्रदेश से।
1: अरे स्वागत है आपका गजराज जी, कैसे हैं?
2: दीदी बहुत अच्छे हैं, मुझे आपकी जो आवाज है ना बहुत प्रिय लगती है।
1: क्या बात, ये तो आप लोगों का प्यार।
2: शायद मैंने दीदी आपको बीकानेर से भी सुना है।
1: बिल्कुल सुना होगा, आप लोग तो वैसे भी दीवाने हैं आकाशवाणी के, रेडियो के, और हमारे श्रोताओं की वजह से ही तो देखिए ना आज आकाशवाणी कितना आगे निकल गया है।
2: जी जी जी,
1: बताइए गजराज जी आप क्या करते हैं, अपने बारे में थोड़ा बताइए।
2: मैं खेती किसानी का काम करता हूँ, और इसके अलावा जो समरसिबल रहते हैं खेतों के लिए पंप, उनकी रिपेयरिंग भी होती है हमारे यहाँ।
1: आपके पास मतलब शॉप है?
2: जी।
1: अच्छा आप हाँ। करते हैं?
2: जी।
1: अरे वाह क्या बात है, तो फिर एक पन दो काज हो गया, खेत भी संभाल लिया और ये काम भी कर लिया,
2: और साथ साथ रेडियो तो हमको मिलता ही रहता है विविध भारती। तो
1: वो तो आपकी खुराक में शामिल है ना, हो सकता है एक रोटी कम खा लेते होंगे, लेकिन विविध भारती सुनना नहीं भूलते आप श्रोता लोग।
2: नहीं भूलते हैं। जी जी जी,
1: बहुत अच्छा लगता है हमें। तो गजराज जी आज कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
2: सौदागर मूवी का है, इमली का बूटा बेरी का पेड़।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत है, सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

इस जंगल में हम दोषी, चल घर जल्दी हो गई देर, चल घर जल्दी हो गई देर, इमली का छोटा मेरी का पेड़।

चल घर जल्दी हो गई दे, चल घर जल्दी हो गई दे, इमली का बूटा मेरे कमरे, इमली खट्टी मीठे दे, इस जंगल में हमको

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मंदाकिनी जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं बहापुर बिजनौर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैं
0: बोलिए, नाम बताइए।
1: नाम एम ताहिर है, यानी मोहम्मद ताहिर।
0: मोहम्मद ताहिर साहब, स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: शुक्रिया मैम, बहुत बढ़िया, आपकी दुआएं हैं।
0: देखिए ऐसा है कि आप अच्छे हैं तो अपने अच्छे कार्यों से अच्छे हैं आप, और ईश्वर की आप पर जो है अति कृपा है, अल्लाह की है ना।
1: जी जी, सब ऊपर वाले के कर्म से सब सही है।
0: क्या करते हैं ताहिर जी आप?
1: मैडम जी, मैं एक शॉपकीपर हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है।
0: अच्छा, किस विषय पर?
1: जी मैंने बाई इकोनॉमिक्स किया था।
0: तो आपने अपनी दुकान संभाल रखी है या अपने पिता की?
1: जी पापा बैठते थे, उसके बाद मैं बैठता हूँ, बस अब उन्होंने फिलहाल रेस्ट के लिए।
0: किस तरह की दुकान है
1: ये? लेडीज के आपसे ही मुतालिक सारे सामान है इसमें, जैसे गिफ्ट होते हैं, बैंगल्स होती हैं और कॉस्मेटिक्स वगैरह।
0: तो आपने एमए इकोनॉमिक्स में किया तो आगे कुछ और एग्जाम्स वगैरह नहीं दिए? क्या आपका उद्देश्य यही था कि पिता के व्यवसाय को संभालना है?
1: बात ये थी कि उसके लिए कहीं जाना पड़ता और पापा जी को मुझे अकेला कहीं भेजना मंजूर नहीं था।
0: अच्छा, हाँ ये हमारे माता पिता का जो अति मोह है संतान के प्रति ना, उसमें वैसे अच्छी बात है कि हम ताउम्र माता पिता का साथ दे पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ छूट भी जाता है जिंदगी में। हालांकि कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, आप खुश है तो सब अच्छा है।
1: बहुत बढ़िया।
0: तो बताइए गाना कौन सा सुनेंगे?
1: कन्यादान से मेरी जिंदगी में आते रफी साहब की आवाज।
0: क्या बात है, तो कुछ और बात होती।
1: जी जी,
0: कोई खास मकसद इस गाने को सुनने का?
1: नहीं नहीं, अल्फाज सही है, आवाज तो कोई कहने की दो राय है ही नहीं इसमें।
0: सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: उनकी जुल्फे उन

रत छुपा सकता नहीं। कितनी दिलकश है मोहब्बत की जवान,

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: हेलो मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए।
1: जी मैं जलंधर सिटी पंजाब से सोनू बात कर रहा हूँ। जी
0: सोनू जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं जी। आप बनासी जोशी जी बात कर रहे हैं?
0: हाँ जी।
1: हाँ जी मैडम जी, क्या रिक्वेस्ट कर आपको?
0: सुनते हैं हमारे कार्यक्रम
1: जी। मैं तो रेगुलर आपसे जुड़ता रहता हूँ फेसबुक के माध्यम से।
0: क्या बात है।
1: हाँ जी, बस क्या होता है ना, कभी कभी इबारत कुछ समझ में नहीं आती, फिर आप दो क्वेश्चन भी पूछते हैं,
0: आप जवाब देते हैं उसका।
1: हाँ जी, मैं जरूर पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं जवाब दूँ आपको, और मेरा नाम जुड़ा रहे अपनी बांटी के साथ में।
0: तो सवाल तो बिल्कुल सीधे साधे होते हैं, और एक कार्यक्रम को थोड़ा सा लाइवनेस बनाने के लिए करना पड़ता है, नहीं तो कार्यक्रम बिल्कुल उबाऊ हो जाएगा।
1: और विविध भारती का प्रोग्राम, लेकिन जब से स्टार्ट हुआ है विविध भारती का, तब से मेरे ग्रैंडफादर, फादर मेरे और मैं, वो कभी भी बोझ महसूस नहीं हुई। इतने बढ़िया प्रोग्राम होते हैं विविध भारती के।
0: मतलब आपके दादा की विरासत को आपके पापा ने संभाला और आप संभाल रहे हैं, है ना? जैसे हम उनके कामों को संभालते कि भाई हमारे दादा की ये बिजनेस था और उनको पिता ने, पुत्र ने संभाला, तो विविध भारती सुनने की भी आप लोगों ने ये एक ले रखा है प्रण की हमारे दादाजी की सुनने की आदत को हम भी सुनने में डाल लेंगे।
1: उन्होंने कहा था ना, चैनल वो सुना जाए जिसमें अच्छी ज्ञानवर्धक बातें हों। वो रेडियो ऐसा माध्यम है कि कभी इसमें गलत जानकारी नहीं मिलती है हमेशा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और आप लोग इतने प्यार और ईमानदारी से सुनते हैं, सबसे बड़ी बात ये हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग कार्यक्रम पेश करते हैं और आप लोग इतनी संजीदगी के साथ अपनी बात कहते हैं।
1: जी मैडम जी, देखिए आप जितने भी वीडियो पोस्ट करते हैं ना फेसबुक पर, वो सभी मैं देखता रहता हूँ और सभी मैं लाइक भी करता हूँ। तो आपने 90 साल का जो जश्न मनाया वो भी मैंने देखा।
0: चलिए तो आप बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको।
1: मैंने गाना सुना है जी दोस्ताना मूवी का, किशोर दा और आशा जी की आवाज, बहुत सुंदर गीत है। दिल लगी ने
0: दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई
1: और आग जल पड़ी।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मैं संतोष जी आड़ा बोल रहा हूँ, ग्राम सिड़ाव संजय डेरा देवास जिले से।
0: स्वागत है संतोष जी, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया है, ट्यूट हो गया हमको, रेडियो सुनते रहते हैं आपका प्रोग्राम, बचपन से सुन रहे हैं जी। आज 44 साल की उम्र हो गई हमारी और रेडियो समय से सुन रहे जो सेहत वाले शुरू स्टार्ट हुए थे।
0: कैसा लगता है रेडियो सुनने से, जिंदगी संवर गई आपकी?
1: रेडियो दीदी हम है ना, हमारे फार्म हाउस से मस्त सुना करते हैं, मजदूर काम किया करते हैं और आपकी वीर भारती पूरी टीम को हम बधाई देना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे लिए इतने सुंदर सुंदर कार्यक्रम लाते हो, फोनिंग कार्यक्रम लाते हो और गाने पुराने सदाबहार में जो सुनाते हो, बहुत बहुत अच्छा लगता है।
0: चलिए बहुत अच्छा लगा, आप इतने गहराई से हमारे कार्यक्रम सुनते हैं और उनके बारे में अपने विचार भी रखते हैं। वैसे आप खुद क्या करते हैं संतोष जी?
1: जी खेती गृहस्थी का काम है, खेती गृहस्थी का।
0: तो अभी क्या है आपके खेत में?
1: जी अभी खाली पड़ा है, बस वर्षा दीदी का इंतजार है, जैसे पानी गिरता है तो हम सोयाबीन लगाएंगे दीदी।
0: तो सोयाबीन की खेती में कितनी मेहनत मशक्कत हो जाती है, कितना ध्यान रखना पड़ता है?
1: दीदी जो अब जो सोयाबीन की फसल है बिल्कुल बेकार हो चुकी है, सिर्फ ये मेहनत फसल है, जैसे पानी का इंतजार रहता है, खेतों में चारा उगवाता है तो दवाई का इंतजार रहता है, डोरे लगाना पड़ता है, बेलों का समय रहा नहीं, ट्रो से लगाते हैं और फिर भी चारा नहीं बचता, फिर डबल दवाई उड़ाते हैं, बिल्ली की दवाई उड़ाना पड़, बहुत कठिन का काम है ये सोयाबीन पैदा करना। उसके बाद भी फिर मौसम सहयोग नहीं देता है तो फिर बैठक भी बहुत कम होती है हम किसानों को, सोयाबीन की फसल में तो बहुत घाटा है।
0: सही कहा आपने, बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी, तो फिर सोयाबीन की फसल को बार बार फिर क्यों बोते हैं, कोई कारण है खास?
1: मेहनत का तो है, फिर भी क्या है इसमें नुकसान चीज नहीं होती। अभी हम मक्का लगाते हैं तो जंगली सुअर खा जाते हैं, मूंगफली लगाते हैं जंगली सुअर खा जाते हैं, रतालू की फसल करे तो वो भी जंगली सुअर खा जाते हैं, उड़द दाल वगैरह पैदा करते हैं तो हिरन खा जाती, हिरन की मौत है हमारे इधर।
0: अच्छा तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता होगा आपको, तो ये तो 24 घंटे की निगरानी हो गई।
1: जी ये क्या है सोयाबीन में निगरानी नहीं रखना पड़ता है, दूसरी जो फसल है इसमें बरोबर निगरानी रखना पड़ता है।
0: तो इसलिए आप सोयाबीन को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देते हैं ना कि सोयाबीन की फसल लग जाए। अपने गाँव के बारे में बताइए थोड़ा सा, कैसा है आपका गाँव?
1: हमारा गांव बहुत सुंदर है, ऐसे तो हमारे गांव के पोहे और समोसे कचौरी बड़े फेमस है।
0: क्या बात है, पोहे और समोसे?
1: यस।
0: मुंह में पानी आ गया हमारे, देखिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपने हम एक नई जानकारी दी है सोयाबीन की खेती के बारे में। तो संतोष जी आप गाना बता दीजिए।
1: गाना है वो प्यार हमारा अमर रहेगा याद करेगा जहां।
0: फिल्म का नाम क्या है?
1: मुद्दत।
0: मोहम्मद अजीज की आवाज
1: जी।
0: चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

खुशबू जैसी तू चंचल है, तेरा बदन है संगे मरमर, तू एक जिंदा ताजमहल।

0: तो ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें ताकि हम अन्य श्रोताओं को इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर दे सकें। हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0222860288, दूसरा नंबर 0224002462। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पर मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी मुंबई केंद्र से रिले कर रहे थे। FM बैंड 101.8 MHz पर आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है। शाम के 5 बजे हैं, आइए सुनते हैं हमारे युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवाणी।

युवाणी सुनने वालों को आशा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, यह कहावत हमें जो सिखाती है कि तात्कालिक जो आवश्यकता है वो रचनात्मकता और नवाचार को जन्म देती है। जब भी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है या किसी महत्वपूर्ण चीज़ की कमी होती है तो वे समाधान खोजने के लिए कड़ी मेहनत करती हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है एक बेहद प्रसिद्ध कहावत है, जिसका अर्थ है कि जब भी मनुष्य को किसी समस्या का सामना करना पड़ता है या किसी सुविधा की सख्त आवश्यकता होती है तो वह अपने ज्ञान और बुद्धि का उपयोग करके नए समाधान या फिर आविष्कार को खोजता है। मानव इतिहास इस बात का प्रमाण है कि जब भी कोई चुनौती मिली हमने एक नई राह निकाली। साथियों, जैसे आवश्यकता पड़ने पर जो है किस प्रकार से आविष्कार होते हैं, और ऐसा होता है कि एक आविष्कार जब है उसमें भी हमें कुछ कमी लगती है तो दूसरा आविष्कार होता है। इसी तरीके से जो है वह पहिए का निर्माण हुआ। आदिमानव को जब भारी बोझ ढोने और लंबी दूरी तय करने में कठिनाई हुई तब उसने पहिए का आविष्कार किया। धीरे धीरे जो है भोजन को पकाने के लिए, ठंड से बचने के लिए अग्नि की खोज हुई, और ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते इतनी चीज़ों का जो है विकास हो गया कि हम लोग जो है वो मानव जीवन जो जी रहा है उसने इतने आविष्कार कर लिए और उनका जो जीवन है वो बहुत ही आसान हो गया। दूर बैठे प्रियजनों से संपर्क साधने की चाहत ने संचार के साधनों का जो है वह निर्माण किया और संचार के साधनों का जन्म हुआ, जैसे टेलीफोन, स्मार्टफोन, और इसी तरीके से बीमारियों से लड़ने और जीवन बचाने की आवश्यकता ने आधुनिक दवाओं और टीकों को जो है वह हमारे सामने ले आया और टीकों की खोज को संभव बनाया। यदि हम यह कह सकते हैं कि जरूरत ही हमारी रचनात्मकता को जगाती है और हमें प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाती है। जैसे जैसे जो है आवश्यकता बढ़ती रही, आदमी की जिज्ञासा बढ़ती रही, उसे और भी जानने की जो है वह हर चीज़ जानने की जिज्ञासा होती रही और जानने के लिए उसने अलग अलग आविष्कार किए। जैसे जैसे जो है प्रकृति आगे बढ़ती है, हमारे साथ में जो है उनका कनेक्शन होता है, तो हमें समझ में आता है कि अभी तो और भी चीज़ें जो है वह जाननी बाकी है। किस तरीके से जो है वह चांद के ऊपर क्या है, फिर जो है आगे दुनिया में क्या है, यह जानने के लिए अलग अलग जो है वह दार्शनिक है, उन्होंने भी कई चीज़ों का बताया कि किस तरीके से अलग अलग जगह आविष्कार हुए हैं। साथियों, आविष्कार से जो है एक चीज़ पता चलती है कि जब आवश्यकता आदमी की और कितनी बढ़ रही है, अंधेरे में रोशनी लाने, घरों व उद्योगों को बिजली मुहैया कराने के लिए बिजली का इस्तेमाल किया गया, दूरियों के पार संपर्क बनाए रखने की चाहत से टेलीफोन और इंटरनेट जैसे संचार उपकरणों का आविष्कार हुआ, बीमारियों से बचने के लिए जो है वह दवाइयों का, और हम ये कह सकते हैं दूर दराज के जो है रास्तों को पार करने के लिए रेल, बस और हवाई यात्रा का भी जो है वह विकास हुआ। यह सब चीज़ें हमारी आवश्यकता है और यही आवश्यकता ने जो है नई नई चीज़ों का आविष्कार करना हमें बताया है। जब किसी समस्या या कमी का सामना करना पड़ता है तब मनुष्य उसे दूर करने के लिए नए समाधान या विचारों की खोज करता है। आसान शब्दों में यदि हम बात करें तो किसी चीज़ की जरूरत ही नए आविष्कारों की असली प्रेरणा होती है। जब तक हम उस चीज़ को खोजते नहीं हैं तब तक हम उसके बारे में नई चीज़ पता नहीं चलती है। साथियों, ऐसा हमारे दैनिक जीवन में भी होता है। कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी किताब है, कोई ऐसी वस्तु है जिसे हम देखते भी नहीं हैं,

वह हमारे सामने है लेकिन हम खोजते नहीं हैं। काफ़ी समय तक हम उसको देखते ही रहते हैं ऊपर से, लेकिन कोई एक ऐसा दिन आता है, कोई ऐसा क्षण आता है जब हम उसे टटोलते हैं। जब हम उस चीज़ को टटोलते हैं तो हमें उस पर नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, चाहे वो किताब हो, कोई वस्तु हो, तो हमें और भी जिज्ञासा होती है कि और इसके अंदर कौन सी चीज़ है। वही चीज़ हमारे मानव जीवन में भी है कि ऐसी चीज़ें जिनको हम जब टटोलते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रकृति में ऐसी कई चीज़ें हैं, ऐसी कई घटनाएं हैं जो मानव के सामने आनी अभी बाकी है। और वही चीज़ें जो है तकनीकी हो, चाहे अलग अलग जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी हो, वह हमारे सामने आ रहे हैं। यह जो है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, यह कहावत एकदम सही है। समस्या ही जो होती है वह समाधान की जड़ होती है। जब लोगों को किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ता है तब वे रचनात्मक तरीके से सोचने के लिए मजबूर हो जाती हैं। और यही चीज़ है, और हमारे सामने इसके कई प्रमाण हैं, जैसे पहिए का आविष्कार, आग की खोज, टेलीफोन और इंटरनेट का निर्माण, ये सभी किसी न किसी खास जरूरत को पूरा करने के लिए किए गए हैं। और जो अलग अलग ये आविष्कार हुए हैं उससे हमें और भी, आज हमारे सामने कई ऐसी चीज़ें हैं लेकिन हमारा जीवन बहुत सरल है, बहुत आसान है, तो भी ऐसा लगता है कि यह चीज़ हो जाती तो और भी आसानी हो जाती। तो जब हमें किसी समस्या को देखते हैं तो उसके समाधान के रूप में एक नया आविष्कार हमारे सामने आता है। तो आवश्यकता जो है वह आविष्कार की जननी है। इसीलिए हमारे सामने जितनी समस्याएं हैं कि समाधान के रूप में एक नया आविष्कार हमारे सामने आएगा। साथियों, हमारी चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

साथियों, अभी आपने सुना यह प्यारा संगीत फिल्म दीवाना से। भारत के 7वें प्रधानमंत्री और सामाजिक न्याय के प्रणेता विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह की जयंती प्रतिवर्ष 25 जून को मनाई जाती है। उनका जन्म 25 जून 1931 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज में है, एक जमींदार परिवार में हुआ था। भारतीय राजनीति में वीपी सिंह को शोषितों, वंचित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए याद किया जाता है। साथियों, उनके राजनीतिक जीवन से जो है कई बातें जो जुड़ी हुई है, जो ऐसी बातें हैं जो हमें प्रेरित करती है, हमें प्रेरणा देती है। प्रधानमंत्री के रूप में उनका सबसे ऐतिहासिक फैसला जो था, वह अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने वाली मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना था। इसके अलावा उन्होंने जो है 1980 से 1982 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। साथियों, साहित्यिक और सामाजिक लगाव उनमें बेहद ज्यादा था। राजनीति के इतर उन्हें कला और विज्ञान में गहरी रुचि थी। वे एक अच्छे चित्रकार भी थे। उनके द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को समाज की मुख्य धारा में लाने हेतु किए गए ऐतिहासिक प्रयासों के कारण उन्हें भारतीय राजनीति में मंडल मसीहा भी कहा जाता है। इसके लिए उन्हें याद किया जाता है। साथियों, मंडल आयोग की जो सिफारिशें हैं, उन्होंने जो 7 अगस्त 1990 को वीपीसीए की सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू करने की घोषणा की और जो है उन लोगों को जो एक मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। वह एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व लिए हुए थे। उनका जो है वह हर रूप में जो भी उन्होंने कार्य किया, वह बहुत ही प्रेरणा के लिए हमारे सामने आता है। वे जनता दल के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय मोर्चा गठबंधन की सरकार के प्रमुख थे। उनका प्रधानमंत्री के रूप में लगभग 11 महीने का कार्यकाल भारतीय राजनीति में बेहद ऐतिहासिक माना जाता है। वीपी सिंह सरकार ने ही मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया और इसके तहत उन्होंने ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण प्रदान किया। इसके साथ ही जो है उन्होंने अपनी पार्टी का बहुत योगदान दिया, अपने जो साथियों का बहुत योगदान दिया और हमारे देश में उस समय तात्कालीन जितनी भी समस्याएं थी उनको अच्छे से उसका समाधान किया। उनका जो है साहित्यिक काल भी बहुत ही अच्छा था। वे एक अच्छे चित्रकार थे। साथियों, ऐसा बताया जाता है कि उन्हें कला और विज्ञान में गहरी रुचि थी। इसी तरीके से वह जानते थे कि किस तरीके से एक कला को या फिर जो है विज्ञान, ये सब चीज़ों को इससे जुड़ने वाले जो युवा है वह किस तरीके से आगे आने चाहिए। हमारे देश में युवाओं को आगे लाना, उनकी जो है नौकरी को देखना, उनकी व्यवसाय को, आजीविका को देखना, उन्होंने इसको सबसे प्रथम पर रखा। उनका जो है व्यक्तित्व वह बहुत ही महान माना जाता है। उन्होंने जिस भी रूप में, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, जो भी कार्यभार संभाला वो बहुत ही उम्दा तरीके से संभाला। साथियों, वीपीसी जो है उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था और भारत की ये जो पूर्व प्रधानमंत्री विश्व प्रताप सिंह का निधन 27 नवंबर 2008 को हुआ। उन्होंने 77 वर्ष की उम्र में दिल्ली के अपोलो अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। वह लंबे समय से रक्त कैंसर से पीड़ित थे और उन्होंने 27 नवंबर 2008 को अंतिम सांस ली। साथियों, हमारी चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया की ओर, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

बाग को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम।

0: साथियों, अभी आपने सुना यह प्यारा सा गीत फिल्म बागवान से। अब हम चर्चा करने वाले हैं समय का प्रबंधन परम आवश्यक। जी हाँ साथियों, मानव जीवन में समय का प्रबंधन टाइम मैनेजमेंट बेहद आवश्यक है। व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता प्राप्त करने के लिए समय का प्रबंधन बहुत जरूरी है। यह उत्पादकता बढ़ाने, मानसिक तनाव को कम करने और जीवन में संतुलन बनाए रखने की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कला है। तनाव की जो है कमी, उसको कम करने के लिए कार्य की स्पष्ट योजना होने से अंतिम समय की हड़बड़ी और तनाव दूर होता है। साथियों, समय प्रबंधन के कई महत्व है, जिसमें से एक हम ये कह सकते हैं कि उत्पादकता और कार्यकुशलता। सीमित समय में अधिक और बेहतर गुणवत्ता वाले परिणाम प्राप्त होते हैं। यदि समय प्रबंधन अच्छा हो तो हड़बड़ी नहीं होती और शांत मन से हर काम होता है, और शांत मन से काम होने पर सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। साथियों, प्रभावी समय प्रबंधन जो है अच्छी हो सके, इसके लिए हमारे मन में, हमारे दिमाग में कुछ रणनीतियाँ होनी चाहिए। जैसे प्राथमिकता तय करना, अपने महत्वपूर्ण व जरूरी कार्यों को सबसे पहले रखें। इसके लिए जो है ये ध्यान रखो कि हमारे जीवन में सबसे पहली चीज़ कौन सी जरूरी है, उसी हिसाब से ही जो है हमें काम पूरा करना चाहिए। समय सारणी जरूर बनानी चाहिए। विद्यार्थी जीवन है या फिर हमारा कोई क्षेत्र में विशेष काम है, तो हमारा एक टाइम टेबल होना चाहिए। किस काम को कितना समय देना है, यह पहले से ही निर्धारित हो। ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से बचना चाहिए। काम के दौरान मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, ये अनावश्यक बातचीत, इसे दूरी बनाए रखें। या फिर हम विद्यार्थी जीवन में हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी नौकरी पेशे की तैयारी कर रहे हैं, तो उस समय इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि मोबाइल फ़ोन है, सोशल मीडिया है, किन्हीं अनावश्यक बातचीत है, या फिर यूं ही जो है फ़ोन देखना, इन सभी चीज़ों को तो जो है दूरी बनाए रखें। यह हमारे समय प्रबंधन में बहुत ही ज़्यादा बीच में आता है। हम ये कह सकते हैं कि एक जो है वह टाइम मैनेजमेंट है, इसको बिगाड़ता है ये हमारे इस तरीके का बार बार। ये एक मानव जीवन में हम ऐसा देखते हैं, किसी भी आदमी का एक आदत सी बन गई है कि फ़ोन में कुछ काम ना है तो भी हम बार बार फ़ोन लेंगे, फिर लॉक खोलेंगे, फिर कोई जो है वो ऐप खोलकर उसको देखेंगे। यह एक आदत सी बन गई है। इस आदत को दूर करना हमारे समय को बचाता है। छोटे छोटे लक्ष्यों में जो है अपने कार्य को बांट देना चाहिए। बड़े कार्य को छोटे छोटे चरणों में यदि हम विभाजित करें तो उन्हें आसानी से पूरा किया जा सकता है। साथियों, समय प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कौशल है, जिसके तहत सीमित समय में कार्यों की योजना बनाकर उसकी उत्पादकता बढ़ाई जाती है। यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संतुलन बनाने, तनाव को कम करने और लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करने की सबसे बड़ी कुंजी है। समय प्रबंधन जो है, इसके कई सारे लाभ होते हैं, जैसे तनाव में कमी, कार्य को पहले से व्यवस्थित करना, प्राथमिकता देने से अंतिम समय में जो है वह हड़बड़ी नहीं होती और हमें चिंता से भी मुक्ति मिलती है और कार्य भी बहुत ही अच्छे से पूर्ण होता है। उत्पादकता में जो है वह वृद्धि होती है। सही समय पर यदि हम सही कार्य करें तो समय की बर्बादी रुकती है, जिससे कम समय में अधिक और बेहतर परिणाम मिलते हैं और उस कार्य को हम और भी अच्छे से कैसे कर सकते हैं, इसका समय भी हमें मिल जाता है और लक्ष्य की प्राप्ति भी होती है। प्रभावी रूप से समय का उपयोग यदि हम करें तो बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हम आसानी से पूरा कर सकते हैं और वह कार्य भी बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम बेहतर निर्णय क्षमता अपने अंदर रखें। जब आप अपने दिन या कार्य को नियंत्रित करते हैं तो आप बिना किसी दबाव के शांत मन से सटीक निर्णय ले सकते हैं। इसके लिए यह जरूरी है कि हम कार्य के ऊपर फोकस करें, किस तरीके से हम उस कार्य को करना है और अपने टाइम को भी देखें कि इसी समय में ही हमें यह काम खत्म करना है। थोड़ी सी भी यदि हम खुद से ही चीटिंग कर लेते हैं कि अभी थोड़ा टाइम इसमें दे देते हैं, थोड़ा फ़ोन देख लेते हैं, थोड़ा यहाँ चले जाते हैं, तो वह खुद के साथ ही चीट करना होगा। साथियों, और सबसे पहले समय प्रबंध में ज़रूरी है आत्म अनुशासन। डिसिप्लिन हर कार्य के लिए आवश्यक है। समय में काम पूरा करने के लिए, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, विद्यार्थी जीवन में यदि हमारा कोई लक्ष्य है तो उसकी प्राप्ति के लिए जरूरी है डिसिप्लिन। जब हम अनुशासित हैं तो हम किसी भी काम को अच्छे से पूरा कर सकते हैं। रूपरेखा यदि हम पूरे अच्छे से बना लेते हैं, यदि हम अपने महत्वपूर्ण और जरूरी कार्यों को पहले से ही कर लेते हैं, तो हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी है समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, वह जो है मानव जीवन के लिए परम आवश्यक है। साथियों, हमारी चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। चलते हैं फिर संगीत की दुनिया की ओर, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।
1: इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं। ये मैं नहीं, ये वो दोनों कहते थे। और कहते क्या थे, करते थे, और ऐसा करते थे जैसा ना किसी ने किया और ना शायद कोई कर पाएगा।

साथियों, अभी आपने सुना यह प्यारा सा गीत फिल्म बंटी और बबली से। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि घर के बड़े बुजुर्ग वह हमारे लिए कितने आवश्यक हैं, उनका अनुभव हमारे लिए कितना ज़रूरी है। साथियों, घर के बड़े बुजुर्ग जो है हमारे समाज हमारे परिवार की अमूल्य धरोहर होते हैं। उनके जीवन का लंबा अनुभव, व्यवहारिक ज्ञान और नैतिक मूल्य नई पीढ़ी को सही दिशा दिखाते हैं। उनके अनुभवों का सही लाभ उठाने के लिए उनके साथ नियमित संवाद करना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनके जो है अनुभवों को सुनना चाहिए, कठिन परिस्थितियों में उनके सुझावों को जरूर अपनाना चाहिए। साथियों, बुज़ुर्ग जो है यदि हंसते हुए बुज़ुर्ग किसी घर में हैं तो वह घर बहुत ही खुशनुमा माना जाता है, वह घर का जो है गहना होता है। हम ये कह सकते हैं कि जिस घर में जो है बुज़ुर्ग है उनके घर यदि चेहरे पर हंसी है, खुशी है, तो साक्षात भगवान उस घर में है। बुज़ुर्गों के ज्ञान और अनुभव बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, उनसे ज्ञान साझा करना चाहिए। साथियों, उनके काल के जो संघर्ष हैं, उनकी सफलताएं हैं, उनकी असफलताएं भी जो है वह भी हमें प्रेरणा देती हैं। वह उनकी कहानियों से हमें सीख मिलती है। उनके प्रौद्योगिकी के बिना उन्होंने जीवन जिया है, इसके लिए उनके पास में विपरीत परिस्थितियों से उबरने का व्यवहारिक ज्ञान होता है। मूल्यों और संस्कृति का हस्तांतरण भी जरूरी है। बड़े बुजुर्ग हमारी सभ्यता, नैतिक मूल्य और पारिवारिक परंपराओं के जीवंत स्रोत होते हैं। उनसे जुड़कर आप अपनी जड़ों

हर काम अच्छा होता है। घर के किसी भी बड़े फैसले में उनका मार्गदर्शन और राय अवश्य लेनी चाहिए। अपने क्षेत्र में होने वाले वृद्धजन सम्मान कार्यक्रमों में उन्हें शामिल करें और उनके अनुभव से लाभ उठाएं। साथियों, परिवार में एकता और समरसता बनाए रखनी चाहिए। बुजुर्ग परिवार के सदस्यों के बीच एकता और समरसता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ जोड़ने का कार्य करते हैं और परिवार में प्रेम सद्भावना का माहौल बनाए रखते हैं। साथियों, जीवन का दृष्टिकोण जो है उनके पास बहुत अच्छा होता है। बुजुर्गों के पास जीवन का व्यापक दृष्टिकोण होता है। बुजुर्गों के सम्मान के लिए सबसे जो है वह दो उपयुक्त शब्द हैं, वह है आदर और सम्मान। यदि बुजुर्गों को इस उम्र में उनके घर वालों से आदर मिल जाए, सम्मान मिल जाए, तो वह ये सोचते हैं कि हमारा पूरा जीवन जो है वह सफल हो गया है। बुजुर्गों के सम्मान के लिए जो है वह हम युवा जो भी कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो समय हम अपने मोबाइल में देते हैं, टीवी में देते हैं, उन समय को जो है थोड़ा सा बचा कर बुज़ुर्गों के पास ज़रूर बैठना चाहिए। भले ही ऐसा माना जाता है कि कई ऐसे बुज़ुर्ग होते हैं जो एक ही बात को काफ़ी बार बताते हैं, रिपीट करते हैं। शायद हम अपने जीवन में उस बात को कई बार सुन चुके हैं, लेकिन यह भी होना चाहिए कि तो भी उसी बात को उसी तरीके से भी उनसे सुनना चाहिए जैसे हम पहली बार सुन रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि हम उनके ऊपर कितनी अटेंटिव है, हम उनके ऊपर कितना ध्यान दे रहे हैं, यह उनको फील होना चाहिए। शब्द उनके लिए जो है उनकी कृतज्ञता जो है व्यक्त करें, इसके लिए दो महत्वपूर्ण शब्द है, वो है आशीर्वाद और मार्गदर्शन। बुजुर्गों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए कुछ बेहतर तरीके और जो है विचार होते हैं। यदि हम उन्हें आदर दें, उनकी भावनाओं को समझें, उनकी जो है आशीर्वाद, उनके धन्यवाद को लें, तो वहाँ पर बुजुर्गों का सम्मान होता है। साथियों, जिस घर में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि बुजुर्ग एकदम अच्छे हो, खुश हो, तो वहाँ पर देवता भगवान विराजित होते हैं। वहाँ पर जाना आना, उस घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा होता है और वहाँ के जो छोटे बच्चे हैं, हम ये कह सकते हैं, वो ऐसे जो है पेड़ की छाया में होते हैं। वह छाया बहुत ही हसीन होती है, बहुत ही प्यारी होती है, क्योंकि उन्हें ऐसा परिवार मिलता है जहाँ पर उन्हें कुछ चीज़ें अपने आप ही सीखने को मिलती है, वह परिवार से ही सीख लेते हैं। बुज़ुर्ग जो है वह एक वैसे वृक्ष के समान होते हैं जिनकी वो जड़ें हैं, जिनका वो आधार स्तंभ है। जिन घर में बुज़ुर्ग होते हैं वह जो है घर बहुत ही अच्छा माना जाता है। हम ये कह सकते हैं कि उस घर में जो है हर चीज़ बहुत ही वाइब्स बहुत अच्छी होती है, हर चीज़ अच्छी मानी जाती है, वहाँ का त्यौहार बहुत अच्छा होता है, घर हमेशा हरा भरा और खुशहाल लगता है। इसीलिए बड़ों का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ में समय ज़रूर बिताना चाहिए। युवा जो है वह उनसे काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं, उनसे प्रेरणा ले सकते हैं और उनकी शक्ति को समझ सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपना जीवन यापन किया। साथियों, हमारी चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया की ओर, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

साथियों, अभी आपने सुना यह प्यारा सा गीत फिल्म हम दिल दे चुके सनम से। इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे कि घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वह हमारे समाज और परिवार की अमूल्य धरोहर होते हैं। साथियों, काफ़ी बार ऐसा भी होता है, कई लोगों से हमने ये सुना भी है, कई जगह यह देखा भी है कि बड़े बुजुर्ग होते हैं, उन्हें आज की जो यह हम ये कह सकते हैं आज का जो माहौल है शायद वह थोड़ा करता है, क्योंकि उनके समय जो है वह माहौल हर चीज़ का जो है वह शादी ब्याह यह सब चीज़ें अलग हुआ करती थी, अब जो है अलग हुआ करती है, लेकिन वह मन से हमेशा ही जो है हर कार्य के लिए खुश होते हैं, वह हमें आशीर्वाद देते हैं, बच्चों की खुशी में ही उनकी खुशी होती है, यह हमें मानना चाहिए। वह घर के बच्चों को जितना अपना अपनापन और आशीर्वाद हम ये कह सकते हैं वह जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं शायद हम भी नहीं सोचते होंगे, कहीं ना कहीं हम किसी स्वास्थ्य में फिसल जाते होंगे, लेकिन वह जो बड़े बुजुर्ग है वह हमें निस्वार्थ भावना से प्रेम करते हैं। बच्चों को अच्छे से देखना, उनकी खुशी में शामिल होना, यही उनके लिए विशेष होता है। उनके शब्द थोड़े कड़वे हो सकते हैं, लेकिन उनका अनुभव, उनका प्यार जो है वह हमेशा ही मीठा होता है, वह फल की तरह हमेशा ही मीठा और अच्छा होता है। इसीलिए बड़ों का सम्मान करना चाहिए, जिस घर में बड़े बुजुर्ग हैं वहाँ पर उनको एक खुशनुमा माहौल बने ऐसा प्रयास जरूर होना चाहिए। साथियों, अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है, आप सभी को आशा का प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवाणी एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है। शाम के 6 बजे हैं, प्रस्तुत है इस सभा के शेष कार्यक्रम की रूपरेखा।

श्रोताओं, रात को 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 11:05 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार, 8:45 का समय रहेगा समाचार संध्या का, 9 बजे आप सुन सकते हैं न्यूज़ एट नाइट, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

अब एक नजर डालते हैं जयपुर अजमेर से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 6:40 का समय रहेगा जिले की चिट्ठी का और 6:45 पर आप सुन सकते हैं राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे। 10:00 का समय रहेगा प्रांतीय मासिक नाटक श्रृंखला, जिसे आकाशवाणी जयपुर अजमेर केंद्र से ही रिले किया जाएगा।

हमारे स्टूडियो से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। आपसे कुछ ही देर पश्चात 6:05 पर आप सुन सकते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस कांड एपिसोड नंबर 107। 6:15 का समय रहेगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का और 7 बजे आप सुनेंगे हमारे किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी।

7:30 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत। 8:30 का समय रहेगा सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आप सुनेंगे कुछ गजलें। राजस्थानी लोक संगीत का लुत्फ उठा सकते हैं 7:30 पर और रात्रि 9:30 पर।

फिल्म संगीत का समय रहेगा 8 बजे, 9:15 और रात्रि 10:30। तो श्रोताओं, ये थी हमारे इस सभा के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है। 6:05 हुए हैं, आइए सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस कांड, एपिसोड नंबर 107।

जनकपुर से श्री राम विवाह के समाचार की पत्रिका पाकर अयोध्या के राजमहलों में आनंद की लहर दौड़ गई। राजमहलों में उत्साह और उमंग छलक रहा है। रानियां ब्राह्मणों तथा भिक्षुकों को बुलवाकर दान और निछावरे दे रही हैं। शुभ समाचार पाकर अयोध्या के नागरिक प्रेम मग्न हो रास्ते, भवन और गलियां सजाने लगे हैं। ध्वज पताकाओं, पर्दों और सुंदर चमरों से बाजार की शोभा अनूठी हो गई है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरों, हल्दी, दूध, दही, अक्षत और मालाओं से सजाकर लोगों ने अपने अपने भवन मंगलमय बना लिए हैं। चंदन, केशर, कस्तूरी और कपूर के चतुरसम से गली चौराहों पर चौक पुराए जा रहे हैं। सुंदर सुहागिने 16 श्रृंगार किए मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं। राजा दशरथ के राजमहलों की शोभा का वर्णन शब्दों से परे है। उस स्थान का वर्णन कौन कवि कर सकता है जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री राम ने अवतार लिया है। राजा दशरथ ने कुमार भरत और शत्रुघ्न को बुलवाकर बारात सजाने का आदेश दिया। कुमारों ने साहनी अर्थात घुड़साल के अध्यक्ष को बुलाकर घोड़े हाथी सजाने की आज्ञा दी।

0: Marisa
1: महाराज गजानंद आओ जी मारी सभा में रंग बरसाओ जी।

0: महाराज गजानंद आवो जी, मारी सभा में रंग बरसावो जी।
1: महाराज गजानंद आवो जी, मारी सभा में रंग बरसावो जी। महाराज गजानंद आवो जी, मारी सभा में रंग बरसावो।

0: धन निर्बल थार आगे शीश झुकावे
1: आगे शीश झुकावे।
0: भूत पिशाच निकट नहीं आवे जो थाने नित

0: सरसी, धन भगता की पीड़ मिटाया सरसी, धन भगता की पीड़ मिटाया सरसी।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है। 6:30 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे पहले हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके पश्चात जिले की चिट्ठी और उसके पश्चात राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों की ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू हुई। ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास और नवाचार पर मंथन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकतंत्र सेनानियों की मासिक सम्मान निधि बढ़ाकर 25,000 रुपए करने की घोषणा की। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जयपुर के कुंदनपुरा में देश के पहले आधुनिक एग्री पीवी प्लांट का उद्घाटन किया। और प्रदेश में अगले 4-5 दिनों तक प्री मॉनसून गतिविधियों का सिलसिला जारी रहने का पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं सालेहा गाजी और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ऊर्जा आर्थिक सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आज गुरुग्राम में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लक्ष्यों और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य के ऊर्जा क्षेत्र के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्मार्ट मजबूत ढांचे और भंडारण प्रणाली पर तेजी से काम कर रहा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने बताया कि अब तक 6 करोड़ से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। ब्रिक्स के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर मंथन किया जा रहा है। ये बैठक कल भी जारी रहेगी। देश में 1975 में लगाए गए आपातकाल की वर्षगांठ के मौके पर लोकतंत्र सेनानियों को नमन किया जा रहा है। राजधानी जयपुर में भी लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह रखा गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौर ने भी दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान और प्रबंधन संस्थान में हुए इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों की सम्मान निधि बढ़ाकर 25,000 रुपए मासिक करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त उन्हें चिकित्सा मद में 5,000 रुपए माहवार भी दिए जाएंगे।
1: लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि को हमने, हमारी प्रदेश की सरकार ने उसको भी बहाल किया। अब हम प्रदेश की सभी लोकतंत्र सेनानियों को 20,000 रुपए मासिक पेंशन और 4,000 रुपए की मासिक चिकित्सा सहायता देते हैं। आज से हम इसको 25,000 रुपए और 5,000 रुपए चिकित्सा के 30,000 रुपए आज से आपको मिलेंगे।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सवाईमाधोपुर में अभियोजन भवन का लोकार्पण किया। कलेक्ट्रेट परिसर में बनाए गए इस भवन में राजस्थान अभियोजन अधिकारी एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह भी रखा गया। इस अवसर पर श्री बिरला ने अभियोजन प्रकरण प्रबंधन प्रणाली का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश में दंड संहिता को न्याय संहिता में बदलने से न्यायिक प्रक्रिया त्वरित, सहज और सुलभ हुई है। उन्होंने कहा कि समाज के गरीब तबके को समय पर न्याय दिलाना अभियोजन की प्राथमिकता है।
2: ये दो ऐसे महत्वपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया के पहिए हैं कि अगर ये त्वरित न्याय दिलाने की दिशा की ओर काम करने लगे तो समाज के सभी व्यक्तियों को न्याय त्वरित मिलेगा, क्योंकि भारत सरकार के गृह मंत्री जी ने कई तकनीकी विज्ञान का प्रयोग कर अपराधी बच न सके, उसके साक्ष्यों को कोई खत्म न कर सके, इसके लिए पहली बार फॉरेंसिक लैब बनी है।
0: वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने राजस्थान पीटीईटी 2026 का परिणाम जारी कर दिया है। इससे राज्य के 900 से अधिक बीएड कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने जयपुर में वीएमओयू क्षेत्रीय कार्यालय से ये नतीजे जारी किए। उन्होंने अव्वल रहने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से फोन पर बातचीत कर उन्हें बधाई दी। उधर राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की ओर से 10वीं और 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम भी आज जारी किया गया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जयपुर में शिक्षा संकुल से ये नतीजे जारी किए। इस अप्रैल और मई महीने में हुए इस परीक्षा में लगभग 83 लाख विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की सचिव डॉक्टर अरुणा शर्मा ने बताया कि ऑन डिमांड परीक्षा करवाने में स्टेट ओपन बोर्ड ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है।
3: स्टेट ओपन बोर्ड में पहला स्थान हमने पूरे देश में प्राप्त किया है। अच्छा जो है मार्कशीट और प्रवेश पत्र, जिसमें कई बार डमी के दिन कैंडिडेट भेजते हैं तो हम उसमें हमने QR कोड लगाया है। प्रवेश पत्र पे जैसे ही उस कोड को आप स्कैन करेंगे उसकी पूरी डिटेल उसमें आ जाएगी और मार्कशीट की भी, तो ये फुल प्रूफ एक तरह से करने का पूरा प्रयास किया है। तो आज हम लगभग 84,966 बच्चों का रिजल्ट आज निकालेंगे।
0: शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हर वर्ष उन शिक्षकों को दिए जाते हैं जिन्होंने स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, नवाचार और समर्पण का परिचय दिया है। राज्यपाल हरिभाव बागड़े आज पाली जिले के सादड़ी में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने संतों और गौरक्षा आंदोलन के बारे में अपने विचार साझा किए। इसके बाद श्री बागड़े राजसमंद के कुंभलगढ़ पहुंचे। उन्होंने दुर्ग परिसर स्थित महाराणा प्रताप की जन्मस्थली का अवलोकन किया। श्री बागड़े ने दुर्ग अधिकारियों को आने वाले देशी विदेशी सैलानियों के लिए सुविधाओं का विस्तार करने के भी निर्देश दिए। ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पेज पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जयपुर के कुंदनपुरा में देश के पहले आधुनिक एग्री पीवी प्लांट का उद्घाटन किया। पीएम कुसुम योजना के तहत 600 केवी क्षमता वाले इस मॉडल से किसान सोलर पैनल से बिजली बनाने के साथ आसानी से फसल भी उगा सकते हैं। इस मौके पर श्री नागर ने कहा कि इस नई तकनीक में सोलर पैनलों को ऊंचाई पर स्थापित किया गया है, इससे फसलों तक भी पर्याप्त मात्रा में सूरज की रोशनी पहुंच रही है। इस मॉडल से किसान बिजली से अतिरिक्त आय के साथ फसल उत्पादन आसानी से जारी रख सकेंगे।
4: किसान ने जो अपनी 600 किलोवाट का प्लांट था वो बस्ती के पास में कुंदनपुरा गांव में, और वहाँ उस किसान ने अपने एग्जिस्टिंग प्लांट को हाइट दे करके पर एक नवाचार किया है, उसको लगभग 11 फीट तक ऊंचा उठाया है, और उसके बाद उसने उसमें खेती करना प्रारंभ किया है कि किसान अपनी उपजाऊ खेती में भी सोलर प्लांट लगा करके उसकी हाइट बढ़ा करके नीचे अपनी खेती कर ले और उसके ऊपर सोलर से जो बिजली पैदा होती है वो भी आय बढ़ा ले। ये एक अच्छा इनोवेशन है और इसको आगे बढ़ावा मिलना चाहिए और इस किसानों को और इसकी तरफ प्रेरित करते हुए इस पर काम करने की अभी आगे जरूरत है।
0: राज्य में बीज प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और किसान अनुकूल बनाया जाएगा। आज जयपुर में पंत कृषि भवन में राजस्थान बीज और जैविक प्रमाणीकरण संस्था के संचालन मंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। कृषि और उद्यानिकी सचिव मंजू राजपाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक पर और ब्यौरा दे रहे हैं न्यूज डेस्क से हमारे सहयोगी सुदर्शन नाहर।
5: प्रदेश में बीज प्रमाणीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से बीज प्रयोगशाला जांच और ग्रो आउट टेस्ट GOT नमूना जांच को समानांतर रूप से संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही बीज प्रमाणीकरण के लिए लागू क्रॉप कैलेंडर में आवश्यक बदलाव करने का फैसला भी किया गया है। इससे विभिन्न फसलों के बीज समय पर प्रमाणित होकर किसानों को मिल सकेंगे और खेती किसानी में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं होगी।
0: और अब मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 5-7 दिनों में और सक्रिय होने तथा पूर्वी और मध्य भारत में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। इस बीच राज्य में भी प्री मानसून गतिविधियां जोर शोर से जारी है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 4-5 दिनों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ झोंकेदार हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बरसात का सिलसिला बने रहने के आसार हैं। पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी का अनुमान है। वहीं जुलाई के पहले सप्ताह में राज्य के कई भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। इस बीच आज दोपहर में राजधानी जयपुर में मौसम बदला और आंधी के साथ करीब पौन घंटा तेज बरसात हुई। झमाझम बारिश से शहर में कई जगह पानी भर गया। उधर कोटपुतली बहरोड में भी धूल भरी आंधी के साथ रिमझिम बारिश का दौर चला। कल भरतपुर, नागौर, सीकर, चूरू और श्रीगंगानगर के कुछ हिस्सों में एक एक इंच और उससे ज्यादा पानी बरसा। निर्जला एकादशी के अवसर पर प्रदेश भर में आज श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और दिन भर दान पुण्य का दौर चला। जगह जगह सामाजिक संगठनों और लोगों ने छबील लगाकर राहगीरों को शीतल पेय वितरित किए। निर्जला एकादशी पर जल सेवा का विशेष महत्व माना जाता है। वहीं मुहर्रम का पर्व कल मनाया जाएगा। ये इस्लामिक नववर्ष के 10वें दिन आशूरा को मनाया जाता है। करबला की जंग में हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में ये दिन अकीदत के साथ गमगीन माहौल में मनाया जाता है। इस मौके पर ताजिए भी निकाले जाते हैं। राजधानी जयपुर में मुहर्रम के मौके पर करीब 300 छोटे बड़े ताजियों का जुलूस निकाला जाएगा, जिन्हें देर रात कल करबला मैदान में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत के पर्व मुहर्रम को शांति और सौहार्द के साथ मनाने की अपील की है। पाली के गिरीश रल और राहुल बारेसा ने वेस्ट जोन स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर पदक जीते हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद में हुए इस स्पर्धा में गिरीश ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, वहीं राहुल ने कांस्य पदक जीतकर प्रदेश को गौरवान्वित किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इसके तहत अनुसूची H2 का दायरा व्यापक रूप से बढ़ाया गया है, जिससे नकली और घटिया दवाओं पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। इसके QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस ढांचे में दवाओं की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल की गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू हुई। ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास और नवाचार पर मंथन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकतंत्र सेनानियों की मासिक सम्मान निधि बढ़ाकर 25,000 रुपए करने की घोषणा की। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जयपुर के कुंदनपुरा में देश के पहले आधुनिक एग्री PV प्लांट का उद्घाटन किया और प्रदेश में अगले 4-5 दिनों तक प्री मॉनसून गतिविधियों का सिलसिला जारी रहने का पूर्वानुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से बूंदी जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। बूंदी ने कल अपना 785वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। शुरुआत गढ़ गणेश मंदिर में पूजा अर्चना के साथ हुई। इस अवसर पर जिले की सुख समृद्धि की कामना की गई। इसके बाद पर्यटन सूचना केंद्र में फोटो और चित्रकला प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में ड्रोन कैमरे से ली गई तारागढ़ किला, रानी जी की बावड़ी, नवल सागर, जैत सागर और अन्य ऐतिहासिक स्थलों की तस्वीरों को लोगों ने देखा। बूंदी चित्रशैली पर आधारित चित्रों ने जिले की सांस्कृतिक पहचान को भी सामने रखा। बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत इस साल बूंदी जिले के 885 वरिष्ठ नागरिकों का चयन किया गया है। इनमें 788 वरिष्ठ नागरिक रेल मार्ग से और 97 वरिष्ठ नागरिक हवाई मार्ग से विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा करेंगे। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूरी की गई। यात्राओं का कार्यक्रम जल्द जारी किया जाएगा। योजना के तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। जिले भर में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायतों और नगरीय क्षेत्रों में लग रहे इन शिविरों में पात्र लोगों को एक ही स्थान पर कई विभागों से जुड़ी सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है। भूमि संबंधी प्रकरण, पट्टी, नामांतरण, भवन निर्माण स्वीकृति, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने विभिन्न शिविरों का पिछले दिनों निरीक्षण किया और अधिकारियों को प्राप्त प्रकरणों का समय पर समाधान करने के निर्देश दिए। बड़ी संख्या में लोग इन शिविरों का लाभ उठा रहे हैं। पिछले दिनों जिले में जल जीवन मिशन के कार्यों की भी समीक्षा की गई। जिला जल और स्वच्छता मिशन की बैठक में विभिन्न पेयजल योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। अधिकारियों को हर घर नल कनेक्शन, विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य संस्थानों तक पेयजल सुविधा समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। विभागों के बीच समन्वय बनाकर कार्यों को तय समय में पूरा करने पर जोर दिया गया। साथ ही जल योजनाओं की नियमित निगरानी करने को कहा गया। मॉनसून के आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिला कलेक्टर ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर नालों की सफाई का निरीक्षण किया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि बारिश शुरू होने से पहले सभी नालों की सफाई पूरी कर ली जाए ताकि

0: प्रशिक्षकों ने लोगों को नियमित योग करने के लिए प्रेरित किया। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और दूरसंचार सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में जिले में तेजी से काम हो रहा है। जिले की सभी ग्राम पंचायतों को बेहतर फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। इससे इंटरनेट सेवाएं अधिक सुचारू होंगी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं का विस्तार होगा। महिला अधिकारिता विभाग ने जिले की कुछ ग्राम पंचायतों में साथिन के रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक महिलाएं निर्धारित तारीख तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। विभाग ने पात्र महिलाओं से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। इधर दिव्यांगजन के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत आवेदन शुरू हो गए हैं। योजना का उद्देश्य दिव्यांगजन को आसान आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना है। मौसम में बदलाव के साथ किसान खेतों में खरीफ फसल की बुआई की तैयारियों में जुट गए हैं। कृषि विभाग किसानों को समय पर बुआई, उन्नत कृषि पद्धतियों और फसल प्रबंधन से जुड़ी जानकारी उपलब्ध करा रहा है ताकि नई फसल की शुरुआत बेहतर तरीके से हो सके। इसके साथ ही बूंदी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, भारत री सदारत माए ब्रिक्स देशारा ऊर्जा मंत्रियों री मीटिंग गुरुग्राम माए सरूफी, ऊर्जा सुरक्षा लगातार विकास और नवाचार रबारा माए विचार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा लोकतंत्र सेनानिया री हर महीना दी जावन वाले सम्मान निधि बधार 25,000 रुपया करण रो ऐलान कीनो। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जयपुर रा कुंदनपुरा माए देश रा पहला आधुनिक एग्री पीवी प्लांट रो उद्घाटन कीनो। और प्रदेश माए आवता 4-5 दिन ताई चौमासाओं पहली रे हलचल चालते रहवन रो अनुमान। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल कहो है कि ऊर्जा माली सामाजिक बरकत और इंसान रा विकास सारू घनी खास है। वे आज गुरुग्राम माए ब्रिक्स देशां रा ऊर्जा मंत्रियों री 11वीं मीटिंग माए बोल रहा है। ऊर्जा मंत्री कहो कि लगातार विकास सारू किफायती भरोसेमंद और टिकाऊ ऊर्जा जरूरी है। वे कहो कि भारत आवता वगत माए ऊर्जा हल्का सारू नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्मार्ट मजबूत ढांचा और भंडारण प्रणाली माथे तेजी काम कर रियो है। मनोहर लाल कहो कि देश माए हाल ताई बिजली रा 6 करोड़ों बत्ता स्मार्ट मीटर लगा दिया गया है। ब्रिक्स देशारा नुमाइंदा री आ मीटिंग काली फैला। साल 1975 माए देश माए लगाई गया आपातकाल री वर्षगांठ रे मौके आज लोकतंत्र सेनानिया ने नमन करी गयो। ये मौके राजधानी जयपुर माए लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह राखी जियो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कार्यक्रम माए शामिल थिया। ये मौके मुख्यमंत्री लोकतंत्र सेनानिया री मान निधि री रकम बधार 25,000 रुपया महीना करण रो ऐलान कीनो। वह कहो कि ईसा गई लोकतंत्र सेनानिया ने इलाज सारोई हर महीना 5,000 रुपया दिया जावेला।
2: लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि को हमने हमारी प्रदेश की सरकार ने उसको भी बहाल किया। अब हम प्रदेश की सभी लोकतंत्र सेनानियों को 20,000 रुपए मासिक पेंशन और 4,000 रुपए की मासिक चिकित्सा सहायता देते हैं। आज से हम इसको 25,000 रुपए और 5,000 रुपए चिकित्सा के 30,000 रुपए आज से आपको मिलेंगे।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज सवाई माधोपुर माए अभियोजन भवन जनता ने सौंपियो। कलेक्ट्रेट परिसर माए बनाई जाई भवन माए राजस्थान अभियोजन अधिकारी एसोसिएशन रो शपथ लेवन रो जलसोई राखी चियो। ये मौके श्री बिरला अभियोजन प्रकरण प्रबंधन प्रणाली री शुरुआती कीनी। वे कहो कि देश माए दंड संहिता ने न्याय संहिता माए बदलनो न्याय देवन रो काम तेज और आसान भयो है। लोकसभा अध्यक्ष कहो कि समाज रा गरीब तबकारी जनता ने तेम सर न्याय दिलावण माथे अभियोजन रो खास ध्यान है।
2: ये दो ऐसे महत्वपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया के पहिए हैं कि अगर ये त्वरित न्याय दिलाने की दिशा की ओर काम करने लगे तो समाज के सभी व्यक्तियों को न्याय त्वरित मिलेगा, क्योंकि भारत सरकार के गृह मंत्री जी ने कई तकनीक

0: की विज्ञान का प्रयोग कर अपराधी बच न सके, उसके साक्ष्यों को कोई खत्म न कर सके, इसके लिए पहली बार फॉरेंसिक लैब बनी है।
1: वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा राजस्थान पीटीईटी परीक्षा रा नतीजा रो ऐलान करतीनो है। इनो राज्य रा 932 बीएड कॉलेज में दाखिला दिया चावेला। उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा जयपुर में वीएमओयू रा क्षेत्रीय कार्यालय नतीजा जारी कीना। इस मौके वे अव्वल रहा विद्यार्थियों ने फोन कर बधाई दीनी। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल ही 10वीं और 12वीं कक्षा री परीक्षा रा नतीजा रो ऐलान करतीनो है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जयपुर राज शिक्षा संकुल नु नतीजा जारी कीना। अप्रैल मई 2026 में भी ई परीक्षा में करीब 83 लाख विद्यार्थी बैठा। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल रे सचिव डॉक्टर अरुणा शर्मा बतायो कि ओपन स्कूल नियमित स्कूल शिक्षा हासिल नहीं कर सकया विद्यार्थियों ने पढ़ाई करावन रा मकसद नु काम करे है। वह कहो कि ओपन स्कूल छोड़ देवन वाला बच्चा की तादाद कम करण में मददगार साबित हो रहा है। अरुणा शर्मा कहो कि ऑन डिमांड परीक्षा करावन रा हलका माय स्टेट ओपन बोर्ड देश माय अव्वल रहो है।
2: स्टेट ओपन बोर्ड में पहला स्थान हमने पूरे देश में प्राप्त किया है। चाहे जो है मार्कशीट और प्रवेश पत्र, जिसमें कई बार डमी कैंडिडेट बैठते हैं तो उसमें हमने QR कोड लगाया है। प्रवेश पत्र में जैसे ही उस कोड को आप स्कैन करेंगे उसकी पूरी डिटेल उसमें आ जाएगी और मार्कशीट की भी, तो ये फुल प्रूफ एक तरह से इसमें करने का पूरा प्रयास किया है। तो आज हम लगभग 84,966 बच्चों का रिजल्ट आज निकालेंगे।
1: शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सारु ऑनलाइन तरीका अर्जियां मांगी है। अर्जियां राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल मत 10 जुलाई ताई दाखिल करी जा सके है। स्कूल शिक्षा रा हलका माय बेहतरीन काम, नुआ काम और समर्पण रो दर्शाव करण वाला अध्यापक ने हर साल राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार देर नवाजा जावे है। राज्यपाल हरिभाव बागड़े पाली जिला रा सादड़ी माय राखी जिया एक धार्मिक कार्यक्रम माय संता और गौ रक्षा आंदोलन रा बारा माय विचार बताया। इन पाछे वे राजसमंद जिला रा कुंभलगढ़ किला माय महाराणा प्रताप रा जन्म रिठौड़ी देखी। श्री बागड़े अहलकारा ने किला माय आवन वाला सैलानिया सारू सुविधा बधावन रा हुक्म दीना। ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। जयपुर कना कुंदनपुरा गांव में देश रो पहलो आधुनिक एग्री पीवी प्लांट लगाईचियो है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर इन रो उद्घाटन कीनो। पीएम कुसुम योजना रा तहत 600 किलोवोल्ट बूता वाला ई मॉडल नु किसान सूरज री रोशनी बिजली बनावन सके आसानी साखा ले सकेला। ई मौके श्री नागर कहो कि ई नवी तकनीक माए सूरज री रोशनी बिजली बनावन री मशीना ऊंची लगाई जावे है, जिनों किसान बिजली पैदा करने अतिरिक्त आमदनी सागे साखान ले सकेला।
3: किसान ने जो अपनी 600 किलोवाट का प्लांट था वो बस्सी के पास में कुंदनपुरा गांव में, और वहां उस किसान ने अपने एग्जिस्टिंग प्लांट को हाइट दे करके और एक नवाचार किया है, उसको लगभग 11 फीट तक ऊंचा उठाया है। और उसके बाद उसने उसमें खेती करना प्रारंभ किया है कि किसान अपनी उपजाऊ खेती में भी सोलर प्लांट लगा करके उसकी हाइट बढ़ा करके नीचे अपनी खेती कर ले और उसके ऊपर सोलर से जो बिजली पैदा होती है उसकी आय बढ़ा ले। ये एक अच्छा इनोवेशन है और इसको आगे बढ़ावा मिलना चाहिए और इस किसानों को और इसकी तरफ प्रेरित करते हुए इस पर काम करने की अभी आगे जरूरत है।
1: राज्य में बीजा ने प्रमाणित करण रो काम और साफ कोई सागे और किसान अनुकूल बनाए चावेला। राजस्थान बीज और जैविक प्रमाणीकरण संस्था रा संचालन मंडल रे आज जयपुर माए भी मीटिंग माए ओ फैसलो करीचियो। कृषि और उद्यानिकी सचिव मंजू राजपाल री सदारत माए भी मीटिंग माए बीज प्रयोगशाला जांच और ग्रो आउट टेस्ट GOT नमूना जांच ने एक सागे चलावन रो फैसलो करीचियो। इस आगे बीज प्रमाणीकरण सारू लागू क्रॉप कैलेंडर माए जरूरी बदलाव रो फैसलो ये करीचियो। अरबे मौसम चौमासारी बिरखा स्वरूप हेवणु पहली राज्य माए आवता 4-5 दिन ताई कठे कठे गरज चमक सागे जोरदार बायरो बाजन और बरसात फेवन रा आसार है। आवता महीना रा पहला सप्ताह माए प्रदेश रा कई हिलका माए बिरखा बधवा रा आसार है। इन बीचे आज दोपहर पाछे राजधानी जयपुर माए आंधी चालन सागे

0: करीब पौन घंटा ताई झमाझम में बरसियो, चिणु कई ठोणा पानी फिरकियो। कोटपुतले बहरोड में आई आंधी चालन साके छंटो छिड़को भियो। काल भरतपुर नागौर सीकर चूरू और श्रीगंगानगर राकू छलका माए एक एक इंच अर वाऊ बत्ती बिरखा भी। निर्जला ग्यारस रे मौके आज आखा राज्य में जातरु दान पुण्य कीना। नैरी नैरी थोड़ा सामाजिक संगठन और दूजा लोगों ने ओरों छबी लगार राहगीरा न ठंडो पैचियो। निर्जला ग्यारस न जल सेवारो खास महत्व मान्यो जावे है। दूजी गानी मुहर्रम काल मनायो जावेला। ओ इस्लाम नुआ साल रा दसवां दिन आशूरा न मनायो जावे है। करबलारी जंग माए हजरत इमाम हुसैन अरवारा साथियां री शहादत री याद माए ओ दिन अकीदत सागे गमगीन माहौल माए मनायो जावे है। ये मौके ताजियाई निकालिया जावे है। राजधानी जयपुर माए मुहर्रम रे मौके छोटा मोटा करीब 300 ताजियां रो जुलूस निकालियो जावेला। ताजिया मोड़ी रात करबला मैदान माए सुपुर्द खाक करिया जावेला। राज्यपाल हरिभाव बागड़े मुहर्रम शांति सागे मनावन री अरज कीनी है। वेस्ट जॉन स्ट्रेंथ लिफ्टिंग होड़ माए पाली रा गिरीश रल सोनारो और राहुल बारेसा कांसारो तमको जीत्यो है। आहोड़ छत्तीसगढ़ रा बालोद माए भी ही। देश माए पोलियो री बीमारी न जड़ों खत्म करन रा मकसद चलाया जा रहा। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान रा तेत 28 जून दीतवार ने 5 साल ताई रा बच्चा ने पोलियो बचाव री दवा री खुराक पाई जावेला। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय रे मुजब राज्य रा सगला सरकारी स्वास्थ्य केंद्र आंगनबाड़ी केंद्र और खास तौर हूँ बनाई जिया पोलियो बूथा मत आ खुराक पाई जावेला। दीतवार ने दवाई नी पीवन वाला बच्चा ने 29 और 30 जून ने स्वास्थ्य कर्मचारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जार आ खुराक पावेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 28 जून ने विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 135वीं कड़ी फैला। इन सारू आप ई मुफ्त नंबर 1800117800 माथे काल ताई राय दे सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ही विचार भेजा जा सके है। नंबर को जो सुन ले राव सा 1800117800। आखिर माए खास समाचार एक कर फेर सुन ले राव। भारत री सदारत माए ब्रिक्स देशां रा ऊर्जा मंत्रियां री मीटिंग गुरुग्राम माए शुरू हुई। ऊर्जा सुरक्षा लगातार विकास हर नवाचार रा बारा माए विचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लोकतंत्र सेनानियारी हर महीना दी जावन वाली सम्मान निधि बधार 25,000 रुपया करण रो ऐलान कीनो। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जयपुर रा कुंदनपुरा माए देश रा पहला आधुनिक एग्री PV प्लांट रो उद्घाटन कीनो। हर प्रदेश माए आवता 4-5 दिन ताई चौमासाओ पहली री हलचल चालती रहवण रो अनुमान। इसागी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। भानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजा हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमिर
2: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है। शाम के 7 बजे हैं, आइए सुनते हैं हमारे किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी।
3: कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार।

0: समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: लालजी भैरा घना घना राम राम। देखो किसान भाइयों के भी गर्मी का मौसम है, और गर्मी के मौसम में किसान भाई जो आप रहे खेतों मोए में जुड़ जाऊँ चीज़ें उनको कि अंदर जो समय है वो समय है बारिश रो। तो जब बारिश रो समय आसे तो कि ये किसान भाई ना आप रहे खेत री पूरी तैयारी भी करनी पड़ी, और उरे वास्ते किसान भाई ना समय समय में थे आप राज्य को भी कृषि यंत्र है या बाजार से उन्होंने बीज खरीदना है या कोई भी कृषि संबंधी सामान खरीदना है तो उर वास्ते उन्होंने आप रे तैयारी पूरी कर लेना चाहिए। और एक और भी चीज़ है कि पहले जो कुछ टाइम होता तो टाइम क्यों तो एक समूह में किसान भाई समूह में काम करता, कह रहे भी कोई समस्या हो या कह रहे भी कोई फसल कटाई हो या कोई बिजाई करनी हो तो किसान भाई एक संगठन बना के उनमें काम करता, चाहे वो खेती संबंधी कार्य हो चाहे वो उन्होंने की अनाज न एकत्रित करके उन्हें बाजार में बेचना करना हो तो मतलब हर प्रकार से एक संगठन बनो रहो जिके सो कि एक संगठन से किसान भाई आप कार्य करता था जिके सो उन्हें एक फायदा भी मिलता था कि कोई भी कौम ढीले को नहीं देती और हर कौम समय में हो जाता था। तो यूँ आप एक बात करो महिला किसान समूह, तो एक एक किसान और एक महिला और समूह है जिके मोए सभी महिलाओं मिल के किसान संबंधी जो कभी कार्य हुए चाहे खेती संबंधी हुए या कोई किसान अड़ी संस्था हुए या अड़ो कार्य हुए कोई जिकर मोए सारी महिलाओं जो 15-20 महिलाओं एक छोटा संगठन हुई उस बधिक बड़ा चाहे बड़ो समूह बने तो वे समूह में महिला खेती के साथ साथ दूसरों भी कार्य कर सके। तो आप तो कह सके भी अगर अड़ो महिला संगठन बनौना रहे तो जो किसान भाई है जो आप रहे खेती में काम करे तो महिलाओं भी उमरी पूरी पूरी मदद करे तो वो किसान भाई और महिला समूह बना के कोकर मदद करे। तो ये भी अपन जानकारी होनी चाहिए कि भाई खेती बाड़ी के साथ साथ जो महिलाओं है घरों भी काम करे जो कह सको आप पशुपालन में काम करे और साथ साथ जो भी खेतों में काम हुए चाहे ट्रैक्टर चलाना हुए चाहे बिजाई करनी हुए चाहे उसके अलावा कोई भी छिड़काव करना हुए या कटाई करनी हुए तो महिला है जो है समूह बनाए के सारे काम कर सके।
7: बैंक लोन मिले और कृषि सब्सिडी प्राप्त करना भी उन्होंने आसानी हुई, साथ ही साथ समूह जो उन्नत खेती है जैविक खाद जो निर्माण है पशुपालन है या खाद्य प्रसंस्करण है पूरा भी प्रशिक्षण मिलिया करे और सामूहिक रूप से बीज उर्वरक मशीनरी खरीदने में जो लागत हुई वो कम हो जाए और उत्पादन में जो बेहतर मार्केटिंग होया करे। महिलाओं जो नेतृत्व जो क्षमता और विकास जो है एक समूह के कारण हो जाया करे और समुदाय में सम्मान निर्णय जो अगर आप ले तो आप और जो भी क्षमता उन्हें योग्य बनावे। अगर बात करो तो भाई महिला समूह जो है वो तहत जो है ग्रामीण महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह बनाने में जो है आज भी कल साधन जुटाने में जो है इतनी मदद भी मिल जा करी क्योंकि सरकार भी जो है ये जो समूह ने बनाने वास्ते काफ़ी सरकार योजना बना रही है काफ़ी पहल कर रही है तो फिर वास्ते जो है महिलाओं ने राजकीय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिली महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना भी जो सरकार चालू करी है जिसके कारण जो NRLM एक उपघटक है जो विशेष रूप से महिलाओं और जो किसान और एक कृषि पद्धति है उन्हें बेहतर बनाने में केंद्रित होया करी। कई राज्य है जो है गुजरात है तो मैं मुख्यमंत्री महिला किसान सशक्तिकरण योजना भी जो है वो आप स्तर में विशेष सहायता प्रदान करे। छोटा और जो सीमांत किसानों ने मिलाए के एफपीओ बनाया जावे जिके महिला किसानों ने जो कैंटी में जो भूमिका दी जावे तो अरे समूह जो को है बनाए के जो महिलाओं भी जो है आप जो कृषि जगत में आप स्तर न बढ़ावा दे सके आप आर्थिक स्थिति मजबूत कर सके।
6: बिल्कुल सही बात है कि देखो भी समूह बनाना एक हर संगठन वास्ते बढ़िया रहे और जेथ कहीं ना कहीं संगठन जेथ रहे तो वो तो मजबूती भी ज़्यादा रहे और दूसरों जे ज़्यादा कौम है अगर वो संगठन बने तो वो कौम बहुत सरलता से सुगमता से पूरा भी हो जावे। तो आप कह सको कि भाई महिला जो समूह है उन्हें किसान समूह बनना चाहिए और उसके साथ साथ जो भी सरकारी योजनाओं हैं या उससे संबंधित किसानों से संबंधित कोई कार्य है तो महिलाओं अगर अपनी भागीदारी निभावे तो महिलाओं रो भी सुरागीण विकास होगी। आप आगे भी बातचीत जारी रख सो और हमें आप सुन जो एक राजस्थानी लोकगीत।

खराबी को नहीं हुई, जमीन रही या पूरी उत्पादन क्षमता बनी रही। और उस साथ साथ आपको अगर जो रासायनिक से उत्पादित फसल बेचोएं और एक आपको जैविक से उत्पादित फसल बेचोएं, तो निश्चित रूप से अपन जैविक से उत्पादित फसल का दाम बढ़िया मिले और दूसरों इस पर स्वास्थ्य भी बढ़िया बना रहे। आपको पहले भी बात करी थी कि भाई शुगर वास्ते या मोटे मोटापे वास्ते या दूसरे वास्ते भी ये बहुत फायदेमंद रही। तो अपन कोशिश यही करनी है कि आप जो तो हो सके जो तो आप मोटा अनाज प्रयोग करो और आप सरकार भी है जो को ईर वास्ते भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है कि जो तो हो सके जो तो मोटा अनाज प्रयोग करके और आप स्वास्थ्य से बढ़िया रखो। आप आगे भी और बातचीत जारी रख सो और मैं आप सुन सो एक राजस्थानी लोकगीत।

0: तो भाई आप बातें तो और भी करता है, लेकिन आपारे कार्यक्रम बखत हुई गई पूरा, तो आप तो ऐसा सीख और कर सो
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

0: समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।
6: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है। 7:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत। राजस्थानी लोक संगीत में आज आपने सीमा मिश्रा के गाए कुछ लोकगीत सुने। FM बैंड 101.8 MHz पर आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा।

0: मेरे कारे कारे नैना।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बंटी और बबली फिल्म से गीत। फिल्म संगीत की अगली पेशकश है फिल्म दिल है की मानता नहीं।

श्रोता हूँ, अभी आप सुन रहे थे आज जो फिल्म को ये गीत, इस गीत के साथ ही हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहाँ समाप्त होता है। FM बैंड 101.8 MHz पर आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है। 8:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज हम सुनेंगे कुछ गजलें।

हंसी पाँव में छाले होंगे

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है। 8:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे पहले समाचार संध्या और 9 बजे का समय रहेगा News@9 का, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपए किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 6,000 रुपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। ICC क्रिकेट T20 महिला विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया और FIFA फुटबॉल विश्व कप में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के UK इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement
2: भारत ब्रिटेन

0: सहयोग बढ़ा रहे हैं।
1: पार्टनरशिप विद यूके इज टेकिंग मेनी मोर डायमेंशन।
2: ब्रिटेन के साथ हमारी साझेदारी कई नए आयाम ले रही है। प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारा साझा उद्देश्य है। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और ब्रिटेन की साझेदारी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है कि वैश्विक व्यापार निष्पक्ष और समान अवसरों पर आधारित हो।
0: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में विशेष जांच दल SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्यवाही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को SIT का गठन किया था। SIT मामले की विस्तृत जांच कर रही है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय के अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठ वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹6,000 का शुल्क लिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
4: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
3: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। एक रिपोर्ट।
5: ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप है। वेनेजुएला की राजधानी काराकास से लगभग 1,700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन क्षेत्र तक के इलाकों में इमारतों को खाली कराया गया है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। विश्व भर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा कि 300 बचाव कर्मी और पैरामेडिक्स 50 टन सामग्री के साथ राहत कार्यों में सहायता के लिए रवाना होने को तैयार हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता कठिन समय में भारत और वेनेजुएला

0: वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं का स्वागत किया। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस फैसले से भारत आने के इच्छुक हजारों बांग्लादेशी यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच पर्यटन, व्यापार, पारिवारिक संपर्क और आपसी संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजोन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजोन के CEO एंडी जेसी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति CP राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायला और वाश्यम रामाकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा की ताई तागा, कर्नाटक से भाजपा के देवोशीष सामंतराय और कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती तथा गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की प्रगति, गुणवत्ता और रखरखाव की समीक्षा की है। इन परियोजनाओं में तेलंगाना के लगभग 4,931 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर के 2,035 किलोमीटर और लद्दाख के 804 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं।
1: नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने तथा सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, काम समय पर पूरा करने तथा आधुनिक निर्माण तकनीकों और बेहतर तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा AI, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया युग के अनुकूल राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि COVID-19, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश में बागवान

FM बैंड 101.8 MHz पर आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है। 9:15 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत की पहली पेशकश है फिल्म 1942 अ लव स्टोरी से, जिसे आवाज़ें दी हैं कुमार शानू ने।

0: सुनिए
1: कहिए कहिए
0: सुनिए सुनिए
1: कहिए कहिए ना
0: सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
2: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है। आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत FM बैंड 101.8 MHz पर आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रांतीय मासिक नाटक श्रृंखला, जिसे हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारा साझा उद्देश्य है। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और ब्रिटेन की साझेदारी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है कि वैश्विक व्यापार निष्पक्ष और समान अवसरों पर आधारित हो। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए। रिएक्टर स्कूल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में विशेष जांच दल SIT की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्रवाई राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपए शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम

2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत ₹6,000 होगी। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपने परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश के तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चंटकायाला और बाश्यम रामकृष्ण तथा जन सेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मैक्सिको और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपने अपने मुकाबले जीते। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 119 रन बना लिए हैं। राधा यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, वहीं श्री चरणी ने 2 विकेट अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अपने संगी साथियों की तरह जीवन के दुख भी देखे और सुख भी। उम्र के साथ माता पिता ने विवाह कर पति के घर के लिए विदा कर दिया। किसी भी सामान्य सी लड़की की ये कहानी है, फिर आप ये कहानी क्यों सुने? आप इस कहानी को तब सुनना चाहेंगे जब इसमें कोई असामान्य बात हो। तो मेरी कहानी में भी असामान्य बात है, लेकिन असामान्यता मेरे जीवन की घटनाओं में नहीं, विचारों में है। विचार हमेशा तो शब्दों के रूप में बाहर नहीं आते, लेकिन जब आते हैं तो मेरी कहानी कह देते हैं।

0: बेटी कहाँ जा रही है?
1: माँ उषा के।
0: लाज, तेरा ज्यादा बाहर निकलना ठीक नहीं।
1: क्यों? ठीक क्यों नहीं है?
0: तेरी शादी जो तय हो गई है।
1: शादी तय हो गई है तो?
0: तेरे ससुराल वालों के रिश्ते के कुछ लोग इसी मोहल्ले में रहते हैं, उन्हें शायद तेरा बाहर निकलना अच्छा ना लगे।
1: उन्हें अच्छा क्यों नहीं लगेगा? क्या वे लोग कहीं बाहर नहीं निकलते हैं?
0: बेटे, दुनिया की रीत ही ऐसी है, शादी के पहले लड़की को ज्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए।
1: लेकिन मैं रोज ऑफिस भी तो जाती हूँ।
0: वो बात फर्क है लाज।
1: क्या फर्क है इसमें?
0: देख, मुझसे बहस मत कर। तेरे पापा मुझसे पूछेंगे तो मैं तो कह दूंगी कि तू मेरा कहना तो सुनती ही नहीं है।
1: माँ, या तो आप मुझे कन्विंस कर दो और या फिर मेरी बात मान जाओ।
0: ये दुनिया तेरे लॉजिक और तेरी बातों से नहीं चलती है।
1: लेकिन दुनिया अगर बेसिर पैर की बातें करेगी तो हम तो नहीं मानेंगे।
0: दुनिया में रहना है तो उसकी पसंद नापसंद का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा।
1: तो हमारी पसंद नापसंद कुछ ना हुई, हम जिए मरे तो दुनिया की इच्छा पर।
0: हाँ, क्योंकि इसी दुनिया इसी समाज में हमें रहना है। इनसे हटकर अलग रहकर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हमारे सुख दुख में यही लोग काम आएंगे।
1: सुख दुख में काम आए ना आए, दुख देने का काम तो करते ही हैं।
0: इस समाज के प्रति तेरे मन में इतना जहर क्यों भरा है?
1: मेरे मन में किसी के प्रति जहर नहीं भरा है माँ। मैं एक आम लड़की हूँ और एक आम लड़की की तरह अपना जीवन बिताना चाहती हूँ।
0: तो फिर सामाजिक मान्यताओं को

0: मानती क्यों नहीं?
1: उन मान्यताओं के पीछे क्या कोई ठोस दलील है? समाज को कोई बात अच्छी लगती है तो मुझे भी वो अच्छी लगे, समाज को कोई बात बुरी लगती है तो मुझे भी वो बुरी लगे। मुझे तो ये बात जस्ती नहीं है।
0: लेकिन समाज की मान्यताएं बिना आधार के तो नहीं होती?
1: हाँ, जैसे छुआछूत वाली जाति प्रथा की मान्यता बिना आधार की नहीं है, जैसे दहेज की प्रथा बिना आधार की नहीं है, जैसे
0: बस बस ये सब मैं नहीं जानती। बस एक बात जानती हूँ, हम समाज के विरुद्ध नहीं जा सकते।
1: लेकिन हम तो जा सकते हैं।
0: लाज।
1: लेकिन हम अपनी माँ के विरुद्ध नहीं जा सकते। माँ, अगर आप कहती हो तो मैं मान जाऊंगी, लेकिन आज मुझे उषा से एक बहुत जरूरी काम है। बस आज हुआ फिर नहीं जाऊंगी।
0: ठीक है बेटे।
1: तो मैं जाऊं?
0: हाँ।
1: बाय माँ।

0: लाज
1: लाज माँ लाज
0: बस बेटे बस बस क्या हो गया था बेटी, ये सब अचानक कैसे हो गया?
1: पता नहीं माँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
0: लेकिन वो तो कहीं बाहर गया हुआ था ना?
1: मैं भी यही समझे बैठी थी कि कहीं बाहर गए हुए तो आज सवेरे सब बाहर कुछ आवाज आई, मैं इनकी आवाज पहचान गई, दौड़ कर बाहर गई तो देखा दरवाजे पर गिरी पड़े थी। मैंने बहुत पूछने की कोशिश की पर वे बस इतना ही बता पाए कि उन्होंने बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली।
0: लेकिन क्यों?
1: इसका जवाब तुम वो ही दे पाते।
0: इससे पहले उसने कुछ भी नहीं बताया जिससे कुछ पता चले?
1: नहीं, कुछ भी नहीं बताया।
0: लाज तो कुछ छुपा तो नहीं रही बेटी?
1: क्या छुपा सकती हूँ माँ?
0: पता नहीं बेटे, पर ये सब कुछ अचानक तो नहीं हो सकता। लाज कुछ बोलना।
1: क्या बोलू?
0: कुछ बता बेटे।
1: क्या बताऊं? जो बताया उस पर आपको विश्वास नहीं?
0: ये बात नहीं है, ऐसे मामलों में लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं।
1: तो
0: मैं जानू तो सही कि बात क्या है?
1: मुझे लगता है माँ आप चाहती ही नहीं कि आपको सही बात मालूम हो। आप ही जब पुलिस के जैसे सवाल पूछ रही हैं तो दुनिया वाले क्यों नहीं पूछेंगे?
0: लाज।
1: हाँ माँ, दुनिया वाले मेरे दुख से दुखी नहीं, उन्हें मुझसे कोई हमदर्दी नहीं। वो तो सच्चाई की तह तक पहुंचना चाहते हैं, सच्चाई जो उनके रीजन को सेटिस्फाई करे, किसी क्राइम थ्रिलर के डिटेक्टिव की तरह।
0: न जाने मैंने तेरा नाम लाजवंती क्यों रखा, जरा भी लाज शर्म नहीं है तुझमें? कोई तेरी बातें सुन ले तो क्या कहे?
1: कोई दूसरा क्यों कुछ कहे? आप भी तो वही कह रही हैं जो कोई भी दूसरा कह सकता है।
0: तेरे से तो बहस करना बेकार है। तेरे मामा आने वाले थे पर ऐन वक्त पर मामी की तबीयत अचानक खराब हो गई। चल मुझे ना सही, अपने मामा को तो तू सब कुछ साफ साफ बता देना।
1: सब कुछ तो मैं आपको भी बता देती माँ, पर न जाने क्यों आप मेरे दिल की बात समझ नहीं पाती हैं, या समझने की कोशिश ही नहीं करती हैं।
0: हाँ माँ जो हूं ना तेरी।
1: नहीं माँ, मुझे लगता है आप मुझे समझती तो हैं, पर समाज आपके दिमाग पर इतना हावी रहता है कि आप चाहकर भी सच्चाई स्वीकारना नहीं चाहती।
0: हाँ मुझे भी लगता है माँ मैं नहीं तू है।
1: ऐसी बातें करके आप मुझे तो खामोश कर सकती हैं पर सच्चाई नहीं छुपा सकती हैं। बेटी अपने दिल की बात केवल अपनी माँ से कह सकती है, लेकिन आपसे ज्यादा शायद मामा जी मुझे समझते हैं।
0: समझते हैं या तेरी हाँ में हाँ मिलाते हैं?
1: अगर मैं सच बात बोल रही हूँ और वो मेरी हाँ में हाँ मिलाते हैं तो कोई गलत बात है?
0: और कोई तेरी बात सुन ले तो ना जाने क्या हो, और वो भी ऐसे समय। खैर मैं तुझसे बहस नहीं करना चाहती, जाती हूं तेरी सास से बात कर लूं तुझे घर ले जाने के बारे में।

0: लाज।
1: मामा
0: कैसा है मेरा बेटा?
1: देख लीजिए, बिल्कुल फिट हूं।
0: ये सब कुछ अचानक कैसे हो गया लाज?
1: ओह
0: लाज
1: जी
0: कुछ नहीं बेटा, आओ बैठो
1: जी।
0: अचानक उदास कैसे हो गया मेरा बेटा?
1: उदास नहीं होना चाहिए मुझे।
0: नहीं हाँ लेकिन
1: हाँ कहे ना।
0: क्या कहूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
1: मैं कहूं?
0: हाँ।
1: वैसे तो मुझे आपसे रोते हुए या उदास होकर मिलना चाहिए था। कितना बड़ा हादसा मेरे साथ गुजरा है। जिस माँ के घर से सजी धजी शहनाई के साथ विदा हुई थी, उसी के घर लौट आई हूं बिल्कुल खाली हाथ। मुझे देखकर जब संसार रो रहा है तो मैं क्यों नहीं रो रही हूं? यही सवाल आपको भी परेशान कर रहा है ना मामा?
0: लाज
1: कहिए ना मामा, मैं ठीक कह रही हूं ना?
0: बेटा अब मैं क्या बोलूं?
1: बोलिए ना मामा, बोलिए ना। आपसे तो मुझे बहुत उम्मीद है। जितना आप मुझे समझते हैं उतना शायद मां भी नहीं।
0: हाँ बेटा।
1: तो फिर आप क्यों ऐसी असमंजस की स्थिति में पड़ गए? कुछ बोल ही नहीं पा रहे?
0: ऐसी बात नहीं है बेटा।
1: बात तो ऐसी ही है मामा। इतने बड़े हादसे के बाद आप मुझे उदास एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन जब मैं बहुत नॉर्मल होकर आपसे मिली तो आपको ताज्जुब हुआ।
0: बेटा वो
1: बोल लेने दीजिए मुझे मामा, बोल लेने दीजिए। उसके बाद आप शायद मुझे और अच्छी तरह समझ पाए और फिर मेरा दिल भी थोड़ा हल्का हो जाएगा।
0: हाँ बोल बोल बेटा।
1: अपनी बात में कहां से शुरू करूं, समझ नहीं आ रहा है। मैं अच्छा यूं समझिए कि अगर आपके एक हाथ में सुई चुभ जाए तो आपको दर्द होगा, लेकिन अगर दूसरे हाथ में ज्यादा बड़ा जख्म हो जाए तो आप पहला दर्द भूल जाएंगे, नहीं?
0: हाँ सो तो है।
1: अब अगर मैं इतने बड़े हादसे के बाद नॉर्मल दिख रही हूं या उतनी उदास या दुखी नहीं हूं जितना दुनिया मुझे देखना चाहती है, तो उसके पीछे कारण है। और वो कारण ये है कि मैं इतने बड़े दुख से निकलकर कम दुख में आ गई हूं।
0: क्या कह रही है लाज?
1: हाँ मामा, आपको सुनकर ताज्जुब हुआ होगा।
0: हाँ लेकिन तूने बेटा कभी बताया नहीं।
1: हाँ शायद यही मेरी गलती थी, लेकिन

0: मैं ये सोचती थी कि हर इंसान को अपनी जंग खुद लड़नी चाहिए। शादी के बाद भी माँ बाप भाई बहनों के लिए सिरदर्द नहीं बने रहना चाहती थी।
1: लेकिन लाज, तुम हमारे लिए कभी भी सिरदर्द नहीं रही।
0: शायद मैं भाग्यशाली हूं, लेकिन पराया धन तो हूं ही ना।
1: हो इसलिए कि बेटी को दूसरे घर तो जाना ही है, और वही घर उसका असली घर हो जाता है।
0: मेरा भी?
1: हाँ, तुम्हारा भी। तुम भी बेटी जो हो।
0: लेकिन आप तो मुझे हमेशा बेटा कहते हैं ना।
1: हाँ, मैं तो तुम्हें बेटा ही समझता हूं, पर तुम वहां की बात बताओ लाज, वहां तुम्हें क्या दुख था?
0: आप पहले ये बताइए कि अपनों के सामने तो मुझे किसी आवरण की जरूरत नहीं है ना।
1: अब ये निर्भर करता है कि अपनों में कौन कौन आता है। मेरे हिसाब से तो तुम्हारे ससुराल वाले भी तुम्हारे अपने ही थे।
0: हम कोर्ट में एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे वकील नहीं है मामा। मैं आपकी भांजी हूं, बेटी हूं, या आपके शब्दों में बेटा हूं। अब क्या मुझे आपको ये समझाना पड़ेगा कि कौन मेरा अपना है और कौन नहीं?
1: लाज बेटा, मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं था।
0: फिर भी दुखा दिया। मामा, मुझ पर इस बात का इल्जाम लगाया जाता है कि मैं हर जगह अपनी मर्जी से काम करती हूं, और मुझे बिगाड़ने में आपका बड़ा हाथ है। मैं सोचती हूं कि मुझे अगर कोई समझ पाया है तो बस आप। लेकिन जब आप ऐसा बोलते हैं तो
1: I'm sorry, बेटा।
0: काश आपका ये सॉरी किसी बाम की तरह मेरे दर्द को दूर कर देता।
1: तो मेरा बेटा अपने मामा को माफ नहीं करेगा?
0: मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। एक ही तो इंसान है जो मुझे समझता है। अगर मैं उसे भी नाराज कर दूंगी तो क्या होगा?
1: नहीं लाज, तुम्हारा मामा तुमसे कभी नाराज नहीं होगा। मैं चाहता हूं तुम अपना दिल खोल कर मेरे सामने रख दो, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा।
0: परेशानी तो यही है ना कि मेरा दिल हल्का हो गया और लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। दुनिया चाहती है कि मैं खुश नजर आऊं तो मुझे खुश नजर आना चाहिए। दुनिया चाहती है कि मैं दुख मनाऊं तो मुझे दुखी नजर आना चाहिए। बिना डोरी के हर इंसान को दुनिया कठपुतली की तरह क्यों नचाना चाहती है? वो ये क्यों भूल जाती है कि मैं इंसान हूं, कठपुतली नहीं। मेरे अपने अरमान हैं, सपने हैं। मुझे ये हक है कि मैं किसी को पसंद करूं या ना पसंद। मेरे पास एक धड़कता दिल है जिस पर केवल मेरा अधिकार है।
1: तुम्हारी बात सच है लाज, लेकिन
0: सच में लेकिन कहां आता है मामा? अगर लेकिन आ जाता तो वो सच कहां रहता है? क्या आपका भी सच दुनिया के सच जैसा ही है?
1: मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूं बेटा।
0: हाँ मामा, आपको तो मैं जरूर सुनाऊंगी। आपसे तो उम्मीद है कि आप मुझे समझेंगे।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं समझूंगा।
0: आपको तो मालूम है मैं विशाल से प्यार करती थी। हम दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन आप लोग नहीं माने। नौकरी के लिए जैसे इंटरव्यू लिया जाता है, वैसे ही विशाल का इंटरव्यू शादी के लिए लिया था, लेकिन वो फेल हो गया।
1: बेटा,
0: अनाथ था, यही उसकी डिस्क्वालिफिकेशन थी। केवल इसके पीछे आप सबों ने उसे रिजेक्ट कर दिया। उसकी एक योग्यता के पीछे उसे पास किया जा सकता था, और वो ये थी कि वो मुझे प्यार करता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो इंसान भी ठीक था, ढंग की नौकरी भी करता था।
1: लेकिन बेटे, उसके परिवार के बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते थे।
0: जान लेते तो क्या करते, फिर सबूत मांगते। घर छोड़िए, आप लोगों के कहने

0: जाने पर मैं दूसरी जगह शादी के लिए राजी हो गई। आप लोग बहुत खुश थे, अपनी जात का अपने धर्म का लड़का मिल रहा था ना आपको। नौकरी नहीं कर रहा था तो क्या हुआ, नौकरी भी मिल जाएगी, लड़की को भूखे थोड़े ही मरने देगा, खानदानी लड़का है। फिर मैं तो नौकरी कर ही रही थी ना माम, सिवाय मेरे सब बहुत खुश थे माम, सब बहुत खुश थे।
1: बेटे ऐसी बात नहीं थी।
0: मुझे तो ऐसी बात ही लगी मामा। बेटी ब्याह कर चली गई, आप लोगों की चिंता दूर हुई, मैंने भी इसे अपनी नियति मानकर संतोष कर लिया। लेकिन एक कमाती खाती लड़की एक बेरोजगार से शादी कर ले, इसमें मेरे ससुराल वालों को दाल में काला नजर आया। उनकी यही खोज मेरी वेदना की कहानी बनी।
1: लेकिन लाज, तुमने कभी इसका जिक्र तो नहीं किया?
0: कहती वो मुझे परेशान कर रहे हैं तो आप लोग पूछते कैसे, इसका जवाब मेरे पास नहीं था। प्रत्यक्ष रूप से सब कुछ सामान्य था, ठीक था, लेकिन फिर भी ठीक नहीं था।
1: वो कैसे बेटे?
0: आपको कैसे बताऊं मामा, मैं आपकी बेटी हूं।
1: फिर भी
0: क्या आप विश्वास कर सकेंगे कि हम पति पत्नी के रूप में एक साथ कभी नहीं रहे?
1: राज, ये क्या कह रही हो?
0: हाँ मामा, मेरे दुख ऐसे ही थे जो दिखते तो नहीं थे पर महसूस होते थे, और महसूस भी इतनी शिद्दत के साथ कि मैं तड़प उठती थी। कुछ दिनों तक तो वे भी घर वालों का साथ देते रहे, फिर वे मेरी नजदीक आने की कोशिश करने लगे, पर उनके घर वाले ये कैसे सहन करते। मानसिक रूप से उन्हें भी सताया जाने लगा। बेरोजगार जो थे, एक आध बार मैंने उन्हें सुझाया कि हम कहीं अलग जाकर रहते हैं, लेकिन वे सचमुच बहुत कमजोर थे मामा, वे तैयार ही नहीं हुए। मेरी सहानुभूति गुस्से में बदल गई। उन्हें जब किसी का भी सहारा नहीं रहा तो एक दिन वही हुआ जो किसी भी दिन हो सकता था, उन्होंने बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली। इन सारी परिस्थितियों से अगर कोई लड़का गुजरता तो उसके रिएक्शंस को दुनिया नॉर्मल कहती। लड़के अगर ऐसे मानसिक क्लेश से निकलकर राहत की सांस लेती हैं तो लोग उस पर उंगली उठाते हैं। मैं ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स को नहीं मानती मामा।
1: मैं भी नहीं मानता बेटा, और नहीं तुम्हें मानने को कहता हूं।
0: लेकिन फिर आपका वो दुनिया क्या कहेगी वाला एटीट्यूड?
1: वो भी अपनी जगह पर सही है बेटा।
0: मामा जी, दो किश्तियों में पैर रखने का अंजाम खतरनाक होता है।
1: ये भी अपनी अपनी समझ है। अच्छा मुझे एक बात बताओ लाज, ससुराल में तुमने अपने आप को अकेला महसूस किया था ना?
0: हाँ।
1: क्योंकि तुम सब लोग एक साथ तो रहते थे, लेकिन तुम्हारे विचारों में भावनाओं में कहीं समानता नहीं थी। तुम्हारे ससुराल वालों ने बिना वजह तुम पर शक किया, लेकिन
0: लेकिन क्या
1: तुमने कभी अपनी तरफ से यह कोशिश की कि स्थिति सुधरे, या जब तुम्हारे पति को तुम्हारे प्यार की तुम्हारी सहानुभूति की आवश्यकता थी तो तुमने उसे वो सब दिया?
0: आप अगर उनके साथ रहते तो आप भी वही करते जो मैंने किया।
1: हाँ शायद मैं भी वही करता, पर शायद नहीं भी करता।
0: मामा।
1: बेटा, प्यार, सहानुभूति और सब्र से तो जानवर भी इंसान के काबू में आ जाते हैं। इंसान जानवर से तो बेहतर ही है ना?
0: आप मेरे दुख नहीं समझ पाएंगे मामा।
1: समझ तो वही पाता है जिस पर दुख आता है बेटे। हर इंसान ये समझता है कि उसका दुख सबसे ज्यादा है, लेकिन बस इससे ही तो बात नहीं बनती ना। ईश्वर ने जब हमें अक्ल दी है तो उसका भी तो उपयोग होना चाहिए।

0: बेटा, संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल नहीं निकल सके। प्यार और सब्र से सब कुछ संभव है। न झुकने वाला एटीट्यूड इंसान को तोड़ देता है। प्यार, हठी और जुल्मी यहां तक कि दुश्मन को भी मोड़ देता है।
1: मामा, ये बातें आपने पहले क्यों नहीं बताई?
0: कभी कभी हम सख्त तरीकों से सीखते हैं बेटे, लेकिन जीवन यही खत्म नहीं हो जाता। तुम्हारे सामने अभी उम्र पड़ी है, किसी भी समस्या का कोई रेडीमेड इलाज नहीं होता। लेकिन वक्त के थपेड़े, कड़वे मीठे अनुभव आने वाली हर समस्या का हल खोजने में हमारी मदद करते हैं। आज अगर सूरज डूबा है तो कल फिर उगेगा। अपनी लाली, अपनी रोशनी, अपनी गर्मी फिर फैलाएगा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नाटक एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है। 10:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

है, मन है रंग गलियों में चुप गई है तू खुशबू बन के शायद इन गलियों में। मैंने तुझको कितना ढूंढ

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत एफएम बैंड 101.8 MHz पर आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे पहले हिंदी में समाचार और उसके पश्चात अंग्रेजी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
2: यूनाइटेड किंगडम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट
3: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
2: एंड टुगेदर बिकमिंग अ फोर्स मल्टीप्लायर।
1: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि आत्मनिर्भर देश संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक सक्षम होता है। राष्ट्रपति ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये स्पष्ट हो गया कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं, उन्नत प्रौद्योगिकी और मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार किसी राष्ट्र की परिचालन तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियरिंग सेवा देश के रक्षा ढांचे की रीढ़ है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं पर आभार जताया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायाला और बाश्यम राम कृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम उस दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए आयोजित गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। उन्होंने कहा कि ये आयोजन इस बात की याद दिलाता है कि अहंकार और अत्याचार क्षणिक होते हैं और आखिरकार उनका अंत होता ही है। बांग्लादेश में भारत के नव नियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपने परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहाँ की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपए शुल्क देना होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई मुकाबले में कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड में ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will act as force multiplier to support the global economy. Addressing the India Global Forum IGF in UK-India Week in London today, Mr. Goyal said Free Trade Agreement FTA with the United Kingdom is the most comprehensive agreement that India has entered into so far. The minister reached the UK on a 3-day visit to review the preparedness of both countries for the implementation of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, which will enter into force from 15th of next month. Mr. Goyal added that the agreement will further integrate both countries into global value chains and open new avenues for economic cooperation and growth.
2: Partnership with UK is taking many more dimensions. So now we have a very highly strategic partnership, whether it comes to technology, investments, defense, and critical minerals, our shared objective to fight against terrorism, our effort to bring global peace and stability, our joint effort in several multilateral fora to bring good practices which will make it equal for all countries to do business in a fair and equitable manner.
4: Venezuela's acting president Delcy Rodriguez has said that 164 people have died and 971 others were injured after a pair of powerful quakes hit the country. Last night, 7.2 and 7.5 magnitude earthquakes hit the country. Buildings were evacuated in places as far away as Brazil's Amazon, about 1,700 kilometers from Venezuela's capital, Caracas. Meanwhile, the President of Venezuela has acknowledged the solidarity expressed by India in the aftermath of the earthquakes, saying it is in keeping with the spirit of cooperation between the people of India and Venezuela in times of difficulty. She welcomed the remarks by Prime Minister Narendra Modi, who expressed his condolences and India's willingness to support relief efforts in the wake of the severe consequences of the earthquakes. The government has hiked the fee for application of passports, with a 36-page fresh passport or reissue of passport now costing 2,500 rupees. The Passport Amendment Rule 2026 will come into force with effect from 1st of next month. In a notification, the Ministry of External Affairs said that under the new fee structure, a fresh passport or reissue of passport under Tatkal will cost 5,000 rupees. The fee for 60-page ordinary passport or reissue will be 3,500 rupees and under Tatkal, this will attract 6,000 rupees. The existing fee for a 36-page passport is 1,500 rupees and for a 60-page passport is 2,000 rupees. Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary General's Special Advocate for Financial Health, in New Delhi today. In a social media post, Mr. Modi stated that during the meeting, they discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable, enhancing ease of living and empowering people at scale. The Prime Minister added that India remains committed to sharing its experience with partner countries across the world.